मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद

0: दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुँच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

प्राकृतिक सौंदर्य की अतुलनीय सौगात लिए मौसम की विविधता और सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण हर एक देशवासी के मन में उनके संकल्प में धड़कता है ये देश। ये देश हमें सपनों से ज्यादा, प्राणों से ज्यादा प्यारा है।

जीवन में व्यवहार और व्यापार के पैमाने तो होते हैं, पर उस परम शक्ति से निकटता का कोई मापदंड नहीं है। वो प्रेम की गहनता में है, भक्ति की प्रकृति में है, ज्ञान की गहराई में है, सेवा सहायता में भी वो मुखरित है, मन की लगन, दृढ़ संकल्प, प्रीत की इबारत में भी वही है।

जो दाता है, विधाता है, जो सृष्टा है, स्वयं रचेता है, उसे कोई क्या दे सकता है। ये तो भावना का वो पक्ष है जो हमें प्रेम की महिमा और उसमें निहित

जो दाता है, विधाता है, जो सृष्टा है, स्वयं रचेता है, उसे कोई क्या दे सकता है। ये तो भावना का वो पक्ष है जो हमें प्रेम की महिमा और उसमें निहित जीवन का सलीका देता है।

जैसे बरखा जल बूंद बूंद धरती पर बीजों को अंकुरण की सौगात देते हैं, वैसे ही हरिनाम मन के भाव का वो स्फुरण है, वो अंकुरण है, जो जीवन बेल को दिशा भी देते हैं और राह भी।

0: कार्यक्रम वंदना में आज आपने सविता देवी, नीना मेहता, राजेंद्र मेहता, नंदिनी शरण, हरिओम शरण और जगजीत सिंह के गाए भक्ति गीत सुने।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। स्वर है हरिहर ए हरिहरन का और संगीत सतीश भाटिया का।

काकभुशुंडी को श्री राम के मुख में प्रविष्ट होने के बाद उनके उदर में अनगिनत ब्रह्मांडों के दर्शन प्राप्त हुए। काकभुशुंडी ने 100 कल्प उन ब्रह्मांडों में बिताए। जब अयोध्यापुरी में श्री राम अवतार का समाचार सुना तो हर्षित हो वहां जा पहुंचे, श्री राम जन्म महोत्सव देखा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। स्वर था ए हरिहरन का, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, विषय है कम बोलना, आलेख वीरेन गोहिल का है।
1: साधु महात्मा कहते हैं, आदमी को कम से कम बोलना चाहिए, जब जरूरी हो जाए तभी बोलना चाहिए, और जितने शब्दों से काम चल जाए उनका ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आम जिंदगी में होता इससे उल्टा ही है। हम एक बात कहने को 10 तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सामने वाले को कम समझदार समझकर, तरह तरह के उदाहरण देकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं।

0: जरूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे शब्द अपना महत्व खो देते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। डॉक्टर ये जानता है कि मरीज़ को ठीक होने के लिए किस दवाई की कितनी मात्रा की ज़रूरत होती है। मरीज़ की देखभाल करने वाले अक्सर उस मात्रा में कमी कर देते हैं, और तर्क ये होता है कि दवाइयाँ गर्म होती हैं इसलिए कम दी जाएं, जिसके परिणाम में डॉक्टर भ्रम में पड़ सकता है और मरीज़ को भी ठीक होने में समय लग सकता है। और ठीक इसके विपरीत, यदि मरीज़ को ज़रूरी मात्रा से अधिक मात्रा में दवा दे दी जाती है तो क्या होता है? वही हाल शब्दों का है, लेकिन आदमी अगर बोले भी नहीं तो फिर क्या करे? क्या बोलने से भी जाए? ये बड़ी तपस्या की बात होगी कि आदमी कम बोलने लगे। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा कि जो लोग कम बोलते हैं, अगर उनसे आपको बात करने का मौका आ जाए तो आप ऊब जाएंगे, यहाँ तक कि आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, आप सामने वाले पर खींचकर गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि आप जितना बोले हैं उसके जवाब में उसने अपनी बात कम से कम शब्दों में कह दी है, और आप हैं कि कम शब्द सुनने की आदी नहीं। आपकी समझ में तो लंबी बातचीत के सिलसिले में से निकली छोटी सी थोड़े शब्दों की बात चाहिए, आपको सीधे साधे कम शब्दों का उत्तर नहीं चाहिए। कम शब्द बोलने वाले लोग जो होते हैं उनकी बातें दूसरों को कोड़े की तरह लगती हैं। लेकिन आपने ये भी सोचा होगा कि सामने वाले से आपकी बात तो पूरी हो गई, हाँ आपका मन ज़रूर संतुष्ट नहीं हुआ है। आदमी की पहचान उसकी आवाज़ और शब्द चयन से बहुत कुछ हो जाती है। डेमोस्थनीज ने इस बारे में लिखा है, जैसे कि बर्तन आवाज़ से जाना जाता है कि फूटा हुआ है या नहीं, उसी तरह आदमी अपनी बातों से साबित कर देते हैं कि वे अक्लमंद हैं या बेवकूफ़। आदमी अपनी बातों की कमाई ही तो खाता है, जिसकी जितनी अच्छी और काम की बातें वो उतना ही लोकप्रिय और प्रतिष्ठित, जिसकी बातें जितनी सारहीन वो उतना ही महत्वहीन। जो ज़्यादा बात करते हैं उनके पीछे लोग इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे समझते हैं कि इससे समय बर्बाद होगा। आदमी की पहचान उसकी आवाज़ और उसकी बातें हैं। वेदव्यास ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए कमरे में आ जाए और जो बिना पूछे बोलने लगे, उस पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था कम बोलना, आलेख था वीरेन गोहिल का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है जायद में सब्जियों की देखरेख। वार्ताकार हैं डॉक्टर जिनेंद्र कुमार कन्नौजिया। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे जायद में सब्जियों की देखभाल। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में हमारे खेतों में गर्मी की जो सब्जियां हैं उनकी तुड़ाई का काम चालू है, और इसके अतिरिक्त आने वाले समय में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, उनके खेतों की तैयारी, पौधशाला की तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। मुख्य रूप से वर्तमान में जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जिनमें लौकी, गिलकी, करेला, टिंडा, कद्दू आदि सब्जियां जो हमारे खेतों में हैं, इसके अतिरिक्त भिंडी, लोबिया, पत्तीदार सब्जियों की यदि हम बात करें तो पालक, धनिया पत्ती, ये सब्जियां हमारे किसान भाई उगा रहे हैं। और इन सब्जियों में वर्तमान में किसानों को कुछ समस्याओं का, विशेष तौर से रोग और कीट प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि पिछले दिनों इस वर्ष असमय वर्षा हुई है, जिसके चलते मौसम में आर्द्रता में बढ़ोतरी रही है, और परिणाम स्वरूप गर्मी की सब्जियों में खास तौर से पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियां अभी भी दिखाई दे रही हैं। किसान भाइयों, ये जो रोग है, कई बार पत्तियों पर इसके सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बनते हैं और पत्ती को मुरझा देते हैं, पौधा कमजोर पड़ जाता है।

0: और जो फूलने और फलने की जो क्षमता है फसल की वो कमजोर पड़ती है। तो जहां पर भी इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हों किसान भाई, वहां पर एक फफूंद नाशक दवा का छिड़काव अवश्य कर लें। फफूंद नाशक दवा का नाम है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब अथवा मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब। इन में से किसी भी एक फफूंद नाशक दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। और इसके अतिरिक्त जो प्रभावित पत्तियां हैं या जो पौधों में प्रभावित भाग है उसको भी तोड़कर खेत से बाहर ले जाकर उसको नष्ट कर दें। इसके अतिरिक्त सब्जियों में फल बेधक कीट का प्रकोप, खासतौर से कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक आम समस्या होती है। और साथ ही साथ इस वर्ष थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी कीटों का भी प्रकोप फसल में देखने को मिल रहा है, जिससे चलते चौड़ा मुड़ा बीमारियों की शिकायत भी किसानों की आ रही है। यदि इस प्रकार की समस्याएं खेतों में दिखाई दे रही हैं तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगा कि फल मक्खी कीट के प्रभावी प्रबंधन के लिए अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप का उपयोग वो जरूर करें। इनकी 10 की संख्या में प्रति एकड़ फेरोमोन ट्रैप खेतों में अवश्य लगाएं। रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण और प्रबंधन दोनों के लिए स्टिकी टैप, नीले रंग के और पीले रंग के स्टिकी टैप आप अपने खेतों में आवश्यक रूप से लगाना सुनिश्चित करें। यदि ये कार्य आप फेरोमोन ट्रैप फल मक्खी कीट के लिए, रस चूसने वाले कीटों के लिए स्टिकी टैप यदि खेत में लगा लेते हैं तो हम बहुत ही प्रभावी तरीके से इन कीटों को आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। यदि जहां पर भी आवश्यक हो तो फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए इंडक्साकार फफूंदनाशक दवा की 8 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। और जहां रस चूसक कीटों के प्रकोप की स्थिति दिखाई दे रही है वहां पर इमेडा क्लोरोपीड 17.8% SL दवा की 10 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। किसान भाइयों, सब्जियों की जो देखभाल है ये तो हमें करना ही, और आगामी समय के लिए हमें तैयारियां भी करनी है। और वर्तमान में जो खासतौर से टमाटर, बैंगन और मिर्च, जिनकी खेती बड़े स्तर पर हमारे किसान भाई करने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खेत की तैयारी करने का ये उपयुक्त समय है। और इस समय उन खेतों में गहरी जुताई हमारे किसान भाइयों को आवश्यक रूप से करनी है और साथ ही साथ पौधशाला तैयार करने की तैयारियां भी उनको करना है। मुख्य रूप से इस समय अदरक और हल्दी की खेती भी हमारे किसान भाई तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए ऊंची उठी हुई क्यारियां या जल निकासी की उचित व्यवस्था के साथ इन फसलों की खेती करनी है। किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में विषय था जायत में सब्जियों की देखरेख। वार्ताकार थे डॉक्टर जिनेंद्र कुमार कन्नौजिया। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोहः आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रिणः, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षास्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारी वर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः

0: श्री शाह अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलम् ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्रीपदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कौन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णं उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिकासमर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितञ्चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुणजेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् 8 पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख

0: ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानते हैं इस सभा के शेष कार्यक्रम। आज सुबह 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसमें आज आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली प्रसारण यात्रा के उत्सव के अंतर्गत आयोजित वॉकथॉन के संबंध में भोपाल क्लस्टर हेड उप महानिदेशक लोकेश कुमार और कुछ प्रसारण कर्मियों से बातचीत। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई श्रीमती रेखा यादव के साथ एक मुलाकात और ब्राज़ील में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पनीर प्रतियोगिता में भारत के पनीर को मिले सम्मान के संबंध में मन की बात में किए गए उल्लेख पर होटल प्रबंध संस्थान भोपाल

प्राचार्य डॉक्टर रोहित सरीन से चर्चा। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर आपको सुनवाएंगे लोक संगीत, इसमें आज आप सुनेंगे प्रेमलता नागदेव के गाए निमाड़ी भजन। 9:30 पर आप सुन सकते हैं इनसे मिलिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं व्यंग्य की बारीकियां विषय पर वरिष्ठ उपन्यासकार लेखक एवं पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से शुभम तिवारी की बातचीत। 10:00 गीत सागर कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 10:05 पर। दस बजकर 30 मिनट पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला, इसमें आज आप सुनेंगे पंडित ब्रजनारायण का सरोद वादन रागों का कोमल ऋषभ आसवरी। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम सुना जा सकता है। आइए जानते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आज सुबह 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12:00 आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम का 10वां भाग आप सुन सकते हैं। 1:00 महिला कार्यक्रम महिला सभा सुनिएगा। 1:30 पर लोक संगीत आप सुन सकते हैं, सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 1:45 पर। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति रहेंगे। दोपहर 2:00 फिल्म संगीत आप सुनेंगे और आपकी फरमाइश हम लेकर आएंगे 2:30 पर। आइए जानते हैं आज की सांध्यकालीन सभा के आकर्षण। शाम 5:02 पर युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युवाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति रहेगा। 5:33 पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं। 6:00 विशेष भेंटवार्ता में आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का दूसरा भाग आप सुन सकते हैं। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और योगदान पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत। 6:30 पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं, प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे 7:45 पर। सुर्खियों में आपको सुनवाएंगे रात 8:00 और 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। 9:30 पर संस्कृत भारती हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही हम रात 10:00 रिले करेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं राजकुमार मजूमदार का संतूर वादन। तो ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी लेंगे बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। इंदौर में आज 21 देशों के मंत्री और विशेषज्ञों के साथ ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का होगा आगाज। प्रदेश भर में आज लगेगी

0: नेशनल लोक अदालत बिजली पानी बिल के सरचार्ज पर 100% माफी समेत कई विवादों के निपटारे का मौका। और एक तरफ आंधी बारिश तो दूसरी ओर चिलचिलाती गर्मी। प्रदेश के 13 जिलों में आज तेज तूफान का अलर्ट। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पिछले दो दिनों में 97 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। सरकार का कहना है कि 95% डिलीवरी अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए की जा रही है।
1: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। डॉ. यादव ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया।
2: शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्यप्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनी विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया कि वे दो दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनी विद्यालय भी देखे और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्यप्रदेश सरकार मिलकर के काम करे।
0: प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, चलकर, संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। इस महाकुंभ में देशभर के वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और मीडिया विशेषज्ञ हिंदी पत्रकारिता के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 के इंडेक्स स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और धात्री माताओं को आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां देने में 95% तक कवरेज हासिल की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस उपलब्धि का श्रेय आशा कार्यकर्ताओं, ANM और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को दिया। उज्जैन के लक्ष्मण बाग परिसर में महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इसे मध्य प्रदेश भवन विकास निगम करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करेगा। इसमें प्रशासनिक ब्लॉक, 12 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, 50 सीटर कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शीला दाहिमा और SP सुधीर अग्रवाल ने कुनो पहुंचकर हेलीपैड, चीता रिलीज साइट और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रदेश में अब तक 9,38,000 किसानों से 56,45,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों

को 10,403 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। सरकार 2585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। भोपाल के सांदीपनी विद्यालय गोविंदपुरा में कक्षा पांचवी में पढ़ने वाले आराध्य पाराशर ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तरीय विजेता छात्र शामिल हुए थे। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। सलीमनाबाद के इमलिया गांव में करीब 3.35 लाख टन से ज्यादा सोने का अयस्क मिलने का अनुमान है, जो 50 साल की भूवैज्ञानिक खोज का नतीजा है। बड़ेरा और बचरबाड़ा में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 3 बड़े डोलोमाइट ब्लॉक भी माइनिंग कॉरपोरेशन को दिए गए हैं। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। पहले दिन खटिया इको सेंटर में वन्यजीव

का अनुमान है जो 50 साल की भूवैज्ञानिक खोज का नतीजा है। बड़ेरा और बचरबाड़ा में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 3 बड़े डोलोमाइट ब्लॉक भी माइनिंग कॉर्पोरेशन को दिए गए हैं। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। पहले दिन खटिया इको सेंटर में वन्यजीव प्रबंधन, बाघ इंसान सह अस्तित्व और आधुनिक वन प्रबंधन पर चर्चा हुई। प्रदेश पुलिस ने बीते एक हफ्ते में अलग अलग जिलों में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 83 लाख रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं। प्रदेश के बीच से गुजर रही दो टर्फ लाइन और ऊपरी हिस्से में सक्रिय चक्रवाती हवाओं के चलते राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। कल 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया है। आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए, जिसके जवाब में केकेआर ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंदसौर में एनसीसी कैडेट्स को टीबी खत्म करने के अभियान में अपनी भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। आगरमालवा जिले में नेशनल लोक अदालत के लिए 10 न्यायिक खंडपीठे बनाए गए हैं। झाबुआ में गर्मी के चलते पेयजल समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। सतना में नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 के खाली पार्षद पद पर उपचुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। डिंडौरी में कलेक्टर ने डैम घाट पर नाविकों की बैठक लेकर उन्हें सुरक्षा के जरूरी निर्देश दिए। धार में नगर पालिका परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। गुना में मिलावटखोरी रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की लगातार जांच और सैंपलिंग की जा रही है। सागर में मकान गणना का काम धीमा पड़ने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 5 जनगणना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रतलाम में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम ने अरिहंत परिसर और ऑफिसर कॉलोनी के नालों की सफाई कराई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल,

नमस्कार भोपाल के सभी सुनने वालों को संजय श्रीवास्तव का नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हर रोज की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है नमस्कार भोपाल। आप अपडेट रहें, स्वस्थ रहें, बाखबर रहें और खुशी के साथ पंछियों की मानिंद चहकते रहें, क्योंकि पंछियों की चहचहाहट, उनका कलरव हमें आनंद देता है। और इन दिनों तो भोपाल में उन पंछियों का भी समूह नजर आ रहा है जो गर्मी के मौसम में यहाँ का रुख करते हैं, मतलब प्रवासी पक्षी। वन विहार, बोर्ड क्लब या हमारे आसपास के कुछ हरे भरे इलाकों में ऐसे पक्षी हमें नजर आ रहे हैं जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। आज 9 मई का दिन ये बात करने के लिहाज से और भी मुफीद है, क्योंकि आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। पारिस्थितिकीय तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है प्रवासी पक्षियों की भूमिका, क्योंकि वे दुनिया के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं। महासागरों के

चार पोषक तत्व ले जाते हैं, पौधों का परागण करते हैं, बीज फैलाते हैं, फसलों को बढ़ने में मदद करते हैं और बीमारियों को नियंत्रण में रखते हैं। ये दिन प्रवासी पक्षियों का उत्सव है। जरूरत इस बात की है कि उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाने का हम प्रयास करें। उनकी सुरक्षा, उनके भोजन की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है और इस बार यानी 2026 की थीम भी कहती है कि हर पक्षी महत्वपूर्ण है, तो पर्यावरण संरक्षण में खास योगदान देने वाले पंछियों का स्वागत करें और उनके साथ खुद भी खुशियां मनाएं गीतों के साथ।

0: तो 7:20 से 8 तक जारी रहती है नमस्कार भोपाल की महफिल, जिसका आगाज हो चुका है और हम उम्मीद है कि आप रहेंगे पूरे समय हमारे साथ। आज फील्ड पर जाकर जो जानकारियां हमने आपके लिए जुटाई हैं, उसमें आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में हुए एक आयोजन की चर्चा करेंगे, मिलेंगे मध्य प्रदेश महिला आयोग की नई अध्यक्ष रेखा यादव जी से, और मन की बात में पनीर को मिली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उल्लेख की चर्चा भी हम करेंगे। बस जिस तरह रोजाना सुनते हैं नमस्कार भोपाल, आज भी सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम। कुछ ही पलों बाद हम चलेंगे समाचार पत्रों की खबरों की तरफ।
1: आकाशवाणी भोपाल के सारे सुनने वालों को तहे दिल से नमस्कार, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
0: सुबह के 7:25 और 28 हुए हैं, जारी है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। देखते हैं समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। अधिकतर अखबारों ने जिस खबर को प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है उसमें है, सुवेंदु होंगे पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, आज 11 करेंगे शपथ ग्रहण। सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। शुक्रवार यानी आज कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। आज शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके जब औपचारिक ऐलान किया है तो वो 11 शपथ लेंगे और ये कार्यक्रम होगा परेड ग्राउंड पर। और विधायक दल की बैठक के दौरान अमित शाह ने सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने भय, हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करने का जनादेश दिया है। एक खबर जिसे तकरीबन हर अखबार ने प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया है वो है, पहले स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने 8 मई 2026 को उड़ीसा तट के पास इसका पहला फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया। तारा एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। और भोपाल में देश का पहला रेयर अर्थ और टाइटेनियम थीम पार्क तैयार, ये खास खबर है आपके लिए। देश का पहला रेयर अर्थ एवं टाइटेनियम थीम पार्क भोपाल में स्थापित होने जा रहा है। रविवार को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर अजीत के मोहंती इसका उद्घाटन करेंगे। ये

पार्क अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी IREL की ओर से स्थापित किया गया है। खेल जगत की बात करें तो IPL में कोलकाता ने दिल्ली को 8 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें रखी कायम। फिन एलन के 47 गेंदों में नाबाद शतक और अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL में करो या मरो के मुकाबले में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी। पहले गेंदबाजी करते हुए KKR ने दिल्ली को 8 विकेट पर 142 रन पर रोक दिया था। जवाब में जीत का लक्ष्य 14.2 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। और जान लेते हैं मौसम का मिजाज भी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में सूरज के तीखे तेवर, रतलाम रहा सबसे गर्म। शुक्रवार को प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के जिलों में सूरज के तीखे तेवर देखने को मिले। पश्चिमी मध्य प्रदेश के 8 जिलों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। ये थी समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। यदि आप किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, जनहित में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसकी सूचना यदि हम तक पहुंचाएंगे तो आपकी बात पहुंचेगी दूर दूर तक, क्योंकि नमस्कार भोपाल कई श्रोताओं तक पहुंच रहा है। ये वो कार्यक्रम है जो आपकी सुबह को महकाता भी है, आपको अपडेट भी रखता है। मीडियम वेव के साथ साथ DTH की ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर उपलब्ध है। नमस्कार।

0: तो गीत आपने सुना और अब कुछ ही पलों में हम आप तक पहुंचाएंगे पहली जानकारी, जिसमें हमारे साथ होंगी रेखा यादव।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम इस समय जारी है, नाम है नमस्कार भोपाल। समय मिला ये सुबह के 7:32 हुए हैं।

0: हाल ही में राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव ने पदभार संभाला। महिला उत्थान, नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा जैसे अनेक मुद्दों को लेकर रेखा जी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमने की है एक छोटी सी मुलाकात श्रीमती रेखा यादव के साथ। सबसे पहले तो रेखा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भी है।
0: बताएं कि किस तरह की अनुभूति आपके मन में है।
1: सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व ने, संगठन सरकार ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है और इतना बड़ा दायित्व दिया है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूं।
0: मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद अपने आप में एक बहुत ही गरिमापूर्ण पद है। बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे दायित्व आपके साथ इस समय होंगे। जो प्राथमिकताएं आपने तय करके रखी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि कौन कौन से विचार आपके मन में।
1: प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है, जिसके नेतृत्व के लिए सरकार ने मुझे ये दायित्व दिया है। महिलाओं की समस्याएं जो रहती हैं, वो अपनी आवाज ऊपर नहीं ला पाती। ग्रामीण अंचल आप देखेंगे, एससी एसटी वर्ग है, ट्राइबल एरिया है, उसमें महिलाओं की ऐसी समस्याएं हैं कि जो सिर्फ हम ही लोग सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। उनकी समस्याओं का निदान करना हमारा कर्तव्य है। तो जिन बहनों की समस्याएं हैं और जो बहनें हमारे तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रही हैं, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे।
0: रेखा जी, नारी सशक्तिकरण की जब बात होती है तो मध्य प्रदेश में एक बहुत बेहतर प्रयास हो रहे हैं। बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और अब धीरे धीरे नारी सशक्तिकरण के जो प्रयास हैं वो फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में आज मध्य प्रदेश का स्थान कहाँ पाती हैं आप महिला उत्थान को लेकर?
1: देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इनका सबसे ज्यादा फोकस अगर है तो नारी उत्थान, नारी को मजबूत करना। जैसे लाडली लक्ष्मी हो गई, लाडली बहना हो गई, ये ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, खुद अपने लिए कुछ डिसीजन ले पा रही हैं। एक समय वो था जब महिलाओं को एक बिंदी का पत्ता भी लेना है तो घर के पुरुष से पैसे मांगती थी, हाथ फैला के खड़ी थी। प्रधानमंत्री जी उनने उन बहनों को मजबूत किया है कि कहीं हमारी बहनों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो आज इन योजनाओं से हमारी सारी बहनें मजबूत हो रही हैं, वो खुद अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो रही हैं। बस एक जगह जो हमारा ग्रामीण एरिया होता है, वहाँ सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो शिक्षा। महिलाएं अगर खुद अपने आप को सोचेंगी कि हमें शिक्षित होना है, हमें अपनी बच्चियों को शिक्षित करना है, तो ये समाज वास्तव में सुधर जाएगा, सुधरेगा। और हमारा भी पहला संकल्प यही है कि हम महिलाओं को शिक्षा की तरफ जागरूक करें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि शिक्षा विकास के द्वार खोलती है। और आपने ये भी कहा है कि अब नारी अपने पुराने बंधनों से मुक्त हुई है और एक नई परवाज भर रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर अपराध महिलाओं के साथ काफी देखा जा रहा है और ये स्थिति ना बने, उसको लेकर आप और क्या चाहती हैं कि किस तरह के प्रयास होने चाहिए, क्योंकि हमें नारी को एक उन्मुक्त गगन में ले जाना है।
1: पहली बात तो अपराध को खत्म करने के लिए हम सबको अपनी मानसिकता सुधारना चाहिए। महिलाओं को इतनी बंदिश होती है, कष्ट तकलीफ उठाती रहेंगी लेकिन मर्यादा नहीं लांघती हैं। तो उन मर्यादाओं में बंधी होती हैं, इसलिए उनकी आवाज नीचे ही दबा दी जाती है। बैठेंगे हम लोग, बात करेंगे आपस में बैठ के, अपना जिलावार, तहसीलवार एक ऐसे शिविर लगाएं कि जिसमें हमारी गाँव की महिलाएं निकल के आए और वो अपनी जो उनकी मतलब पर्सनल समस्या है वो भी बताएं। ग्रामीण एरिया में स्वास्थ्य परीक्षण भी कराना चाहिए, क्योंकि भी ऐसी चीजें हैं जो एक तरह से उनके ऊपर मतलब अन्याय होता, अत्याचार होता है। वो आके अपनी आवाज उठाएंगी, अपनी बात रखेंगी हम लोगों तक, हम लोग उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका निदान करेंगे जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी।
0: महिलाएं अपनी आवाज खुलकर उठा सकें, आयोग तक पहुंच सकें, अपनी बात रख सकें, उसके लिए आप किस तरह की पहल चाहती हैं?
1: पहले तो मैं अपने ऑफिस से, यहीं से, विभाग से एक हेल्प लाइन नंबर जो होता है उसको जारी करवाऊंगी। प्रदेश में तो ये ऑफिस है लेकिन जिलावार भी मेरी कोशिश रहेगी, समस्या समाधान केंद्र जो होता है एक जिला स्तर पे खुलवाने का प्रयास करेंगे। और वहाँ पे हम ऐसी टीम गठन करने का सोच रहे हैं कि जहाँ पे महिलाओं के पास, गांव की महिलाएं वहाँ लोकल में अपने आपस में एक दूसरे से बात कर सकें और अपनी समस्या आके उनको बता सकें और वो बात फिर हम लोगों तक पहुँच सके।
0: चलते चलते राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते आप संदेश क्या देना चाहती हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से?
1: एक ही आपके चैनल से संदेश देना चाहती हूँ, सभी भाई लोग मिलकर के हम

0: हमारे आयोग का सहयोग करें तो हम लोग सब समाज मिलके आगे कदम बढ़ाएं और हम अपनी बहनों के लिए हमेशा खड़े रहें। हमारी बहनें कहीं ये ना समझें कि कहीं हम कमजोर हैं, हम लोग उनके सामने तत्पर खड़े रहेंगे।
1: रेखा जी, इतना समय देने के लिए और इतनी चर्चा करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए इस बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: हमारे साथ थी मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष श्रीमती रेखा यादव जी। हम आशा करते हैं कि रेखा जी ने जो संकल्प लिए हैं वो जरूर पूरे होंगे और महिला वर्ग की जिंदगी को खुशियों की तमाम सौगातें हासिल होती रहेंगी। तो नमस्कार भोपाल में हम यही कोशिश करते हैं कि नई नई हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएं और आपके लिए वो हर जानकारी पहुंचाएं जो आपके काम की है और जिसके माध्यम से आप दिन भर अपडेट भी रहें और ऊर्जावान भी रहें। और अब आपकी सुबह को महकाने के लिए एक और प्यारा सा गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिधि चौहान का गाया हुआ। MM करीम है संगीतकार, फिल्म का नाम है सुर।

0: आप घर में हो, सफर में हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, योग कर रहे हो, चाय का प्याला आपके साथ हो, अखबार हो, आप हमेशा नमस्कार भोपाल को बहुत करीब से सुनना चाहते हैं, तब न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर जाइए और मोबाइल पर सुनिए नमस्कार भोपाल।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं जुबिन नौटियाल और आकाशवाणी भोपाल के सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
0: 7:41 और 10 सेकंड हुए हैं। 90 वर्षों से आपके दिलों पर है जिसका राज, वो है आकाशवाणी की आवाज। आकाशवाणी जिसने हर आम और खास को दी है कई नायाब प्रोग्राम की सौगात। 90 सालों के सफर की खुशियों को पूरे देश में एक उत्सवीय माहौल के बीच मनाया जा रहा है और इसी उत्सव के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी भोपाल द्वारा कल एक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी भोपाल से जुड़े प्रसारण कर्मी और स्टाफ ने पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। आकाशवाणी भोपाल के क्लस्टर हेड उप महानिदेशक श्री लोकेश कुमार जी से हमने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जाना, साथ ही जाने हैं कुछ और साथियों के विचार।
2: आज का यह अवसर जो है केवल एक वाकवात नहीं था, बल्कि आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा

0: को जन जन तक पहुंचाने का एक जीवंत उत्सव था। 9 दशकों से आकाशवाणी ने अपनी आवाज के माध्यम से देश की संस्कृति, संगीत, साहित्य, लोक परंपराओं और जनभावना को एक सूत्र में परोने का कार्य किया है। आकाशवाणी केवल प्रसारण का माध्यम ही नहीं बल्कि देश की संस्कृति चेतना की आवाज है। आज हम इस वाक्यथन के सहभागी बन रहे हैं, तो हम केवल चल ही नहीं रहे थे बल्कि आकाशवाणी की उस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प भी ले रहे थे।
1: इस सफर में आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से ये कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और आकाशवाणी किस तरह से नए नए कार्यक्रम श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है?
0: आकाशवाणी के प्रोग्राम की क्वालिटी भी धीरे धीरे सुधर रही है और नई तकनीकी के प्रयोग के कारण ये सब तक सुदूर क्षेत्रों में भी प्रसारण पहुंच रहा है।
1: हमने इस बीच देखा है लोकेश कुमार जी की ढेरों चैनल आए हैं, चाहे वो निजी चैनल हों, दूसरे चैनल हों, लेकिन आकाशवाणी अपने आप में एक अलग संस्थान है, अलग उसकी गरिमा है, उसकी मर्यादा है, तो ये कितना हमें गर्व की अनुभूति कराता है?
0: ये गर्व की अनुभूति इसलिए क्योंकि काफी लोग प्राइवेट चैनलों पर इतना विश्वास नहीं करते, आकाशवाणी की एक अपनी विशेषता है, विश्वसनीयता है, इसी कारण ये सभी लोग के बीच में लोकप्रिय है।
1: किस रूप में आप हमारे श्रोताओं तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सूत्रवाद को लेकर आकाशवाणी काम कर रही है?
0: हाँ जी, आकाशवाणी सभी वर्गों के लोगों के लिए काम कर रही है, यूथ के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए, जवानों के लिए, सभी के लिए काम कर रही है और यही इसका ध्येय है, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, मनोरंजन पहुंचाना, देश की तरक्की में भी इसका योगदान है। मन की बात अब इस समय काफी पॉपुलर है, इसी कारण से, इसकी विश्वसनीयता के कारण से ये ज्यादा पॉपुलर है।
1: हम आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं।
0: धन्यवाद।
2: मैं कपिल शिखरे, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस माध्यम से जी जैन जो हमारे नए श्रोता बनना चाह रहे हैं उनको हम जोड़ना चाह रहे हैं इस माध्यम से। वाकथन का हमारा उद्देश्य यही है।
1: क्या बात है। और आपको लगभग कितने साल यहाँ पर आकाशवाणी भोपाल में हो गए हैं और इससे जुड़कर खुद कितनी गर्व की अनुभूति करते हैं?
2: बहुत गर्व की अनुभूति करते हैं। मुझे 30 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसका हिस्सा बनने से मुझे जो कार्य करने का अवसर मिला है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ की संपदा को अक्षय पात्र के रूप में, जिसको हम आर्काइव कहते हैं, उसको संजोने का जो मुझे मौका मिला है, बहुत पुरानी पुरानी रिकॉर्डिंग जो हमारे बहुत अच्छे लोगों ने जो यहाँ अमूल्य जो अपना योगदान प्रदान किया था उसको सहेजने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, इससे मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ और गौरवान्वित हुआ हूँ।
1: कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी। धन्यवाद।
3: मैं विमल भंडारी, सौभाग्य है आकाशवाणी का सदस्य होने का। इस परिवार से जुड़े हुए मुझे लगभग 45 वर्ष हो गए हैं।
1: 90 वर्षों का प्रसारण का सफर पूरा हो चुका है विमल जी, 45 सालों में आपने आकाशवाणी को किस रूप में महसूस किया है?
3: आकाशवाणी ने जिस तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की है, विषय के अनुरूप, समय के अनुरूप जो अपने प्रसारण किए हैं, उससे आकाशवाणी का निश्चित तौर पर गौरव बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी आकाशवाणी यदि और जीवंतता के साथ लोगों के बीच में आएगा तो निश्चित तौर पर लोग उसके प्रति जागरूक होंगे, क्योंकि आकाशवाणी उसमें दृश्य नहीं होता कोई, तो जब श्रवण शक्ति हमारी अच्छी होती है तो हम ग्राह्य शक्ति भी बढ़ जाती है। मतलब हम ये मान के चले कि आकाशवाणी जो कुछ सिखाता है वो हमारे अंतर से जुड़ जाता है।
1: ये जो वाकथन का आयोजन किया गया, इसके पीछे मूल भावना क्या रही, आपको क्या लगता है?
3: 100 वर्ष तो सब मनाते हैं, 50 वर्ष तब मनाते हैं, लेकिन 90 वर्षों का सफर भी छोटा सफर नहीं होता। 1936 से 2026 तक का ये सफर हमारे उन श्रोताओं के लिए सजगता का प्रमाण होगा जो रेडियो नहीं सुनते। हमारी कोशिश रहती है ऐसे श्रोता हमसे जुड़े जो आकाशवाणी की भावनाओं को समझें, आकाशवाणी की बातों को अपने परिवार में, समाज में, संस्कृति के तौर पर स्वीकार करें।
1: थैंक यू सो मच।
3: धन्यवाद।
4: सुचिता गावड़े, सर मुझे 30 साल हो गए हैं करीबन यहाँ पर। पहले मैं इंदौर में थी।
1: किस तरह की भूमिकाएं आपने निभाई हैं यहाँ पर?
4: मैं यहाँ पर पहले प्रोग्राम सेक्रेटरी थी, अब मैं अकाउंट सेक्शन में हूँ।
1: इस संस्थान ने आपको किस तरीके से गर्व की अनुभूति कराई है?
4: आकाशवाणी अपने आप में ही एक गरिमापूर्ण नाम है, शब्दों में बयां मैं कर नहीं पाऊंगी उसका, लेकिन आकाशवाणी ने जो मुझे दिया है शायद मैं कहीं जाके और नहीं पा सकती थी। आकाशवाणी का मैं तहे दिल से उसको 90 वर्ष की शुभकामनाओं देते हुए उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।
1: इस वाकेथन में आपने पूरे जोर शोर से हिस्सा लिया, ये आपके लिए कितनी खास रही?
4: ये मेरे लिए बहुत खास रही, सभी हमारा स्टाफ ही है, हम सबने मिलके बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट किया है, वही जो अनुभव मैंने करा है वो बताने में थोड़ा सा
1: चलिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप लगातार संस्थान से जुड़कर गौरव की अनुभूति करती रहें।
4: धन्यवाद।
5: मेरा नाम प्रदीप सक्सेना, इस आकाशवाणी में पिछले 36 वर्षों से मैं कार्यरत हूं और मुझे बड़ा आज गर्व का अनुभव हो रहा है कि 90 साल के इस उत्सव में आकाशवाणी

0: अपनी भोपाल के मैं साथ में हूँ।
1: ये वॉकेथॉन का आयोजन अपने आप में कितना खास लगता है आपको?
0: वॉकेथॉन ऐसा है कि जनता को ये बताने की कोशिश की कि 90 साल से अनवरत बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के तहत हम काम करते आ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों का प्रतिसाद है, लोगों का उसे देखते हुए हमें लगता है कि हम युगों युगों तक इसको आगे कैरी कर सकते हैं।
1: तकनीकी पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आकाशवाणी के प्रसारण की जब बात होती है, और सक्सेना जी आप इसी से जुड़े हुए हैं, उसका निर्वहन आप दृढ़ता से कर रहे हैं।
0: जो लोगों तक कंटेंट पहुंचे, क्वालिटी का रहे, उनको सुनने में मजा आए, ये हमारी पूरी तरह से जिम्मेदारी रहती है। और ये भी कोशिश रहती है कि किसी पहाड़ी एरिया में, किसी टेरेंस में जो एक व्यक्ति छोटा सा रेडियो लेके सुन रहा है हमारे देश के कलाकारों की, चाहे वो कृषि से संबंधित प्रोग्राम हो, चाहे संगीत से संबंधित प्रोग्राम हो, चाहे क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित प्रोग्राम हो, चाहे सूचना का तंत्र हो, चाहे जानकारी का तंत्र हो, हम हर चीज लोगों तक समुचित रूप से सही समय पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारा उत्तरदायित्व है, इसे निभाने में हम लगे हुए अनवरत रूप से।
1: चलिए, आप अपने दायित्वों को इसी दृढ़ता के साथ निभाते रहें, ऐसी कामना के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू।
2: आकाशवाणी की आवाज है जन जन की आवाज। गीत संगीत, चर्चा परिचर्चा, दुनिया जहान का हालचाल, गली मोहल्ले, शहर राज्य देश सबकी हलचलों से रूबरू कराने में आकाशवाणी सबसे आगे। इसकी प्रगति का ग्राफ और भी ऊंचा तब होगा जब आप श्रोता कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे, बरसों से जारी मोहब्बत को बरकरार रखेंगे। तो चलिए आकाशवाणी के साथ, क्योंकि हम और आप मिलकर ही रचेंगे कुछ नए कीर्तिमान।

0: जारी है नमस्कार भोपाल की महफिल। सुबह के 7:50 और 20 सेकंड हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात की अहमियत से हर कोई वाकिफ है। वो कार्यक्रम जिसमें समाज से जुड़े विविध पहलुओं पर प्रधानमंत्री अपने विचार साझा करते हैं। पिछले मन की बात में उन्होंने ब्राजील में हुई अंतर्राष्ट्रीय पनीर प्रतियोगिता में भारतीय पनीर को मिले मेडल्स और उसकी प्रसिद्धि का जिक्र किया। हमने इस उपलब्धि पर और साथ ही पनीर की विशेषताओं पर बातचीत की है होटल प्रबंध संस्थान भोपाल के प्राचार्य डॉक्टर रोहित सरीन और कुछ संकाय सदस्यों से। पहले प्राचार्य श्री सरीन।
1: पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में ये सब्जेक्ट ये टॉपिक उठाया। पनीर बहुत सालों से हमारे इंडिया में काफी भोजन में डिशेस में काफी प्रचलित रहा है। उनके द्वारा उठाया हुआ ये पहला कदम हमें कम से कम उस डायरेक्शन में ले जाएगा जो कि हम रोज ही सुनते रहते हैं कि फलाने का पनीर रिफाइंड ऑयल से बना है, ये सोयाबीन से बना है, इसमें ये मात्रा है। मतलब पनीर की ओरिजिनैलिटी जो है खत्म हो रही है। तो कम से कम एक पुश है जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो और गंभीरता से लेंगी और प्रॉपर टेस्टिंग सैम्पलिंग करेंगी। भारत तो वैसे ही विभिन्न सभ्यताओं और विभिन्न कुजींस के लिए जाना जाता है और पनीर एक ऐसी चीज़ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखें तो हर ही राज्य में पनीर की कुछ ना कुछ डिश बन रही है। मैं तो यही कहूंगा कि पनीर के फायदे ही फायदे हैं जी, कि एक तो मिल्क प्रोडक्ट मिल गया, आपके टेस्ट बड्स भी काफी अच्छे रहते हैं।
0: IHM की तरफ से आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि जब पनीर की जब बात निकली है और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, तो किस तरह से आप उसमें कुछ नवाचार करने के पक्ष में रहेंगे आने वाले समय में, विद्यार्थियों को कुछ नया सिखाएंगे?
1: हमारे यहाँ जैसे एक वेजिटेरियन

0: बैच भी चलता है। हमारे पास वेजिटेरियन ऑप्शन है ही पनीर, क्योंकि हम पनीर की तुलना करते हैं बाकी सारे दुनिया के मीट प्रोडक्ट से कि भी अगर आज चिकन है उसका बदला भी पनीर है, आज मटन है उसके बदले भी पनीर है, तो पनीर तो है ही है। तो अगर आप भोजन में आप ये देखें, अगर हम घरों में भी देखें, तो जब कभी कोई हमारे कजन्स आते हैं या जैसे कोई रिश्ता देखने आया तो लंच डिनर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो पनीर की एक डिश होनी ही जरूरी है। मैं तो कहता हूँ ये अच्छी बात है।
1: हमारे साथ थे IHM के प्राचार्य डॉक्टर रोहित सरीन, और अब जानते हैं विचार श्री अंकुर किशोर और अरुणव नंदी जी के, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं।
2: ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सारे ऐसे इंडिया के खुद के चीज हैं जिनके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसा कि आदरणीय मोदी जी ने बताया कलरी चीज के बारे में, ठीक है, जिसको कलड़ी भी बोला जाता है, जो कि हिमाचल में और जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, जिसको इंडियन मोजरेला भी कहा जाता है, ठीक है, कश्मीरी मोजरेला भी कहा जाता है। उसके अलावा चुरपी बहुत ही फेमस हमारा एक चीज है, जो कि हम उसको याक के मिल्क से बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने गुजराती पनीर, जिसको हम बोलते हैं सुरती पनीर या टोपलीनू पनीर बोलते हैं उसको हम, वो एक बहुत ही सॉफ्ट चीज है, इंडिया कंज्यूम हो रहा है। हम लोग भी इन सब चीजों पे रिसर्च करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हमारे टॉपिक्स है, हमारा करिकुलम इस तरीके का है कि क्या क्या प्रोडक्ट हमारे इंडिया में अवेलेबल है, उन पे रिसर्च चलती रहती है, उस पे हम लोग काम करते रहते हैं। हम लोग छेना को यूज करते हैं, कहने के लिए वो एक पनीर की वैरायटी है जो कि हलवाइयों तक ही सीमित है, वेस्ट बंगाल में कलिमपोंग चीज है। इसके अलावा आपका कदम चीज है, जो कि एक कश्मीरी चीज है जो कि गोट मिल्क से बनता है, और इनको प्रिजर्वेशन करने की इनकी टेक्निक्स है, उनके कल्चर है। तो ये सब चीजें हम अपने बच्चों को आने वाली जनरेशन को अवेयर करेंगे तो इंडिया कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दीज थिंग्स ओनली।
1: नंदी साहब से मैं जानना चाहता हूं कि नंदी साहब, पनीर की जब बात होती है तो वर्तमान में इसकी लोकप्रियता इतनी है कि आप किसी ढाबे पर चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, तो सबसे ज्यादा जो मेन्यू में वैरायटी होती है वो पनीर की होती है, चाहे वो पनीर पसंदा हो, पनीर लबाबदार हो, कढ़ाई पनीर हो, बहुत सारी है। किस तरह से इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और लोग जब जाते हैं तो उन्हें पनीर की एक लंबी सूची नजर आती
3: है? सही है, हम जब पनीर का जो लोकप्रियता है सबके स्तर पे, एकदम बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कोई पनीर पसंद कर रहा है। नॉन वेजिटेरियन लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है मीट में, ये बन सकता है वो बन सकता है, लेकिन वेजिटेरियन के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो पनीर है, क्योंकि प्रोटीन जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है हमारा, उसका मैक्सिमम मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटीन दैट वी गेट फ्रॉम पनीर। वेजिटेबल से हमको आयरन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स बाकी सारे मिल सकते हैं, लेकिन मेन जो एनिमल प्रोटीन जो जरूरत होता है बॉडी के लिए, उसका एक सोर्स मिल्क प्रोटीन से बना हुआ पनीर है। हम देखेंगे कि बच्चे से लेके बूढ़े आदमी सब पनीर को पसंद करे, और सबसे बड़ी बात है इट इज इजी टू डाइजेस्ट आल्सो, कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइबर्स उसमें होता नहीं है कि जिसके लिए उसका डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है किसी का, वैसा नहीं होता। और पनीर का सबसे खास बात जो है ग्रेवी जो भी हो, पनीर सबके साथ घुल मिल जाता है। ये
1: वाह, स्वादिष्ट भी, लाजवाब भी, पौष्टिक भी है भारतीय पनीर। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी खूबियों को जानकर आप भी अपने आहार में इसे शामिल करेंगे, साथ ही इसकी प्रसिद्धि को और भी बढ़ाएंगे। और नमस्कार, भोपाल में अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी फिल्म जगत के मशहूर गायक तलत महमूद की आज पुण्यतिथि है। ऐसे गायक जिन्होंने अपनी लरस्ती आवाज के जरिए एक विशेष पहचान बनाई, और इसीलिए उनके गीतों को सुनने की चाहत कभी कम नहीं होती।

कई बार हमारी कमजोरी भी हमारी ताकत बन जाती है। कुछ ऐसा ही तला साहब के साथ भी हुआ। कभी उनकी कांपती हुई आवाज को जहां नापसंद किया जाता रहा, ऐसे में महान संगीतकार अनिल विश्वास ने उनकी इसी लर्जिश को उनकी खासियत में बदल दिया और सालों तक उनकी गायकी का यही अंदाज कामयाबी के साथ जारी रहा।

तलत महमूद साहब की गायकी सुनने वालों को एक सुखद एहसास कराती है, दिल को सुकून देती है। फिर चाहे उनके गमगीन नगमों को सुने, उनकी खूबसूरत गजलें सुने या फिर लोकांचल की खुशबू में डूबा हुआ तराना, सभी एक से बढ़कर एक उन्होंने एक से बढ़कर एक नगमे गाए और तकरीबन हर संगीतकार के साथ उन्होंने सुरीली पेशकश दी।

तलत महमूद की ख्वाहिश शुरुआत में अभिनेता बनने की थी और कुछ फिल्मों में अभिनय के जरिए ये पूरी भी हुई। इनमें वारिस, आराम, डाक बाबू, एक गांव की कहानी, नादान आदि के नाम शामिल हैं। जितने उनके एकल गीत खूब पसंद किए गए, वहीं उनके युगल गीतों का भी जवाब नहीं। फिल्म मौसी का ये गीत सुनिए।

0: गजल गायकी को श्रेष्ठता और सम्मान दिलाने में तलत महमूद साहब का खास योगदान रहा। फिल्मों में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। तो उन्हें आज हम याद करते हैं अपनी इस लघु प्रस्तुति के माध्यम से। और आज का कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार भोपाल द्वारा निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल पिन 462002 इस पते पर अपनी प्रतिक्रिया भेजकर अब इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार ले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
3: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृह मंत्री

0: शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
1: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ

0: जिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम

0: एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपये गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: is Gujarat Titans at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. The match will begin at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Shagun. All the newspapers cover the nation's political fervor. Dada to replace Didi in West Bengal. Vijay meets governor again, left on hold, is the headline in Hindustan Times. While the Times of India writes, Bengal's Adhikari Suvendu to be state's first BJP CM. Uncertainty continues in Tamil Nadu government formation, cites the Hindu. The Indian Express quotes Rajnath Singh describing Operation Sindoor as short duration, deep penetration and high impact operation. Under the headline, Operation Sindoor showcased our capabilities ethos. China admits backing Pakistan during conflict with India, writes the Pioneer. SC raps Punjab police for letting off drug sharks, cites the Tribune. US awaits Iran response to peace proposal as Gulf fighting flares up, reports the Indian Express. The Asian Age in an exclusive title for both US and Iran, peace the only choice, writes that the reality of the war is that the two major combatants need peace, and it is up to the US to rein in Israel and its action in Lebanon. The only hope is negotiations will begin in earnest during another 30-day ceasefire, as envisaged in the latest peace plan. And finally, Google explores major AI infra investments in India, notes Financial Express. Elaborating, tech giant Google is exploring investment opportunities in India across AI as well as of servers and drones. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to take oath as first BJP Chief Minister of West Bengal this morning. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah to attend the swearing-in ceremony. Uncertainty continues over government formation in Tamil Nadu. Lieutenant General N.S. Raja Subramani appointed new Chief of Defence Staff. IMD forecasts heavy rainfall over Keralam, South Interior Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry during next 2 days. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under-17 Women's Asian Cup quarterfinals for the first time. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है. प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा. सुरमई सवेरा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार. श्रोताओं, गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और बच्चे जो है वो घर पर जिद कर रहे हैं कि भाई हमें घूमने जाना है, या कई बच्चे जो हैं वो घूमने निकल भी गए हैं. वाकई श्रोताओं, घूमने जाना किसे पसंद नहीं होता. बड़ों को भी घूमना पसंद होता है, बच्चों को भी घूमना पसंद होता है, और घूमने से, नई नई जगहों को देखने से, नए नए लोगों से मिलने से जो है वो हमारा दिल भी खुश होता है. और जो हमारा जब दिल खुश होता है, हम प्रसन्न होते हैं, तो हमारी जो है वो खुशियाँ जो हैं वो डबल हो जाती हैं. तो क्यों ना इन गर्मियों में नई नई जगह घूमिया जाए और बच्चों को जो है वो लेकर नई नई जगहों पर लेकर जाया जाए और उन्हें नई नई जगहों की जानकारी भी दी जाए. तो इससे बच्चों की जानकारियाँ भी बढ़ेंगी और उन्हें मज़ा भी आएगा, और इसके साथ साथ जो बड़े हैं वो भी जो हैं वो घूमने का पूरा आनंद ले सकते हैं.

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तो हम बात कर रहे थे कि गर्मियों के

छुट्टी जो है वो वाकई कितनी जो है उन छुट्टियों का इंतज़ार रहता है, गर्मियों की छुट्टियों का जो है वो छात्रों के लिए जो है वो साल का सबसे जो है वो इंतज़ार वाला वक्त होता है। ये सुकून से छुट्टी का समय है और आराम करने और तरोताज़ा होने का एक जो है वो अवसर कह सकते हैं उसको है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो है वो परिवार के साथ अच्छा समय बिताया जा सकता है, पहाड़ों की और कहीं भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ की यात्राएं की जा सकती हैं। तो कह सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो सभी के लिए सबसे इंतज़ार वाला वक्त होता है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी भोपाल के उर्दू नशरियात के तहत समाप्त फरमाएं सोमवार सुबह 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम आईना।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
1: फसा।
3: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनिए स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर रोचक जानकारियों का साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण प्रति सोमवार 1:00 PM।
7: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, जब भी हम कहीं सफ़र पर निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमें खुशी होती है कि हम सफ़र किस चीज़ से कर रहे हैं। गाड़ियों से सफ़र, प्लेन से सफ़र बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो सफ़र का आनंद है वो आता है ट्रेन से। जी हाँ, बच्चों को तो अक्सर जो है वो रेल का सफ़र बहुत भाता है। तो हमने भी बचपन में काफ़ी रेल के सफ़र किए हैं और आपने भी किए होंगे, तो वाकई आता है ना आनंद रेल के सफ़र में। तो बच्चे जो हैं वो हमेशा कहीं जाने की जब ज़िद करते हैं या कहीं हम जाते हैं घूमने, तो सबसे पहले उनका यही रहता है कि किस चीज़ से जा रहे हैं हम। तो भाई वो ये बोलते हैं बच्चे कि हमें तो रेलगाड़ी से यानी ट्रेन से ही जाना है, सफ़र करना है। तो वाकई श्रोताओं, ट्रेन का सफ़र जो है वो सभी को बहुत अच्छा लगता है।

जी हाँ श्रोताओ, ट्रेन से सफ़र करने का आनंद ही कुछ और होता है और बच्चे तो चाहते ही हैं कि घूमने फिरने कब जाएं। इस दौरान बच्चों को हमें जो है वो ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जहां उनका जो है वो दिमागी विकास भी हो, जैसे कि कुछ ऐसी हमारी धरोहरें हैं हमारे देश की जो हम बच्चों को दिखा सकते हैं, उन्हें उसके बारे में बता सकते हैं, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बच्चों को जो है वो उनको दिखा के जो है वो चीज़ें वो सीख सकते हैं और अपने जो घर के जैसे दादा दादी हैं नाना नानी हैं उनके यहाँ भी ले जाकर बच्चों को जो है उनसे मिलवा सकते हैं, उनकी जो बातें हैं वो बच्चे सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं और आपस में जो है वो प्यार से आगे रहना भी सीखते हैं। तो इस तरह से जो है वो गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो बच्चों को हम ले जाके घुमा सकते हैं और बच्चे अपनी छुट्टियाँ इस तरह से बिता सकते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टी जो है वो कैसे बिताई जाए। तो गर्मी का जो मौसम है वो नई जगहों पर सैर करने का होता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो बच्चों की छुट्टियां हुई होती हैं या आउटडोर खेलों में बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। गर्मी का मौसम जो है वो आम, ठंडे पेय और आइसक्रीम का आनंद लेने का भी कह सकते हैं।

0: समोसा।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रुतो, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लेकिन अभी एक छोटे से अंतराल के बाद ये कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि अभी वक्त है इस घंटे की खास खबरों का। तो अभी फिलहाल हम सुन लेते हैं इस घंटे की खास खबरें।
4: पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पिछले दो दिनों में 97 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। डॉ. यादव ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई दी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर भी बना हुआ है। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि उज्जैन में 42.4 और इंदौर भोपाल में 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर लगातार 4थी जीत दर्ज की। फिन एलन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और प्रदेश पुलिस ने बीते 1 हफ्ते में अलग अलग जिलों में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 83 लाख रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और बच्चे इस वक्त जो है वो ज़्यादातर फ्री होते हैं, तो उनको मोबाइल से दूर रखने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? तो बच्चों को ज़्यादातर स्क्रीन टाइम वो ना एक्सपेंड करें, इसके लिए जो है वो आप उन्हें किसी भी तरह की घर के काम करवा सकते हैं, उन्हें कुछ काम सिखा सकते हैं, उन्हें जो है वो उनकी रुचि का, जैसे उन्हें अगर पेंटिंग पसंद है तो वो आप उन्हें पेंट रंग ला के दे सकते हैं, उसमें आप उन्हें कह सकते हैं कि आप अपनी पसंद की पेंटिंग करिए। उसके साथ साथ जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बच्चों को जो है वो उसमें सिखा सकते हैं। और हाँ, आप जो हैं उन्हें कहानियाँ भी सुना सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, कुछ ऐसी कहानियाँ जिनसे बच्चों को सीख मिले, आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा मिले, तो इस तरह से जो है वो बच्चों की छुट्टियाँ भी मज़ेदार बनेंगी और उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा।

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ, बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली।

0: जय। हाँ बोलो हनुमान की जय। जय हो बजरंग बली की जय।
1: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

श्रोताओं, कहीं भी घूमने जाने का प्लान तो बन ही जाता है और हम जाते भी हैं घूमने, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है सुरक्षित यात्रा। जी हाँ श्रोताओं, जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी जगह जाने की योजना बनानी है। कीमती सामान जो है वो कम से कम साथ में रखें। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें, यानी आप कहीं अगर घूमने जा रहे हैं, वहाँ की संस्कृति देखें, तो उसको जो है वो नुकसान ना पहुँचाएं। और अपने परिवार को अपनी लोकेशन बताते रहें कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं, और आप जो है वो इस तरह से सेफ़ रह सकते हैं। और अगर रात में आप सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो सुरक्षित परिवहन चुनें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहें। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी यात्रा को जो है वो सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं।

तो श्रोताओं, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा को अब यहीं समेटने की हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि वक्त हो चला है अब अगले कार्यक्रम का। तो फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा से अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इजाज़त दें, नमस्कार। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेमलता नागदेव की गाई निमाड़ी भजन।

लोक संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं प्रेमलता नागदेव, इनसे आप सुन रहे हैं निमाड़ी भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रेमलता नामदेव को, इनसे आज आपने सुनी निमाड़ी भजन। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं व्यंग की बारीकियां विषय पर वरिष्ठ उपन्यासकार, लेखक एवं पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से शुभम तिवारी की बातचीत।
1: डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियोज में उपस्थित हैं। वरिष्ठ उपन्यासकार हैं, लेखक हैं और 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ज्ञान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते।
1: शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे बातचीत की कि ये व्यंग लिखने की, ये चुटकियाँ लेने की और कटाक्ष के माध्यम से समाज को आईना दिखाने की शुरुआत कैसे हुई आपकी?
2: देखिए, मैं कहूँ कि मैंने लिखना शुरू किया तो मैं तो जब छठवीं कक्षा में था तब मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई। फिर हर लेखक का मैं मानता हूँ कि वो कई विधाओं में टहलने के बाद और घूमने के बाद और खोजने के बाद उसे लगता है ये जगह है जहाँ मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, ये मैं लिख सकता हूँ। मैं कविता भी लिखी, मैंने जासूसी उपन्यास भी लिखे, मैंने कहानियाँ भी लिखी, मैं जाके मंच से शेर व शायरी भी करने लग गया। पर आपको पता लगता था कि नहीं, कुछ चीज़ छूट रही है आपसे
1: जी।
2: और फिर आप, मैं शायद 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ तब मैं एकदम परसाई और शरद जोशी और इनके लेखों को मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो क्या बात है, ये चीज़ है, क्योंकि ये मेरे स्वभाव से मेल खाता है। जितना मैं चीज़ों को लेके तिलमिलाता हूँ, जो आसपास घट रहा है समाज, उसमें जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको लेके जो मेरे मन में आता है, वो ये विधा मेरे को लगता है मेरी विधा है। तो मैं मेडिकल कॉलेज में था, 1971 में मेरी पहली रचना व्यंग की छपी होगी
1: जी।
2: और तब से लिख रहा हूँ। अब से वजह नहीं कितना दिन हो गया, अब तो शायद 40 साल से ऊपर हो गए, और भी ज़्यादा हो गए। तो मैं लंबे समय से व्यंग लिख रहा हूँ तब से।
1: आपकी एक टिप्पणी मैंने कहीं पढ़ी थी कि व्यंग के साथ रहना एक अलग बात है और व्यंगकार के साथ रहना एक अलग बात है, इसको हम चाहेंगे कि थोड़ा एलेबोरेट करें हमारे श्रोताओं के लिए।
2: ये हमेशा कहा जाता है कि आदमी लेखक के तौर पे क्या अलग हो सकता है अगर वो गलत आदमी है, और लिखना बहुत सही कर सकता है क्या एक आदमी जिसमें जीवन में संवेदनाएं हो ही ना, या वो कितनी संवेदनशील कविता लिख सकता है जो संवेदना के विरुद्ध जीवन में काम करता हो, जो जीवन में बेईमानियां करता हो, जो चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करता हो, जो यहाँ वहाँ समझौते करता हो, जो गरीबों का हक मारता हो जीवन में, वो एक बड़ा अफसर हो चाहे जो हो, और साथ में वो शौकिया व्यंग भी लिखे, उसकी व्यंग में वो ताकत होगी क्या? नहीं होगी। मैं इन व्यंग की बात कर रहा हूँ। अगर जेन्युइन व्यंगकार है तो वो जैसा व्यंग लिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है, कम से कम व्यंग के मामले में तो कह सकता हूँ कि वो लगभग जीवन में उसी के आसपास होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कमतर निकल आए, बहुत सारी चीज़ों में आपको भी जीवन में जीने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, चीज़ों से एडजस्ट करना पड़ता है, पर आमतौर पर आप थोड़ा अलग आदमी होंगे। तो व्यंगकार के साथ जीना दिक्कत वाला यहाँ है उन लोगों के

0: के लिए जो जीवन से नामालूम क्या क्या उम्मीदें करते हैं, और बैकडोर एंट्री, पुराने पीछे के दरवाजे, यहाँ से सिफारिशों से चीज़ें प्राप्त करना, ऐसे बहुत सारे बैंकर भी हैं, बड़े बड़े बैंकर हैं, पर उनके व्यंग में वो ताकत नहीं है। वो यहाँ वहाँ समझौते कर रहे हैं, यहाँ से पुरस्कार ले रहे हैं, वहाँ से जुगाड़ लगा रहे हैं। तो व्यंग में कम से कम एक व्यंगकार का व्यक्तित्व तो बड़ा प्योर सा होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में, एकदम तो नहीं कि वो संत हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि वैसा होना चाहिए। और ऐसे आदमी के साथ रहना हमेशा ही एक दुनियादारी वाले आदमी के रहना को कठिन होता है, इसलिए ऐसे लोगों के सही सच्चे दोस्त कम होते हैं, उसे बर्दाश्त करने वाले लोग कम होते हैं। हम अपना बता रहे हैं कि ऐसे ही है हमारा भी।
1: इसी संदर्भ से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि आजकल कई सारे जो नवोदित व्यंग्यकार हैं वो बहुत जल्दी प्रसिद्धि पाने के लिए फूहड़ता पर थोड़ा सा उतर आते हैं, खासकर जो मंचीय व्यंग्यकार हैं। तो ये जो एक संतुलन बनाना है कि हम उस सीमा से भी बाहर ना जाएं और हमारे व्यंग्य में वही मारक क्षमता हो जिससे कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हो उनको उस व्यंग्य में निहित करुणा का एहसास हो, इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
0: देखिए क्या है, आप नए व्यंगकार और पुराने व्यंगकार मत करिए, वो आदमी कोई भी किसी भी विधा में, बहुत अच्छी बात ज्ञान रंजन ने कही थी एक बार कि जिन्हें ओवरनाइट स्टार बनना हो, साहित्य वो जगह नहीं है,
1: जी
0: तो कृपया साहित्य में ना आए, कुछ और चीज़ ट्राई कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं। और साहित्य के नाम पे आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इवन जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं वो भी लोग चाहते हैं कि उसको साहित्य माना जाए, उस तरह की चीज़ भी। ये बड़ी जल्दबाजी में लोग हैं, और साहित्य के लंबा एक मैंने कहीं परसों बोलते हुए मैंने कहा था कि एक धीमी आंच में पकने वाला मामला है,
1: बिल्कुल
0: पकाने वाला मामला है, ये धीमी आंच का व्यंजन है, इसे अगर आपने ज़्यादा आंच दे दी तो जल जाएगा, और पहले उतार लिया तो कच्चा उतर आएगा, और वही हो रहा है। ये कच्चे उतार कर परोस रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे खाइए और वाह वाह ही करिए। और या फिर आप मतलब जितने ये आप मंच की कविता की बात किया, मंच के वो तो छोड़ ही दीजिए, बहुत बड़ा किस्सा है, बहुत बड़ी बात है, पर मैं जितने लोग साहित्य में, व्यंग्य साहित्य में या कहानी में या कविता में उतरने की सोचते हैं या कर रहे हैं, उन्हें रातों रात उस फील्ड का स्टार, आज 40 साल बाद लोग कहते हैं हमें ज्ञान चतुर्वेदी एक अच्छे लेखक हैं, बढ़िया हैं, लोग मिलने को
1: आते
0: चाहते
1: हैं
0: हैं
1: जी।
0: आपसे, आपको बुलाते हैं बोलने के लिए। तो ये रातों रात नहीं हो गया, मैं तो आपको कहता हूँ कि इसी भोपाल में 18 साल करीब शुरू किए, 17-18 साल, मैं कभी यहाँ कोई फंक्शन भी होता था तो मैं पीछे जाके बैठ के सुन लेता था, कोई बड़ा लेखक आया, कुछ आ गया, मुझे लगता है पहली बार मनोहर श्याम जोशी जी आए थे, और वो मैं तो सुन रहा था दर्शकों में बैठ के, मैं कुछ मुझे यहीं के लोग नहीं जानते थे कि कोई ज्ञान चतुर्वेदी है जो धर्म में छप रहा है, जो इतना, इसका पहला नॉवल भी आ गया और बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। मैं बोलता भी नहीं था किसी से कि मैं ज्ञान चतुर्वेदी हूँ, आके बैठ के अपना कार्यक्रम सुना और निकल गए। उन्होंने मुझे मंच से पहचाना और कहा कि ज्ञान चतुर्वेदी जी बैठे, तो बहुत लोगों ने पलट के देखा, और फिर मेरे को लोगों ने पहचाना कि अरे ये भोपाल का है। अब मेरे को कोई उससे वो भी नहीं होती थी कि मुझे कोई पहचान नहीं रहा, मुझे कोई क्यों नहीं कह रहा कि अरे देखो, उस समय धर्म में छपा हुआ लेखक बहुत बड़ा लेखक मानता था, मैं तो
1: बिल्कुल
0: लगातार धर्म में छपा जा रहा था। तो जल्द मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी करेंगे तो आप लेखन से इतर हटकर दूसरी हरकतों में मुब्तला
1: उलझ
0: हो
1: जाएंगे।
0: जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: और जब उससे हट जाएंगे तो आदमी के दिमाग एक टाइम पर एक ही विचार से डील कर सकता है, वरना विचारों का भगदड़ मचा तो कोई क्रिएटिव विचार वहाँ रहता नहीं। तो आपको बहुत अपने विचार के साथ, अपने लेखन के साथ बहुत अकेले रहने की एक व्यायाम आना चाहिए, वो नहीं आता आपको अगर, तो आप लिख लोगे अभ्यास बस, पर बात नहीं बनेगी, वो आपके लेखन में बात नहीं बनेगी। आपने अगर वो डूब के लिख नहीं पाया, जब डूब के लिखने लगे तभी आपको याद आता है यार फलानी जुगाड़ बनाना है, वो आप जल्दी में हैं,
1: बिल्कुल
0: आप बहुत कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है पहले आप लिखिए और जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। अच्छा काम तो रिकॉग्नाइज होगा ही,
1: बिल्कुल
0: ये दुनिया कितनी भी खराब हो जाए, ये दुनिया जुगाड़बंदियों वाले हाथों में कितनी भी चली जाए, ये जुगाड़बंदी वाले लोग जो जुगाड़ से महानता प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं या थोड़ी बहुत तथाकथित महानता प्राप्त कर भी लेते हैं, ये आदमी सबसे ज़्यादा जेन्यून आदमियों से डरता है। ऐसे आदमी जेन्यून लेखकों से डरते हैं, जेन्यून लेखन से डरते हैं। तो आप खूब जेन्यून लिखिए, देखिए आपसे कितने इस तरह के लोग डरेंगे और कहाँ आप पहुँचेंगे। आप जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी के खिलाफ मैं भी।

0: इस व्यंग विधा का अब और भी ज़्यादा प्रचलन में इसलिए भी आ गई क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम जी रहे हैं, और अब हर कोई चाहता है कि कोई भी मुद्दा जो घट रहा है इस समय देश में उस पर कुछ ऐसा चुटीला व्यंग किया जाए कि उस व्यक्ति तक वो बात पहुंच जाए। कितना महत्व आप समझते हैं सोशल मीडिया का आज के दौर में
1: सोशल
0: व्यंग विधा
1: मीडिया
0: के
1: का
0: लिए?
1: बहुत, व्यंग विधा के लिए भी अदर वे। देखिए, हमेशा याद रखिए कि एक है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो मुझे जितने माध्यम मिल सकें इसको पहुंचाने के लोगों तक, वो मेरे लिए हमेशा ही उनका मैं स्वागत करूंगा। पहले था केवल एक एक मैगजीन है, वो छपी, उसके संपादक ने पसंद किया, काट चाट के कर दिया और छाप दिया। उससे तो एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए जगह ये बन गई कि मैंने आज एक बहुत अच्छा लिखा, मैं लाखों आदमी तक यूट्यूब पे पढ़ के दे दूँ, पसंद आएगा लोगों को क्योंकि मेरा अच्छा है, तो लाखों लोग सुनेंगे, हज़ारों तो सुनेंगे ही। मैं फेसबुक पे डाल दूँ, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँ, वो अगर अच्छा
0: ट्विटर में
1: होगा
0: डाल
1: तो
0: दें।
1: वो
0: हाँ
1: लोग एक दूसरे को भेजने लगते हैं। पर यहाँ भी पहली शर्त है कि आपके लेखन में दम है कि नहीं।
0: बिल्कुल,
1: अगर माध्यम बहुत ज़बरदस्त मिल गया आपको, सोशल मीडिया एक बहुत ज़बरदस्त माध्यम है जिसका कि दुष्प्रभाव ये है कि मैं इस जल्दबाजी में कि यार मेरे पास तो है, और कोई एडिटर नहीं है उसका, आप ही एडिटर हैं, आप ही लिख रहे हैं, आप ही बताते हो कि बहुत अच्छा है और आप ही उसे डाल देते हो, कोई तीसरा आदमी उसे इवेल्युएट करता ही नहीं, और आत्मालोचना का आप में भाव नहीं है। आप तो समझते हैं मैंने जो लिखा है वो क्या बढ़िया है, आप उसे डाल देते हो, तो वही अधकच्चे माल को डालने की बात है, अधपके चीज़ को आप परोसने की बात है। तो आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है, सोशल मीडिया में गलत किस्म का व्यंग भी इसी हिसाब से जा रहा है। और आप औपचारिकता में कितने लोग हैं जो थम्ब अप कर देते हैं, कितने लोग हैं जो
0: बिल्कुल,
1: स्माइली देते हैं, कितने लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, वो बिना आपका आया है अभी, और जितने में उसे पढ़ा भी नहीं जा सकता उतने में 10 लोगों ने लाइक भेज दिए,
0: बिल्कुल,
1: और आप बड़े खुश हैं कि आज मेरे इस पे इतने लाइक। तो लाइक डजंट एक्सप्लेन,
0: नहीं
1: लाइक
0: जरूर
1: से
0: करता
1: कोई
0: है।
1: नहीं बता रहा है कि उसने वास्तव में पढ़ा है और उसे समझ के हाँ कहा, अच्छा कहा है। तो सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं एक अच्छी रचना को लिखूं तो उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मीडियम है। पर सोशल मीडिया की दिक्कत ये हो रही है आज के रचनाकारों के साथ, ज़्यादातर के साथ, कि वो सोशल मीडिया ने उन्हें बहुत, यहाँ भी जल्दबाजी वाली बात है कि वो इनवाइट कर रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तो वो जल्दी आ रहे हैं और जल्दी कुछ भी लेके आ रहे हैं, और लाइक्स को मानते हैं कि यही एप्रिसिएशन है, यही मेरे शायद रचना के बहुत अच्छे होने का संकेत है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो लोग सोशल मीडिया, जैसे मैं फेसबुक पे हूँ भी और नहीं भी, मैंने
0: जी
1: शायद आज 5 साल से कुछ फेसबुक पे लिखा नहीं, मैं 2 लोग भेजते हैं मैं पढ़ लेता हूँ, उससे मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा खो दिया हो।
0: नुकसान कर दिया
1: हाँ,
0: हो।
1: कोई ऐसा खो दिया हो, हो सकता है मैं अपनी किताब का प्रचार करता, पर मैंने पाया कि मैं अच्छा लिखूंगा तो लोग मानेंगे ही
0: पसंद
1: कि
0: करेंगे,
1: हाँ पहुँचेगी वो बात, वही यंग बच्चे पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, तो आपकी चीज़ में दम होना चाहिए। बहुत से लेखक, बहुत सारे कलाकार हैं जो कहीं कुछ नहीं करते और केवल किसी फंक्शन में नहीं जाते, और बड़े कलाकार हैं और दुनिया पसंद करती है, और एक ऐसे हैं जो हर जगह पहुंचते हैं और पिट भी रही है उनकी फिल्में,
0: बिल्कुल,
1: उस तरह हर कलाकार का है, चाहे लेखक हो चाहे जो हो, आपकी काम में आपका कितना मन है उस पर सब निर्भर करता है। तो आप सोशल मीडिया को अगर क्लेवरली इस्तेमाल कर सकते हो ज़रूर करिए, पर याद रखिए कि जो चीज़ आप बेच रहे हो वो अंततः ग्राहक के पास पहुंचती है। अमेज़न में तो खैर वापस कर देते हैं आप खराब प्रोडक्ट को,
0: बिल्कुल,
1: वो फेंक नहीं
0: यहाँ
1: पाता आपकी
0: संभव
1: बात,
0: नहीं
1: तो
0: है।
1: बस
0: हाँ,
1: वही है, वरना अगर ये व्यवस्था आ जाएगी तो आपके पास बहुत सारा कचरा वापस इकट्ठा हो जाएगा।
0: एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि गुणवत्ता होनी चाहिए आपके लेखन में जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग उसे पसंद कर सकें, लेकिन सोशल मीडिया का जो एक सीमा है कि 160 या 180 कैरेक्टर्स के अंदर हमें बात अपनी कहनी है, फिर ये कितनी बड़ी चुनौती उभर के सामने आती है।
1: नहीं देखिए, मैं तो अभी बात कर रहा था आपको, व्हाट्सएप वगैरह पर बड़ी चीज़ें भी भेज सकते हैं, पर ट्विटर वगैरह में जहाँ
0: हाँ
1: पर आपको कम, देखिए बड़ी बात बहुत छोटे शब्दों में भी कही जा सकती है। आप आज तक कबीर के दोहे क्या 2 पंक्तियों में,
0: बिल्कुल,
1: और
0: सूर के दोहे,
1: जीवन की इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सूरदास जी के पद
0: बिल्कुल,
1: या रहीम के दोहे, तो ये बड़ा और छोटा किसी रचना को बड़ा और छोटा नहीं बनाते, ये आपकी सोच और आप जीवन की कोई बड़ी सच्चाई से जब रूबरू करा रहे हैं पढ़ने वाले को, तो ये बिल्कुल नहीं होता कि ये रचना लंबी होगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, छोटी होगी तो बहुत छोटी हो जाएगी। जब मैं ट्विटर पे उतरूंगा तो मुझे मालूम है कि मेरी सीमा ये है, मैं उतरूंगा ही तब, अगर
0: उस मानस से
1: मैं
0: ही निकलेंगे।
1: हाँ बता, और अब

0: उसमें मुझे बड़ी बात कहनी है तो मैं कैसे कहूँ? अगर मुझे उस विधा को इस्तेमाल करना है, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है, तो मुझे वो डिसिप्लिन के हिसाब से अपने को तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं बिना तैयारी के उतरूंगा तो कहूँगा यार मैं बात नहीं कह पाया, वो क्या बताऊँ, मेरे को इतनी कैरेक्टर में कहना थी, वरना मैं ना बोलूँ क्या कर देता। पर ऐसा नहीं है, आप 160 में कहने की अगर मैं उसमें उतर रहा हूँ तो मुझे उतने में ही, मैंने बहुत लंबे कॉलम में लिखे, मैंने बहुत छोटे भी लिखे, मैंने बहुत छोटे भी लिखे जो 200 शब्दों के भी थे, 2000 शब्दों के भी हैं, 1000 के भी हैं, फिर उपन्यास भी लिखा, और छोटा उपन्यास भी लिखा, बड़ा भी लिखा, नाटक भी लिखा। हर विधा में जब मैं गया तो मैं इस तैयारी से गया कि हाँ इस विधा में मुझे ये सीमा है और मैं अपनी पूरी बात इस सीमा में कहूँगा। देखिए प्रतिदिन का कॉलम शरद जी ने लिखा
1: जी,
0: और वो मुश्किल से 300-400 शब्दों का, 500 मैक्सिमम कभी हुआ हो, पर उसमें इतनी बड़ी बातें लाइफ के बारे में कहीं कि वो पूरे देश में लोकप्रिय था। और कुछ बड़ी रचनाएं भी उन्होंने करी, बहुत लंबी रचनाएं भी लिखी, बहुत 10-10 पेज तक जाने वाली रचनाएं भी लिखी, पर मुझे पता है कि ये कहानी इसमें आ रही है, ये कहानी इसमें नहीं आएगी, तो मैं अपनी सीमा के अंदर बेस्ट इस्तेमाल करूं। तो ये मत कहिए कि सीमा होने के कारण खराब रचना हो गई, आपने आपको सीमा बताई गई थी, ऐसा नहीं कि आपसे छुड़ा लिया गया पर्चा बाद में लिखते लिखते कि अभी हो गया भैया, अब आपके 16 अब नहीं कर पाओगे। आपको पता है इस तैयारी के साथ उतरी, अगर आप उस पर उतरना है तो रचना का अच्छा होना तो किसी बहाने से खराब होना उसका नहीं जस्टिफाई होता। आप ये नहीं कह सकते कि ट्विटर में चूंकि करेक्टर हम कम इस्तेमाल करते इसलिए हम बड़ी बात नहीं कह पा रहे हैं, ये आप बहाने बना रहे हैं। आप बहाने मत बनाइए, एक अच्छी चीज़ आपको देना पड़ेगी किसी जगह हो, तभी सोशल मीडिया में आपका लेखन या आप पहुँचेंगे, नहीं तो नहीं पहुँचेंगे। आप भी एक उपस्थिति होंगे, एक भीड़ का हिस्सा होंगे, उस भीड़ में एक फेस अलग बनने के लिए आपको अपनी उसकी गुणवत्ता पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बिल्कुल विकल्प नहीं है कोई दूसरा।
1: ये जानना चाहेंगे आपसे कि एक व्यस्त चिकित्सक भी हैं आप, तो वहाँ से समय कैसे निकाल पाते हैं?
0: निकाला ना, देखिए हम भाग के कैसे आए।
1: मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नवोदित लेखक हैं वो कई बार ये बात कहते हैं कि समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए।
0: जीवन में आपको प्रायोरिटीज तय करना पड़ती, आपको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती जीवन में। क्या मेरा आज शाम को दोस्तों के साथ बैठ के गप मारना महत्वपूर्ण है, या उस समय में मुझे वो आर्टिकल जो है लेख या उपन्यास का वो हिस्सा जो मेरे मन में इस समय चल रहा है मुझे उसमें समय देना था, या आज शाम को चलो गप सड़ा के मैं निकल जाते हैं, चलो आज एक टीवी सीरियल बढ़िया आ रहा है, आज मुझे फलानी चीज़ देखनी है उसमें। तो आप पहले प्राथमिकताएं तय करिए। जैसे मेरे जीवन की प्राथमिकता है कि मुझे डॉक्टरी वाला काम करना है क्योंकि मुझे उसमें मज़ा भी आता है और मेरी वो रोजी रोटी है,
1: बिल्कुल
0: उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता, उसको जितना समय देना वो देना है। फिर मैं जिस परिवार से हूँ उस परिवार के लिए मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, वो मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कि मेरी होनी चाहिए वो। फिर मेरा लेखन आता है, इन तीन में अगर समय मेरा है फिर कुछ बचेगा तो मैं कुछ और करूँगा, मैं फिल्म देखाऊँगा, मैं कहीं गप मारूँगा, कहीं घूम आऊँगा, पर मैं इनके कॉस्ट पे कुछ भी नहीं करूँगा
1: जी।
0: तो मुझे इनके बीच में बैलेंस किया जा सकता है। जैसे डॉक्टरी में आप खपते जाओ बहुत ज़्यादा पैसे का, डॉक्टरी में बहुत पैसा है, आप जाइए तो आपको पैसा खींचता है, आपको लगता है और रुक जाओ तो और कुछ मिल जाएगा, शाम को भी हॉस्पिटल पहुँच जाओ सुबह की जगह तो मुझे और कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो आपको वो चीज़ों पर अपने आप पर अपने लालच पर, लालच ना भी कहूँ तो अपने एक तमन्ना होती है ना, चलो यार कर लेते हैं इसको, तो वो मैं नहीं करता। मैं डॉक्टरी में मैंने अपनी सीमा रखी, मैं इतने घंटे ये काम करूँगा, और मरीजों मैंने डॉक्टरों के बीच में देखा है कि वो ऐसे घबराए रहते हैं जैसे ये मरीज आज चला गया तो कल नहीं आएगा मेरे पास। तो मैं कहता हूँ अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे पास आएगा, अगर मैं उसे 10 दिन बाद कह रहा हूँ कह रहा अभी समय नहीं है तो मैं 10 दिन बाद देखूँगा तो 10 दिन बाद आएगा, क्योंकि उसे ज्ञान चतुर्थी को दिखाना है। तो मैंने हमेशा इनके कुछ समय बांध दिए, वो डिसिप्लिन चाहिए, वो आपका अनुशासन नहीं है तो आप बिखर जाएंगे। तो उस अनुशासन को साधना है तो बहुत कठिन, पर साधा जा सकता है, उसका उदाहरण मैं सामने हूँ आपके।
1: असंभव नहीं,
0: हाँ ये असंभव नहीं है, ये साधा जा सकता है। शुरू मुझे लगता था जब डॉक्टरी में बहुत व्यस्त था कि लेखन कैसे साधेगा, पर शायद मैं जब डॉक्टरी में सबसे ज़्यादा व्यस्त था 40 साल से लेके 40-45 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक मैं बहुत व्यस्त था डॉक्टरी में, तब मैंने सबसे ज़्यादा लिखा है, मेरे कॉलम्स चलते थे 7-8 जगह पर एक साथ, आप हर महीने में कम से कम 8 कॉलम लिखने पड़ते थे, अपना उपन्यास भी लिख रहा था, इतने के बीच में डॉक्टरी बहुत

0: कर रहा था और आप मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मुझे उनका भी समय देना है, तो इन्हें दूसरी जगह से बहुत काटा। मैं थोड़ा इसे आप कहते हैं कि आप एंटी सोशल हैं शायद, आप तो मिलते ही नहीं हैं, आप अवॉइड कर जाते हैं लोगों से। मुझे लगा था ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए, कोई बुरा मान जाएगा मान जाने दीजिए, कि मैं उसके घर नहीं पहुंचा फलाने फंक्शन में, मत पहुंचने दीजिए।
1: उस समय वो मेरा
0: वो
1: नहीं है।
0: वो फंक्शन मेरे बिना भी हो जाएगा, शादी थोड़ी और मेरी कि दूल्हा नहीं आया, किसी ने बुलाया शादी में हम नहीं पहुंच पाए, किसी ने बुलाया बर्थडे में हम नहीं पहुंच पाए, कि मेरे लिए प्रायोरिटी अब तय करना इन तीन के अलावा क्या टाइम बचा मेरे पास, तो ये सब तय करना पड़ता है। तो थोड़ा बदनाम हूँ इसलिए मैं कि शायद मैं उतने समय नहीं देता दोस्तों के साथ बैठने का, मुझे ही बहुत मज़ा आता है दोस्तों से गप मारने में, बहुत मज़ा आता है। पर फिर आप चीज़ें देखते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपसे छूट रही है, तो प्रायोरिटी तय करना पड़ती है, आप प्राथमिकताएँ तय करना पड़ती है, कौन सी चीज़ आपको महत्वपूर्ण है। तो लेखन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या आप में मुमुक्षा है कि नहीं। एक होता है इच्छा,
1: बिल्कुल,
0: एक मुमुक्षा मतलब वो इच्छा कि ना किया तो मर जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर वो मुमुक्षा है, मेरे पास लेखन आज मैं 67 साल का हो गया आपके सामने बैठा हूँ
1: जी,
0: और मेरे अंदर अभी इतनी मुमुक्षा है लिखने की कि मेरे को अभी भी दोपहर में इतने घंटे ये चीज़ मेरी रह गई, ये करना है, ये इसके लिए मैं सुबह से तड़प जाता हूँ कि यार हॉस्पिटल से बैठूँगा, आप बैठते ही से मुझे उपन्यास का थोड़ा हिस्सा रह गया, अब लिखना है। तो ये मुमुक्षा फिर आपको दूसरी चीज़ों से बचाए रहती। तो आप अगर लिख रहे हो तो उसकी वो जानलेवा इच्छा तैयार करिए अपने अंदर, तब आप कुछ कर पाएंगे।
1: आपके पात्रों की अगर हम बात करें जो आप उपन्यास में चुनते हैं, अपने कथानक में चुनते हैं, तो उनका वास्तविक जीवन से कितना लेना देना रहता है या फिर कल्पना के सहारे भी उनको चुनना पड़ता
0: नहीं,
1: है?
0: नहीं, कल्पना के सहारे कभी कोई चीज़ नहीं होती, पर कल्पना का हिस्सा पूरा होता है। हमने कहीं अभी एक जगह किसी ने ये प्रश्न एग्जैक्टली ऐसे कुछ आसपास पूछा था
1: जी,
0: कि वास्तविकता कितनी होती, कल्पना कितनी। तो आप जीवन, हम तो डॉक्टर हैं, हमें रोज़ नए पात्र मिलते हैं, हमारी सबसे बढ़िया बात है, हमारा धंधा इतना बढ़िया है कि हमें तो कहानियाँ मिलती ही हैं, हम पर मरीज विश्वास करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी बताते हैं जो दूसरों को शायद वो चीज़ नहीं होती। हमारे पास इतनी कहानियाँ रोज़ मिलती हैं, मैं रोज़ कहानियाँ 4-5 लेके निकलता हूँ हॉस्पिटल से जो किसी के पास नहीं होंगी, जो मुझे मिलती हैं, तो वो कहानियाँ हैं, वो पात्र हैं। पर अंततः आप उन पात्रों में जब खुद उतर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं परकाया, प्रवेश की कला,
1: बिल्कुल
0: एक अच्छे लेखक में होनी चाहिए। वो अगर एक सुअर की कहानी लिख रहा है तो उस सुअर की तरह पहले महसूस करे जो नाली में है, जिसके लिए नाली सर्वोत्तम जगह है, क्योंकि उसे उसी मज़ा आता है, तब फिर वो उसके आनंद और उसके कष्ट और उसकी चिंताओं पर लिख सकता है। मैंने चिड़ियों पे, गधे पर, शेर पर, ऐसे वाले व्यंग में बहुत लिखे भी जाते हैं, पर मैंने हमेशा वो महसूस करके लिखा है। और तो कई लोग कहते हैं आपने जो चूहिया पे लिखा तो वो कुछ अलग ही है जो दूसरे, क्यों मैंने उसे चूहिया जैसे महसूस किया है।
1: बिल्कुल,
0: कि चूहिया जब बिल में जाती होगी तो वहाँ का अंधेरा, वहाँ की वो सारी चीज़ें, तो आप उसमें वो इमेजिनेशन जोड़ते हो। तो अंततः जो पात्र बनता है वो नहीं रह जाता जिसके आधार पे आपने वो पात्र
1: शुरुआत की थी।
0: उपन्यास में आप सोचते हो, बहुत से पात्र आपके जाने पहचाने हो सकते हैं, कल के दिन में आकाशवाणी पे कोई लिखूं और कोई कहानी लिखूं और उसमें मैं आपका सोचूं तो मैं आप ही नहीं होंगे, वो कैरिकेचर, वो कहलाता है कैरिकेचर। अगर मैं आपको जोंका त्यों लिख दूँ, आपकी दाढ़ी, आपके बाल, आपके ये पहने थे कपड़े, तो मैंने कैरिकेचर लिख दिया आपका, नहीं वो कैरिकेचर नहीं, मैं आपको लेके आपके ह्यूमन में, आप जो मानव हैं उसमें फिर उतर जाऊं और फिर मैं उसको एक नया पात्र बना दूं। एक केमिकल रिएक्शन है ये, जिसमें दोनों तत्व फिर सेम नहीं रहते। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की, दोनों ने मिलकर पानी बना दिया, अब उसमें हाइड्रोजन मत खोजिए, उसमें ऑक्सीजन मत खोजिए, वो एक नई चीज़ बन गई। तो मेरे पात्र वो नई चीज़ हैं जो कल्पना में भी था, जो यथार्थ में भी था, दोनों को मिला के जो मैंने बनाया वो मेरा क्रिएशन है, वो मेरा क्रिएशन है। तो ना तो पूरा कल्पना है और ना ही वो पूरा यथार्थ है, मिला के आप एक बड़ी रोचक सी चीज़ बनाते हो जो पाठक को अपने साथ ले जा सके। उस चरित्र में पाठक एक अपनापा महसूस करे उसके साथ और उससे जुड़ जाए
1: जी,
0: उसकी समस्याओं से, उसके आनंद से, उसके कष्ट से, उसकी करुणा से, उसकी चिंताओं से जुड़ जाए पाठक, उसके लिए ये सब करना पड़ता है।
1: हम अगर जानना चाहें आपसे कि जो हमारे व्यंग्यकार हैं, नवोदित व्यंग्यकार हैं खासकर, वो अपने पैनेपन को अगर बढ़ाना चाहें तो दो चार कौन सी बातें आप उनसे कहना
0: चाहेंगे? मैं तीन चीज़ें कहना चाहूँगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। एक तो कि आपके पूर्वजों ने जो

0: लिखा, आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास पहले का लिखा बहुत सारा है, तो आपके पूर्वजों ने जो व्यंग में लिखा, परसाई ने, इवन भारतेंदु से शुरू करिए
1: जी,
0: भारतेंदु से शुरू करिए और नीचे आते जाइए, जो आपसे परवर्ती जो अच्छे लोग लिख गए हैं उसे पढ़िए
1: जी,
0: उसे पढ़िए, समझिए, गुनिए, अंदर उतारिए, समझने की कोशिश करिए कि परसाई अपनी मृत्यु के बाद भी आज क्यों इतने प्रासंगिक हैं, शरद जोशी आज क्यों प्रासंगिक है, रविन्द्रनाथ तैगी की रचनाएं पढ़ के आपको आज भी क्यों अच्छा लगता है, ये आप समझिए। तो अपने पढ़िए खूब, फिर जब आप अपनी विधा पढ़ लें तो ज़रूर से कविता भी पढ़िए, कहानी भी पढ़िए, तो एक तैयारी करिए। आप सीधे तो पीएचडी नहीं करते ना, एमए तक पहले आई से शुरू करके फिर आप ग्यारहवीं पढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, फिर एक दिन आप पीएचडी करते हैं। आप सीधे पीएचडी करना चाहते हैं, वो सारी आपकी समस्या है, आप सीधे उस जगह नहीं पहुंच सकते, तो आपके पास एक बहुत बड़ा, इन लोगों के पास तो परसाई के पास कोई बड़ा ये चीज़ नहीं थी, पहले थे कुछ लेखक, पर उन्होंने एक अपना नया रास्ता तब बना पाएंगे जब पुराने रास्ते से परिचित होंगे। तो आप पहला तो ये करिए, पढ़िए खूब, पढ़िए, गुनिए, समझिए, सीखिए। दूसरा, जल्दबाजी मत पढ़िए, जैसा अपन ने पहले बात कर चुके हैं, आप जल्दी कुछ नहीं मिलेगा आपको, और जो जल्दी मिलेगा वो या तो आपकी चालाकी से प्राप्त होगा या दूसरे ने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको देने की कोशिश की है, तो वो मत करिए। ना तो दूसरों से बेवकूफ़ बनिए, ना खुद को बेवकूफ़ बनाइए ऐसे काम करके। मैंने देखा है लोग बहुत कोशिशें करके कुछ पुरस्कार प्राप्त करते हैं, और उनका जब वक्तव्य देते हैं पुरस्कार के समय, वो शर्मिंदगी है तक ऐसा होता है कि हम तो, अरे हमें जने कहाँ से मिल गया, मुझे तो जब पता चला सुबह कि मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया तो मैं चकित रह गया, अरे कैसा, जिसके लिए तुम 3 महीने से चक्कर काट रहे थे बड़े बड़े लोगों के, साहब हमको ये दिलवा दीजिए, हमको ये दिलवा दीजिए, आज आप ऐसी बातें करते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को धोखा देने लगते हैं। आप जो खुद धोखे वाला वक्तव्य दे रहे हो उस पर खुद भरोसा करने लगते हैं, आप खत्म हो जाते हैं, तो ये मत करिए। लंबे, जैसा मैंने बताया, साहित्यिक लंबा खेल
1: है,
0: लंबा खेल है, और आप अच्छा लिखोगे, आप ईमानदारी लिखोगे, आप पहुंचोगे ही वहां तक। तो दूसरी विधाएं पढ़िए, ये करिए, और आप एक और परसाई बनने की कोशिश मत करिए, एक और ज्ञान चतुर्वेदी बनने की कोशिश मत करिए।
1: बिल्कुल,
0: आपका नाम जो भी हो, मनोज नाम है तो एक और मनोज बनने की कोशिश करिए। पर आप मनोज कितना अच्छा बन सकते थे वो अपने में खोजिए कि मैं कितना अच्छा लेखक बन सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ। अपनी जो संभावनाएं हैं, जो अपनी प्रतिभा है, उसको जितना ज़्यादा आप ऊंचाई तक पहुंचा सके वहां पहुंचाइए।
1: उर्दू के जो प्रसिद्ध शायर हैं निदा फाजली, वो कहकर गए थे कि जब आप 1000 पंक्तियां पढ़ लें तब एक पंक्ति
0: लिखें,
1: तो
0: तब लिखें।
1: ऐसा कोई मूल मंत्र क्या आपका भी था?
0: नहीं, हमारा मूल मंत्र देखिए कुछ भी नहीं, मूल मंत्र मेरा मूल मंत्र हमेशा ये रहा है 1000 पंक्ति, ऐसा कोई मैंने हिसाब गणित के हिसाब से कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो चीज़ें अच्छी मिली, आज की तारीख में भी बिल्कुल नए बच्चों ने जो उपन्यास लिखे हैं कुछ, उनको पढ़ के अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उनसे फ़ोन पर बात करके उन्हें, तो आप नया अभी भी पढ़ रहे, आप में ललक है नया जानने की, क्या नया हो रहा है, क्या लिख गए हैं, कोई पुरानी किताब, किसी दूसरी भाषा की किताब, पढ़ना बहुत चाहिए, पढ़ने से ही आप तैयार होते हो। डॉक्टरी में भी अभी तक पढ़ता हूँ मैं, डॉक्टर इसलिए अच्छा हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने डिग्री तो भाई साहब करीब करीब 35 साल पहले 78 में मैं स्पेशलिस्ट बन के निकला, बहुत पानी बह चुका तब से, दुनिया बदल गई, डॉक्टरी बदल गई, वो दवाइयाँ बदल गई, वो जाँचें जो मैंने पढ़ी नहीं, सीटी स्कैन हमारे समय नहीं था, हमने सीटी स्कैन के बारे में कुछ नहीं जाना। अगर आप नए से नहीं सीखते तो आप बहुत ख़राब डॉक्टर हो जाएंगे, आप क्वालिफाइड क्वैक होंगे, डिग्री शुदा झोला साहब डॉक्टर, क्योंकि मैं भूल चुका, जिस समय में रह रहा हूँ उसमें वो ज्ञान तो बचा ही नहीं जिसने मुझे डिग्री दी थी, उस ज्ञान में मैंने अगर कुछ और नहीं जोड़ा तो ऐसे ही लिखने का है। मैं अपना वो जो मैं 30 साल पहले लिख रहा था, अब मैं सोचूं कि यार नया कुछ नहीं करना है, यही चलता है, जैसे मंच की कविता वाले कहते हैं यही कविता चलती है, तो एक ही कविता पढ़ते रहते हैं वो जिंदगी भर, पैसे मिल जाते हैं पर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो नया प्रयोग करने, नई चीज़ें लिखने, ये सब सबको करना चाहिए। नए लेखकों को तो खास कर गांठ बांधना है कि हम भैया डरेंगे नहीं कोई नया प्रयोग करने से, पर प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: पर मुझे लगता है कि ये बात ऐसी ही कही जा सकती है, तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि अरे कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा। मैंने अभी पागलखाना उपन्यास लिखा था और वो मेरे सारे उपन्यासों से बिल्कुल अलग था, मुझे मालूम था कि ये उपन्यास जो मेरे पहले के खिलंदड़े भाषा में पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें धक्का पहुँचेगा, ये क्या हो गया, पर धीरे धीरे धीरे उसने वो स्थान बनाया और मुख्य धारा में तो वो इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है।

0: इन दोनों
1: जी
0: कि वो माना जाता है कि शायद मेरा वो सबसे अच्छा काम है, लोग ये कहते हैं कि ये दिस द बेस्ट वर्क जो आपने आज तक किया। वो लिखते समय मैं संशय में शुरू में रहा, फिर मैं तय कि नहीं ये विषय ऐसा ही लिखा जाएगा भाई साहब, इसको नहीं बदला जा सकता। तो आप 62-63 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था वो, तो 63 साल की उम्र में अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने डरता नहीं हूँ, जिसकी एक जिसने अपनी एक स्टैंडिंग बना ली, उसे लगता है यार ऐसा ना हो जाए, लोग कहेंगे अब तो चुक गए, जब आप वो रिस्क मैं ले सकता हूँ तो आप तो अभी शुरू हो रहे हो, आपको क्या रिस्क से डरना, करो, धीरे धीरे जगह बनेगी, करो, ईमानदारी से करो, जो प्रयास करो ईमानदारी से करो, और जीवन के प्रति ईमानदार रहो, अपने प्रति खासकर ईमानदार रहो। ये फंडामेंटल सत्य है किसी भी बड़े कलाकार के लिए। अपने लिए पहले ईमानदार नहीं होगे तो तुम दुनिया में कुछ नहीं प्राप्त कर पाओ। तो मैं उसी चिंता और उसी पूरे औजारों के साथ, उतने ही बेचैनी के साथ मैं आज भी लिखता हूँ।
1: बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी कि जो बेचैनी और जो जुनून आपके अंदर लेखने के लिए अभी भी है 40 साल के बाद भी, वो आपकी बातों को सुनकर एक नवोदित व्यंग्यकार, एक नवोदित लेखक के अंदर, हमारे श्रोताओं के अंदर पनपेगी, और वो भी आपके साथ साथ ऐसे प्रभावशाली उपन्यास, ऐसे लेखन समाज को दे पाएंगे।
0: बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे लोग आगे, आपसे बड़े लेखक हमेशा आएंगे, सब मानते हैं, और वो हमारी दुआ है कि हमसे अच्छा व्यंग लिखने वाले, हमसे अच्छे उपन्यासकार इस नई पीढ़ी में आएँ, और मुझको भी अब आनंद आए और आपको भी वो आनंद आए, यही दुआ है। आपके साथ बैठ के हम दोनों ये दुआ कर सकते हैं नई पीढ़ी के लिए,
1: आकाशवाणी आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी व्यंग्य की बारीकियां विषय पर वरिष्ठ उपन्यासकार, लेखक एवं पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से शुभम तिवारी की बातचीत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सिंगरौली में अब बच्चे सिर्फ किताबों में ही आसमान नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर उत्कृष्ट विद्यालय बैढ़न में 10 इंच का प्रोफेशनल टेलीस्कोप लगाया गया है। इस दूरबीन के जरिए छात्र अब चांद के गड्ढों, शनि ग्रह के छल्लों और गहरे आकाशीय पिंडों को करीब से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया। वहीं विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी सिंगरौली लगातार आगे बढ़ रहा है। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के निर्देशन में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तय लक्ष्य के मुकाबले बड़ी राजस्व वसूली की है। जिले ने करीब 4,833 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सामने 4,681 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। खनिज संपदा के साथ साथ वन संपदा को लेकर भी जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। वन मंडल जिला यूनियन सिंगरौली ने वर्ष 2026 के तेंदूपत्ता संग्रहण की सभी तैयारियां पूरी करनी हैं। इस साल जिले के लिए 1,77,000 से ज्यादा मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 400 रुपये प्रति सैकड़ा निर्धारित की गई है, जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। इधर जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सिंगरौली को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। वर्ष 2020 के आईपीएस अधिकारी शियास के एम ने जिले के एसपी का पद संभाल लिया है। इससे पहले वे बालाघाट के हॉक फोर्स में पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर समन्वय पर जोर दिया। नई पुलिस टीम के सक्रिय होते ही अपराधियों पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। बरगवां थाना पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने एक युवक के साथ मारपीट, नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पर्स लूट लिया था। वहीं प्रशासन अवैध खनन और भंडारण पर भी लगातार सख्ती बरत रहा है। खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम मझौना में कार्रवाई करते हुए निजी जमीन पर अवैध रूप से भंडारित करीब 174 घन मीटर लावारिस रेत जब्त की है। इधर सिंगरौली को रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। अब सिंगरौली सीधे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से रेल सेवा के जरिए जुड़ गया है। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने सिंगरौली रेलवे स्टेशन से साप्ताहिक धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औद्योगिक क्षेत्र में भी गतिविधियां लगातार जारी हैं। एनटीपीसी विंध्याचल ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। परियोजना और टाउनशिप के करीब 20 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान श्रमिक अधिकारों, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुए। अलग अलग स्थानों पर सेफ्टी टॉक और वेलनेस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें कर्मचारियों की सक्रिय

0: भागीदारी देखने को मिली। इसी क्रम में एनटीपीसी विंध्याचल में फायर सर्विस वीक भी मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक बॉम्बे डॉकयार्ड अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को याद करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी पहल की गई है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने वृहद वृक्षारोपण के लिए एमपीआरवीवीएन के साथ एमओयू किया है। एनसीएल ने वर्ष 2026-27 में प्रदेश के खदान क्षेत्रों की 208 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर करीब 4,70,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब बात जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने की। जिले में खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी है। ये शिविर 4 जून 2026 तक चलेंगे। जिले के अलग अलग विकासखंडों और जिला मुख्यालय में फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैढ़न के राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में फुटबॉल और क्रिकेट शिविर लगाए गए हैं, जबकि खो खो का प्रशिक्षण काइट राइज पब्लिक स्कूल और बास्केटबॉल का प्रशिक्षण कन्या महाविद्यालय बैढ़न में दिया जा रहा है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है। 71 वर्षीय लालमन को आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत आयुष्मान कार्ड मिला है, जिससे उन्हें अब हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं छोटे व्यापारी शिव नारायण को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण मिला है, जिससे वे अपना काम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह रीता कुशवाहा ने भी पीएम स्वनिधि की मदद से अपनी बंद दुकान को फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला किसान सत्य कुमारी जायसवाल के नेतृत्व में महिलाएं मिलेट उत्पादन और मार्केटिंग से आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सागर।

गीत सागर कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मियां हैं तो ऐसे में बिजली की बचत जो है वो हमें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब बिजली की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उससे जो है वो हमारा बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। तो क्या वो उपाय हैं जिनसे हम जो है वो अपने बिजली का बिल जो है वो कम कर सकते हैं और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, बात करते चलेंगे इस कार्यक्रम में। पहले ये प्यारा सा नगमा।

तो श्रोताओं, क्या वो उपाय हैं जिनको अपना कर हम जो है वो ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं? तो एलईडी बल्बों का हम प्रयोग कर सकते हैं। पुराने जो बल्ब हैं या जो बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं, ऐसे जो बल्ब हैं, लाइट्स हैं, उनकी जगह हम एलईडी लाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि फ्रिज है घर में, एसी, वॉशिंग मशीन, तो ये ख़रीदते वक्त जो है वो 5-स्टार रेटिंग वाले जो उपकरण हैं वो ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा जो है वो उसकी बचत होती है और ये ऊर्जा कुशल उपकरण होते हैं। साथ ही जो है, जैसे टीवी है, चार्जर है, वॉशिंग मशीन है, ये जो है इनको जब हम ऑफ कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं तो इनके स्विच से बंद ना करके, जो हमारा बिजली का स्विच है, जो बिजली उससे हमें बंद करना है, यानी इसको स्टैंड बाय पर छोड़ना नहीं है बल्कि स्विच से इसे बंद करना है। तो इस तरह से जो है वो हम छोटी छोटी आदतों को अपना कर हम बिजली की बचत कर सकते हैं और ऊर्जा को बचा सकते हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम जो हैं वो ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कमरे में हैं और कमरे से बाहर जा रहे हैं, तब हमें लाइट, पंखे वगैरह बंद कर देना है। मोबाइल चार्जर को उपयोग के बाद अनप्लग कर दें। स्टैंड बाय मोड में भी बिजली जो है वो बहुत खर्च होती है। तो इस तरह छोटे छोटे हम कदम उठा सकते हैं, जिससे हमारा बिजली का बिल है जो वो बहुत कम आ सकता है। ऐसे ही आप सोलर एनर्जी का भी अपने घर में जो है वो लगवा सकते हैं। घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जिससे बिजली का बिल जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से हम अपना बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं और ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं।

श्रोतो, गर्मियों के मौसम में जिस तरह से हमें बिजली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से पानी की भी ज़रूरत हमारे लिए बढ़ जाती है। तो इस समय हमें पानी को भी बचाकर चलना है। किस तरह से हम पानी बचा सकते हैं जिससे आने वाले वक्त में जो है वो पानी की कमी महसूस ना हो, उसकी किल्लत ना हो, तो कम प्रवाह वाले नल और शावर लगवाने चाहिए। इससे क्या होता है कि पानी के बहाव को कम कर सकते हैं और जिससे रोज़ाना जो है वो कई लीटर पानी की बचत हो सकती है। तो इस तरह से जो है हम पानी भी बचा सकते हैं।

श्रोताओ, आइए अब आपको एक आवश्यक सूचना दे दें। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों, पोषण प्रबंधन एवं सामायिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903, भोपाल का एसटीडी कोड 0755 है। सूचना समाप्त हुई। गीत सागर कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं।

तो श्रोताओ, आज की सागर कार्यक्रम में हमने बात की ऊर्जा की बचत की, पानी की बचत की। छोटी छोटी आदतों को अपनाकर न केवल बिजली और पानी की बचत की जा सकती है, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसके साथ ही आप गीत सागर कार्यक्रम से जा सकते हैं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित बृजनारायण का सरोद वादन। राग है कोमल ऋषभ आसवरी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आज आपने सुना पंडित ब्रजनारायण का सरोद वादन, राग था कोमल ऋषभ आसावरी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, चलकर, संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनू नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। कटनी जिले में सोने के एएस और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग

0: हॉस्पिटल घोषित किया है। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 के इंडेक्स स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, किशोरियां और धात्री माताओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां देने में 95% तक कवरेज हासिल की है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है और प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: भोर की अंगड़ाई से सांझ की दियाबाती तक या फिर सुबह की पहली किरण के बुलावे पर आसमान पर जागते दिन की अनछुई लाली हो, कुछ इस तरह आकाशवाणी के श्रोताओं के दिलों पर राज करती आई है हमारी आकाशवाणी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपने 90 सालों के गौरवशाली वर्षों को। हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार साहब। हेलो सर।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार। आज का क्या विषय है?
0: आज का हमारा विषय है आकाशवाणी, जो कि अपने गौरवशाली 90 वर्षों को बहुत ही खूबसूरती के साथ में आपके सहयोग से, आपके साथ के साथ मनाती आई है। और आज आकाशवाणी के लगभग पूरे देश के तमाम केंद्रों पर वॉकेथॉन या कि मैराथन का आयोजन किया गया है। इस विषय पर आपके क्या विचार हो सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: हमारे विचार ये हो सर कि ये आकाशवाणी है ना, हर इंसान को शांति पहुंचाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इससे क्या है, कोई ना भी हो, अपना रेडियो चल रहा है तो अपना दिल भरा भरा रहता है, कोई दुख नहीं, कोई वो नहीं।
0: जी
1: रेडियो सुनते रहते तो सारे गम दूर हो जाते हैं।
0: तो आकाशवाणी ने एक तरीके से आपके सुख दुख के पलों में अपना हाथ बटाया है।
1: जी
0: जब
1: सर।
0: आप अकेले हुए हैं, जब आप तनहा हुए हैं,
1: हाँ
0: उसने अपना कांधा आगे किया है, अपने हाथों को आगे बढ़ाया है
1: जी सर।
0: आपकी तन्हाई को दूर करने में,
1: हाँ
0: आपके एकाकीपन को बांटने में आकाशवाणी आपकी साथी बनी है।
1: जी सर।
0: जी चलिए, तो इसी खुशी के मौके पर एक
1: नमस्कार।
0: गीत आपके नाम करते हैं। आप इस गीत को सुनिए और खो जाइए आकाशवाणी के इन खूबसूरत पलों में।
1: जी
0: नमस्कार।
1: सर। नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: हाँ
1: सर,
0: जी नमस्कार जी।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी राजू जी, आगरा से
1: जी
0: आपने
1: सर,
0: फ़ोन लगाया है। क्या हाल चाल है इन दिनों आगरे के?
1: आगरा में हालचाल ठीक है। मौसम आजकल बहुत सुहाना हो रखा है। बारिश सुबह भी यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, और कहा जाए तो लगभग अप्रैल महीना पूरा ही बारिश और आंधी में गया। मई का महीना भी लगभग ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि
0: अच्छा
1: आज
0: अच्छा
1: 8 मई हो चुकी है, तब भी मौसम एकदम खुशगवार है।
0: अच्छा जी, तो मोहब्बत की नगरी में इन दिनों माहौल और फिज़ाएँ बहुत ही खुशनुमा हैं।
1: जी
0: हम
1: बिल्कुल।
0: आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है, और इस कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं कि रेडियो ने, आकाशवाणी ने आपके जीवन को कितना समृद्ध किया है। कौन सी ऐसी सीख है जो आपने रेडियो से सीखी, आकाशवाणी से सीखी है? कोई ऐसी
1: रेडियो
0: बात
1: से
0: या
1: सबसे बड़ी
0: याद?
1: चीज़ तो हमने ये सीखी कि हमें दूर दूर के श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिला है, क्योंकि हमारा एक ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र क्लब है, जो हमें जोड़ता भी है, रेडियो से भी जोड़ता है और श्रोताओं से भी जोड़ता है, क्योंकि हम कई सारे केंद्रों पे इन्वॉल्व रहते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन।

0: जो स्टेशन है आकाशवाणी के, और ये जो ब्रज रेडियो श्रोता मित्र क्लब है ये कई सारे केंद्रों से जुड़ा रहता है, और इसका यही काम है कि श्रोताओं को रेडियो से जोड़ना, और रेडियो का जो काम है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये रेडियो का सिद्धांत रहा है शुरू से आकाशवाणी का। तो रेडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, अच्छी अच्छी जानकारियां तो मिलती हैं और मनोरंजन भी होता है, साथ ही कई सारे ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं, और खास करके हम तो संगीत से जुड़े रहते हैं तो हमें संगीत के कार्यक्रम, चाहे वो सुगम संगीत हो, प्रेम संगीत हो, लोक संगीत हो, या फिर जो भी संगीत से जुड़े कार्यक्रम हैं, बहुत पसंद आते हैं हमें, और हम उन कार्यक्रमों को बड़े ही चाव से सुनते भी हैं सर।
1: आपकी बातों को अगर हम सार संक्षेप में कहें तो आकाशवाणी ने अपने लोकगीतों को, लोक रागों को, लोक व्यक्तित्वों को अपने इन कार्यक्रमों में जगह देकर हमारी संस्कृति को बचाने में अहम दो योगदान दिया है।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमारी जो पुरानी परंपरागत संस्कृति है उसको जीवंत रखने में आकाशवाणी की अहम भूमिका है, चाहे वो होली गीत हो, चाहे वो नवरात्रियों में माता रानी के गीत हो, चाहे दीपावली हो, यानी जितने भी हमारे, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, हर तरह के गीत, हर तरह के संगीत से, और हर तरह के जो योग्य कार्यक्रम होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है हमारी देशभक्ति के प्रति, हमारी परंपरागत पौराणिक संस्कृति के प्रति, वो सभी कार्यक्रम प्रसारित करके आकाशवाणी ने अपनी एक अहम भूमिका अदा की है।
1: चलिए, आपकी इसी बात को बढ़ाते हुए आगे हम एक गीत आपकी नज़र करते हैं। आपने हमें
0: धन्यवाद
1: फ़ोन
0: सर,
1: किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू
1: नमस्कार।
0: सर, नमस्कार।
2: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

0: हाँ जी नमस्कार। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, आप अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से। बस
0: अरुण साहब कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: जी
0: और आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आज हमारी बातों का जो विषय है वो है बात आपकी, गीत हमारे कार्यक्रम में, रेडियो ने आपके जीवन को किस तरह समृद्ध किया है, क्या दिया है रेडियो ने आपको, आकाशवाणी ने क्या दिया है आपके जीवन में, ऐसा कौन सा बदलाव, ऐसा कौन सा योगदान किया है जिसे आप रेखांकित करना चाहेंगे?
1: रेडियो में तो सब कुछ दिया है, ज्ञान वर्ग दिया है, सब कुछ दिया है रेडियो ने। तो जी, रेडियो तो जीवन साथी है,
0: अरे वाह।
1: उससे रेडियो तो सबसे जीवन साथी है, कम से कम 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। उससे सब कुछ ज्ञान भी मिलता है, उससे समाचार मिलने को मिलते हैं, खबरें मिलते हैं, और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, क्रिकेट सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, हर चीज मिलती है उससे ज्ञान मतलब।
0: हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 25 सालों में ऐसा कौन सा बदलाव ख़ास तौर पर आपको रेडियो पर सुनाई दिया जिसको आप अभी हमारे साथ में साझा ज़रूर करना चाहेंगे?
1: जी देखो, परिवर्तन तो बहुत हो गए हैं, लेकिन अब इतना ध्यान जानकारी ध्यान तो खैर नहीं है, लेकिन पहले लाइव चलता था, फौरन जो प्रोग्राम जी सुने, और ये अब रिकॉर्डिंग हो गई, होना चालू हो गया है अब।
0: चलिए, आपने एक बहुत बड़ी बात को पकड़ लिया है कि ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्डेड जा रहा है, इससे पहले ये लाइव जाया करता था।
1: जी
0: आपने लगातार इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति इसी तरह बनाई हुई हुई होगी। हम
1: जी
0: चाहते हैं कि आप इसी तरह आकाशवाणी से जुड़े रहिए। एक गीत अभी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: अंगत फरियाद दिला हमी को तहसीलदार के हम कहता से बोल रहे।
1: कौन बोल रहा है जी?
0: अंगत फरियाद
1: अंगद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जिला हमीरपुर तहसीलदार ग्राम कैथा से। ठीक
1: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
0: है, बैठे हैं।
1: अच्छा, आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है, और इस
0: हाँ
1: कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि
0: हाँ
1: आकाशवाणी ने आपके जीवन को किस तरह समृद्ध किया है, किस
0: हाँ
1: तरह आकाशवाणी ने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाकया आपके जीवन में जोड़ा है जो आप हमसे इस वक्त बताना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं के साथ में साझा करना चाहेंगे।
0: नहीं अभी नहीं।
1: अच्छा, रेडियो से जुड़ी हुई कोई बात अभी आपको फ़िलहाल याद नहीं आ रही है?
0: हाँ नहीं आ रही है।
1: कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते आए हैं हमारे?
0: हम कुल कार्यक्रम सुनते हैं। हाँ
1: सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
0: सभी खुल सुनते हैं हम। हमारे पास रेडियो भी है। हाँ
1: अच्छा जी, तो रेडियो पर कौन सा स्टेशन आप सुनते हैं, कौन सा केंद्र सुनते हैं?
0: भोपाल।
1: भोपाल।

0: सुनते हैं
1: हाँ
0: तो भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले किसी खास कार्यक्रम को आप याद करना चाहेंगे?
1: कैसे हो गए
2: भोपाल श्री काम की याद करना चाहती हूँ वो बात। हेलो मैम।
0: हाँ जी, नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्कार, मैं धीरज सिंह परिहार बोल रहा हूँ, ग्राम कहता तहसीलदार जिला हमीरपुर से।
0: तो बताइए, आज ये कौन सा ऐसा वाकया है, कौन सी ऐसी याद है जो आप रेडियो के साथ में साझा करना चाहेंगे आकाशवाणी के
2: रेडियो
0: जुड़ी हुई? कोई ऐसी बात जिसको आकाशवाणी से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जिसने आपके जीवन को एक नया मोड़ दिया हो, जीवन को समृद्ध भी बनाया हो?
2: आकाशवाणी भोपाल तो बहुत अच्छे कार्यक्रम भी पेश करती है। और
0: चलिए, तो आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे, आइए हम और आप मिलकर ये गीत सुनते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी। जी फोन करें कि सुने का जी के लिए रिकॉर्डिंग के
0: नहीं,
1: लिए हमने फोन लगाया है।
0: आज जो है वो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं 90 सालों तक का जो एक सफ़र किया है, 90 वर्षों की एक जो यात्रा है आकाशवाणी की। इस यात्रा में आप जैसे श्रोता हमारे सहभागी बने हैं, हमारे साथी बने हैं, तो आकाशवाणी ने आपको क्या दिया है इन 90 वर्षों में, या जब से आपने आकाशवाणी सुनना शुरू किया है तब से क्या परिवर्तन आया है आपके जीवन में, क्या ऐसा
1: बहुत
0: योगदान रहा है
1: परिवर्तन आया
0: रेडियो
1: है
0: का?
1: सर। मैं
0: जी
1: हरिशंकर खेमरिया कोलारा जिला शिवपुरी से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी
1: बहुत परिवर्तन आया है और रेडियो सुनने से मेरे सारे सुनता रहता हूँ। और मैं कल अभी बहुत दिन से जो फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लग नहीं रहा था फोन।
0: जुड़ा है, फ़ोन कॉल शामिल किया जा रहा है। तो बताइए ना, रेडियो से क्या ऐसा आपको सीखने को मिला है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। सारी गलत बातें छोड़ के और अच्छे विचार, अच्छे आचार, अच्छे गीत सुने, अच्छा मन रहे, अच्छा मनोरंजन हो और परिवार में सुख शांति रहे।
0: तो ये रेडियो ने आपको ये विचार दिए हैं, ये रेडियो की ये आपको देन है कि आप अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा
1: हाँ
0: बोलना
1: अच्छा
0: चाहते
1: सुनना
0: हैं।
1: चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं।
0: वाह, चलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं हम, कि हमारे विचारों को अगर हमने सही दिशा में मोड़ लिया तो हमारे काम सही दिशा में होने लगेंगे, और जब हम अपने अच्छे कामों को करेंगे तो हमारे जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही, सकारात्मक परिवर्तन आएगा ही, हमसे जुड़े लोग
1: और
0: भी इस
1: अच्छे
0: बात से
1: कार्य करने
0: लाभान्वित
1: के साथ
0: होंगे।
1: साथ हम भगवान की भक्ति भी करना चाहते हैं सर।
0: वाह वाह वाह वाह, चलिए इसी बात को हम यहीं पर विराम देंगे, एक गीत आपको सुनवाना चाहेंगे। नमस्कार।
1: हमारी पसंद का गीत नहीं सुनवाएंगे सर?
0: हाँ, ये आपकी पसंद की गीत तो हम अलग अलग कार्यक्रमों में सुनवाते आए हैं, आज जो है बात आपकी रहेगी, गीत हमारे रहेंगे।
1: अच्छा अच्छा ठीक है सर जी,
0: नमस्कार।
1: ठीक।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: सर जी, मेरा प्यार भरा सप्रेम नमस्कार। मैं नवागढ़ कटे जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: नारायण प्रसाद जी,
1: जी सर,
0: बेमेतरा
1: जी सर,
0: छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया है।
1: जी सर।
0: रेडियो से आपका नाता कब से जुड़ा है?
1: सर
0: क्योंकि
1: जी, जब
0: आज
1: से मैं, हाँ सर जी,
0: जी आज बात आपकी गीत हमारे में हम इसी विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं।
1: जी सर,
0: हम
1: जी सर,
0: आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेडियो से कब से आपका जुड़ाव हुआ है, कब से आपने रेडियो आकाशवाणी को सुनना शुरू किया है।
1: हाँ सर जी, जब से मैं विद्यार्थी जीवन में था सर जी, तभी से मैं रेडियो सुनना चालू किया हूँ। और सन 82 में सर जी, मैं हायर सेकेंडरी किया हूँ और उसके बाद तो रेडियो से जुड़ा ही रहा हूँ पहले से। और अभी तक मुझे जो रेडियो का सहयोग है, या कहिए तो इनसे जो हमारे लिए देन है, वो बहुत बड़ी देन है सर जी। हमने चलना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा, और जो भी हमारे जीवन में दिनचर्या की बातें हैं, वो सब हमने रेडियो से ही सीखे हैं सर जी। रेडियो की जो प्रस्तुति है, हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है सर जी।
0: बहुत बड़ी बात आपने कही है कि रेडियो ने आपके जीवन को इस तरह संवारा।

0: है सजाया है कि
1: जी सर,
0: आपने
1: जी
0: अपनी
1: सर,
0: प्रत्येक गतिविधि को रेडियो के माध्यम से सीखा है, रेडियो के साथ जोड़ के रखा है।
1: जी सर,
0: तो 90 वर्षों का जो एक लंबा सफ़र आकाशवाणी ने तय किया है, वह आप
1: जी सर,
0: जैसे श्रोताओं के इन्हीं कदमों के साथ में, इन्हीं कदमों के साथ में साझा किया है। आप बराबर के साझेदार हैं आकाशवाणी के इन गौरवशाली वर्षों के।
1: जी सर, जी
0: आइए एक
1: सर,
0: गीत आपके नाम करते हैं।
1: जी
0: आप इसी
1: सर,
0: तरह आकाशवाणी से जुड़े रहिए। आपको करते हैं हम नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी।
2: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
3: कैन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
3: क्या?
2: मैंने पूछा, बागों में बाहर है? गर्मियों के निखार है?
3: हाँ है।
2: तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: ना ना।

0: आज सोमवार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है।
2: हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी भोपाल।
2: हाँ जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
3: फोन करो, गीत सुनो।
2: आज बात आपकी गीत हमारे,
3: मैं बुरहानपुर से बोल रहा हूँ
2: जी,
3: बुरहानपुर एमपी से।
2: हाँ जी, हाँ जी,
3: मोहम्मद हुसैन अंसारी।
2: हाँ जी अंसारी साहब, आज हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम

0: में आकाशवाणी के जो इन 90 वर्षों की यात्रा के आप और हम साझेदार रहे हैं, साझी रहे हैं, इस यात्रा में आप आकाशवाणी के किस योगदान को हमारे बीच में बताना चाहेंगे, रेखांकित करना चाहेंगे?
1: अरे ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा,
1: टीवी से बेहतर आकाशवाणी रेडियो रहते हैं। और जब भोपाल आकाशवाणी भोपाल से शुरू हुआ तो बहुत खुशी हुई। चलो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने राज्य में भी शुरू हो चुका है। बहुत सी मालूमात हासिल हुई है और बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी,
1: 90 वर्ष पूरे होने पर तो और भी खुशी हुई है।
0: आप जैसे श्रोताओं की इन्हीं शुभकामनाओं दुआओं के बदौलत ही हमने ये बहुत लंबा लगभग 2 सदियों का सफ़र तय किया है। आप और ऐसी कोई ख़ास बात या कोई वाकया हमारे साथ में ज़रूर बताना चाहें तो हम उस बात को ज़रूर हमारे दूसरे श्रोताओं तक पहुँचाएँगे।
1: बस बीच बीच में हम बीमार पड़ गए, अटैक आ गया था, तो कुछ अपने जो 1 महीने तक सुने नहीं हमने, तकलीफ हुआ हमको। कुछ मालूम आते हासिल हो जाती है। जैसे सेहत की तरह, सेहत के बारे में बताते हैं, जिस्मानी तकलीफों के बारे में बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं। बहुत से प्रोग्राम है अपने आकाशवाणी भोपाल से जो निकल गए दो महीने में, तो हमको उसका बहुत अफसोस है।
0: कहते हैं कि दुनिया बनाई है, इन दुनियाओं को आप हमारे साथ में साझा कर रहे हैं, आपकी इन्हीं बातों को हम इस तरह सजाते हुए हमारे इन कार्यक्रमों को पेश करते आए हैं। आइए एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे, इसी तरह आकाशवाणी और हमारा और आपका साथ बना रहे।
1: मिलाप रहे, मिलता रहेंगे।
0: नमस्कार जी।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी भोपाल लगाया है
0: हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं
1: जी सर।
0: और हम इस वक्त

0: रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम के लिए।
1: जी सर, गाना सुनना।
0: आज चूंकि विषय हमारा है कि आकाशवाणी के जो 90 वर्षों की यात्रा रही है, इस यात्रा में आपने आकाशवाणी से क्या सीखा, आकाशवाणी का क्या योगदान रहा आपके जीवन में, कौन सी ऐसी बात है जो आकाशवाणी से जुड़ी हुई है और आप उस बात को हमारे दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: आकाशवाणी से सब सीखा है, खेती किसानी का सीखा है और हर चीज आता है, और गाना भी सुनते हैं। टेलर है हम,
0: अच्छा जी,
1: रेडियो बगल में चलता रहता है।
0: अच्छा, काम के साथ में आपका रेडियो हमसफर बना हुआ है, ये कह सकते हैं।
1: रेडियो से हर चीज मिलती है सर, हर काम सीखते हैं। अच्छी बातें कहने से अच्छा दिमाग होता है, सुनने से। खेती किसानी के आते हैं, ये बीमारी है, डॉक्टर लोग आते हैं, इनसे हर शिक्षा मिलती है कैसी बीमारी को कमाना चाहिए।
0: इन सब चीज़ों से, इन प्रसारणों को सुनते हुए आपके दिन में, आपके काम में कोई व्यवधान तो नहीं होता है?
1: नहीं होता है सर, रेडियो बजता है उसमें क्या व्यवधान होता है, सुनते रहते, मशीन चलाते रहते।
0: अरे वाह, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर सीखने को मिलती होंगी जिनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर हुआ होगा।
1: हाँ, लाभ हुआ है सर, लाभ हुआ है।
0: जी, तो ऐसा कोई पल जो आप हमको ज़रूर बताना चाहेंगे?
1: आकाशवाणी से सबसे ज्यादा सीखा है खेती किसानी का।
0: अच्छा,
1: हाँ, वेद वैज्ञानिक लोग जो बातें बताते हैं वेद में, उन्हीं को उसी से दवा लेकर बाजार से दवाई का छिड़काव है चीज, खेती का जो उपचार करने बीज का वो भी सीखता रहता हूँ, उसी तरीका से खेती कर।
0: आपकी खेती है?
1: जी
0: अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो कार्यक्रम आते हैं, जो किसान भाइयों के लिए रहते हैं, जिनके माध्यम से हम तरह तरह के मौसम से जुड़ी हुई सलाहें
1: हाँ,
0: हमारे
1: मौसम
0: श्रोताओं तक
1: के
0: पहुंचाते हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे अलग अलग मुख्तलिफ कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति के माध्यम से जो जानकारियाँ देते हैं, इन जानकारियों से आप जैसे किसानों को, आप जैसे अन्नदाताओं को लाभ होता है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण होता है। हम अलग अलग कार्यक्रमों को लेके आते हैं, अलग अलग श्रोता वर्गों के लिए कार्यक्रम लेके आते हैं, तो जिन कार्यक्रमों को हम किसान भाइयों के लिए पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उन कार्यक्रमों से अगर हमारे किसान भाई लाभान्वित होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। आइए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे
1: जी
0: और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: और इसी के साथ ख़त्म होता है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोचिशे बोईशाक के अवसर पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यता गदात्मा के शाश्वत आवास के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा।

0: आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं आप सभी के पत्रों के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप सभी की फरमाइश से। लिखने वाले हैं नहीर नगर महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस, शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि। उपाध्याय नगर देवा से मुरलीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। देवा से ही राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश, हरिराम माली, विष्णु, कपिल और निरंजन। उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद, सालग्राम, दशरथ। और देवा से ही जमील खान, इमरान और फुरकान। आप सभी ने सुनना चाहा है एक दूजे के लिए फिल्म का नगमा।

रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जेएस नायक, शोभा और समस्त इनके परिवार, इन्होंने ये हमें ख़त लिखा बठिंडा से। सिंहपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, आप सभी ने सुनना चाहा है हमराज फिल्म का नगमा अलका याग्निक की आवाज़ में।

मैं हूँ ना फिल्म का गीत सुनने की ख्वाहिशमंद है महाराष्ट्र बीट शहर से प्रकाश बागरिया प्रयाग प्रदीप और केशव पटेल पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जारूजिया गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और सुनवाते हैं मैं हूँ ना फिल्म का ये नगमा।

औरंगाबाद से राजेश साबले, शीतल, राजदीप, राशि और इनके परिवार के सभी सदस्य। सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, मोहम्मद शादाब खत्री और रमेश गौंड। आप सभी ने सुनना चाहा है टाइगर जिंदा है फिल्म का नगमा, तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

तो श्रोताओ, ये था आज का हमारा आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आप इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। ये आकाशवाणी का आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जादूगर को सलाम धारावाहिक का 10वां भाग।
1: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। धारावाहिक की 10वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की ही एक कहानी, गुप्त धन का नाट्य रूपांतरण। बाबू हरिदास का ईंटों का भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और भट्टों से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों में सजाते। एक आदमी भट्टे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होतीं उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिला करतीं। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से दबे हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य होता था। सबसे करुण दशा एक छोटे से लड़के की थी, जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दूनी ईंटें उठाता और सारे दिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता था। लेकिन मगन सिंह को अपने काम से ही काम था। उसमें लड़कपन की चंचलता नहीं थी, ना शरारत और ना ही होशियारी। यहां तक कि उसके होठों पर कभी हंसी भी नहीं आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर बहुत दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दे। कभी कभी उसे वो कुछ खाने को भी दे देते थे। एक दिन उन्होंने मगन सिंह को अपने पास बुलाकर बैठाया और उसका समाचार पूछने लगे।
1: मगन सिंह बेटा, जरा अपने और अपने परिवार के बारे में तो कुछ बताओ।
2: जी बाबूजी, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ।
1: अच्छा।
2: वही हमारा पुराना सा घर है, जिसमें मेरी बूढ़ी माँ के सिवा और कोई नहीं है। माता एक पुराने रोग से पीड़ित हैं, इसलिए घर का सारा काम मेरे जिम्मे में है। बाबूजी, शाम को काम से वापस लौटकर मैं खुद ही रोटियां बनाता हूँ, तब जाकर हम माँ बेटे को खाना नसीब होता है। हम ठाकुर लोग हैं और किसी समय हमारा खानदान धन संपन्न था और शकर का कारखाना चलता था, कुछ जमीन भी थी, पर आजकल रोटियों के लाले हैं।
1: गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते?
2: वाह, उनका वश चले तो मुझे मार ही डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं।
1: तुम्हारा तो पुराना घर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुम्हें कुछ बताया नहीं?
2: नहीं बाबूजी, कुछ नहीं बताया। अगर रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती।
1: मगन, आज से तुम्हारे बुरे दिन दूर हुए, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज से तुम मजदूर नहीं हो, मेरे खास नौकरों में से हो। आज से कोड़ियां बांटने का काम तुम करोगे।
2: जी बाबूजी, आपको पाकर मेरा जीवन सफल हो गया।
1: मुंशी जी।
3: आया हुजूर।
1: मुंशी जी, आज से ये कौड़ियां बांटने का काम करेगा, इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखा दीजिए।

0: 妈，妈。
1: 啊？हाँ बेटा, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है।
2: हाँ माँ, आज से हमारे बुरे दिन दूर हुए। माँ, जहाँ मैं रोजाना काम पर जाता हूँ वही बाबूजी के यहाँ, हाँ वहाँ आज बाबूजी ने मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने बहुत सारी बातें की और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा।
1: अच्छा, मेरे बारे में पूछा?
2: उन्हें मुझे काम में तरक्की भी दे दी है। अब मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मैं उनका खास नौकर बन गया हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने की बात भी की है। माँ, और फिर तुम भी जल्दी अच्छी हो जाओगी माँ।
1: अच्छा मेरे लाल, जीते रहो मेरे बेटे, जुग जुग जियो मेरे बच्चे। हे भगवान, तूने मेरे अंधियारे घर में रोशनी की एक नई किरण भेजी है, जिन्होंने मेरे लाल को ये खुशी दी है। तुम उनका भी घर खुशियों से भर देना, हे भगवान, खुशियों से भर देना। बेटा मगन, वहाँ पर मन लगाकर काम करना, अच्छा? उन्हें किसी भी शिकायत का मौका मत देना।
2: हाँ माँ, ऐसा ही होगा।
3: अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यनिष्ठ और चतुर लड़का था। मगन सिंह काम पर हमेशा समय से पहुंचता और कभी भी छुट्टी नहीं करता था। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी वो कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, भट्टे में पानी भरा हुआ था, काम धंधा बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से काम पर नहीं पहुंचा था। हरिदास को चिंता हुई, कई आदमियों से पूछताछ भी की पर कुछ पता नहीं चला। 4th दिन पूछते पूछते मगन सिंह के वो घर जा पहुंचे। घर क्या था, घर तो जैसे खंडहर बन चुका था, लेकिन परिवार की पुरानी संपन्नता का एहसास करवाता था।
4: क्या बात है, 3 दिन हो गए, मगन सिंह का कुछ पता ही नहीं। कहीं बीमार तो नहीं हो गया या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? मगन सिंह, बेटा मगन सिंह, अरे कोई घर में है क्या?
2: अरे बाबूजी, आप आइए, बाबूजी आइए आइए।
4: अरे मगन सिंह, कई दिन से आया क्यों नहीं, माताजी का क्या हाल है?
5: बाबूजी, अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं नहीं बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कहा पर मैं संकोच के मारे आपके पास नहीं आ पाया। अब आप सौभाग्य से हमारे घर आ गए हैं तो जरा चलकर उन्हें भी देख लीजिए, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
3: सारे घर में दरिद्रता का वास था, केवल 2 कोठरियां गुजर करने लायक थीं। मगन सिंह ने 1 कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बुलाया। हरिदास भीतर गए तो देखा कि लकड़ी के तख्त पर पड़ी एक वृद्धा कराह रही है।
1: बड़ी दया की आपने मालिक, आपके दर्शनों की अभिलाषा थी मुझे। मेरे अनाथ बच्चे के अब आप ही नाथ हैं, जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, बस वही निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। एक समय हुआ करता था जब हमारे घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता था, मगर बुरे दिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने उसी दिन के लिए कुछ खजाना जमीन में छुपा दिया था। मालिक उसके कागज पत्र बड़े यत्न से संभाल कर रखे थे मैंने, पर बहुत दिनों से

0: उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मालिक। नहीं तो आज हमारी इतनी बुरी दशा नहीं होती मालिक। आज 3 दिन हुए मुझे वो कागज पत्र अचानक खुद ही रद्दी के कागजों में मिल गए। बस तब से उन्हें छिपा कर रख लिया है। उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से खजाने के ठिकाने का भी पता चलेगा। मालिक अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा मालिक। बस यही सब कहने को आपको बार बार बुलाती रही। आपके सिवा मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। संसार से विश्वास उठ गया है मालिक। किसी की नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
1: हरिदास ने उस कागज का जिक्र किसी से नहीं किया। हरिदास की नियत बिगड़ गई। कागज को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 कदम दूर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानों कान खबर ना हो। काम मुश्किल था, नाम पर धब्बा लगने की अधिक आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की तरह पाला, उसी के साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, परंतु अंत में लालच ने विवेक को हरा दिया।
2: मैंने कभी धन का परित्याग नहीं किया और न करूंगा। क्या कोई प्राणी ऐसा भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं, देवता है। मैं तो सिर्फ एक मनुष्य हूं, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने की कोई इच्छा नहीं है।
1: मन को समझाना बच्चे को जैसे फुसलाना है। हरिदास शाम को सैर करने के लिए घर से निकल जाता। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर जा बैठता और एक कुदाली से उसे खोदता रहता। चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदते खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय ना हुई थी। हरिदास एक विचारशील पुरुष थे। आत्मा बार बार उन्हें धिक्कारती, निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर कभी नहीं जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता और इसी तरह दूसरा महीना भी बीत गया।
3: आज चबूतरा खोद डालूंगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, पर कोई चिंता की बात नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हो जाएगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना न मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा है, और धोखे के सिवाय कुछ नहीं। कहीं सचमुच तहखाना न मिला तो मुफ्त में ही उल्लू बनूंगा। पर लेकिन नहीं, कुदाली खट खट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चमक है, तहखाना मिल गया, तहखाना मिल गया। ओह, ये सिर में दर्द कैसा है? शायद थकान के कारण होगा। नहीं, ये बीती रात नींद पूरा न होने से है शायद।
1: आहा। ये दर्द और थक

0: कान नींद से ना गई। रात को ही हरिदास को जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे, पर किसी दवा से भी फायदा नहीं हुआ।
1: कहीं ये मेरे लालच का दंड तो नहीं है? जी में ऐसा आता है कि मगन सिंह का कागज दे दूं और माफी मांग लूं, पर भेद खुल गया तो नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। अरे
0: और इस प्रकार हरिदास गुजर गए। हरिदास की मृत्यु के बाद वो कागज उनके बेटे प्रभु दास के हाथ लगा।
2: ये कागज मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। पिताजी कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर संदेह किया ही नहीं जा सकता। जब उन्होंने इस काम को गलत नहीं समझा तो मैं ही ऐसा क्यों सोचूं? कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख का जीवन बीते।
0: इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही प्रभुदास घर से बाहर निकला। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं और वही तेज कुदाली थी। ऐसा क्या होता मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही हो। तहखाना संगीन था, पुराने जमाने का मसाला था। कुल्हाड़ी लौट लौट आती थी लेकिन चट्टान टस से मस ना हुई। किसी से सहायता मिलने की सूरत ही नहीं थी। सारा काम स्वयं ही करना था। समय बीतता रहा, यहां तक कि फिर वही अमावस्या की काली रात आ गई। प्रभुदास को जोर लगाते लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य की रेखाओं की तरह अटल थीं।
2: आज इस समस्या का हल करना आवश्यक है। मेरे मन की लालसा मन ही में न रह जाए। क्या करूं, बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। हाँ, क्यों ना बारूद से उड़ा डालूं। कल पर काम छोड़ने का अब तो कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, बाजार जाकर अभी बारूद लाना होगा। अरे, सब दुकानें बंद हो चुकी, रात भी काफी हो चुकी है। हाँ, वो आतिशबाजी की दुकान अभी खुली है। हाँ, शायद बारूद वहां मिल जाए, उसी से जाकर पूछता हूँ।
3: बारूद इस समय नहीं मिल सकता भाई, सरकारी हुकुम नहीं है। तुम कौन हो जी?
2: अरे, तुम्हें इससे क्या मतलब है?
3: लेकिन इस समय बारूद लेकर क्या करोगे भैया? कोई वारदात हो जाए तो? ना भैया ना, मैं मुफ्त में बंधा बंधा फिरूंगा, तुम्हें कौन पूछेगा?
2: अब तो हो जाएगा ना, क्यों?
3: ठीक है भैया, ले जाओ, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कह देता हूं। हाँ,
2: आखिरकार खजाना मिल ही गया। इसमें तो बहुत वजन है, क्या मैं इसे उठा पाऊंगा? लगता है 10 से 12 हजार मोहरे तो होंगे। कोशिश करता हूं। सच में जीवन बदल जाएगा, सब मेरे वश में होगा, फिर जो चाहे मैं कर सकूंगा। लेकिन कहां छुपाऊं ये खजाना? हाँ, ये जगह सुरक्षित है। अपने शयन

0: कक्ष में अपनी आंखों के सामने रखता हूं। यही ठीक रहेगा। चलो भैया, ये भी हो गया, कुछ देर अब आराम करूं। ये क्या मेरे दिल में बेचैनी सी कैसी हो रही है? ये कैसा भीषण दर्द हो रहा है? अरे ऐसा तो पहले कभी महसूस ही नहीं किया। अरे ये तो मेरे दोनों कंधे भी जकड़े जाते हैं, अब सांसें भी रुकी जाती हैं। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे तो हाथ पैर बोझिल हो चले। क्या ये सब थकान की वजह से? दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरी सांसें बंद हो ही जाती हैं। माँ, अरे कोई है? माँ,
1: प्रभु प्रभुदास बेटा, क्या हो गया?
0: माँ, मेरा सिर दर्द से फटा जाता है, सांसें रुकी जा रही है। पता नहीं अचानक क्या हुआ माँ।
1: अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मीना, ओ मीना, ठहरो, मैं भी वैद्य जी को बुलाती हूँ।
0: हाँ माँ।
2: सारी रात मीना और माँ प्रभुदास के सिरहाने बैठी रहीं। वैद्य जी उपचार करते रहे, परंतु सब बेकार। बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था, और इसी में सारी रात निकल गई।
3: भट्ठे पर चलिएगा हुजूर, गाड़ी तैयार है।
0: नहीं, मैं आज नहीं चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है। मगन सिंह, एक काम करो, तुम भी मत जाओ आज।
3: सरकार, डॉक्टर साहब को बुला लाता हूं, आप आराम कीजिए।
0: कोई लाभ नहीं मगन सिंह, कुछ नहीं हो सकता।
2: सवेरे के 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा आंखों के सामने तैर गई। ऐसा जान पड़ता था मानो वही शोक घटना उन्हीं आंखों के सामने दोबारा घटित होने जा रही हो। मां देवताओं की मनोतियां मना रही थी, और यही हाल प्रभुदास की धर्मपत्नी मीना का था। परंतु प्रभुदास की आंखें उसी संदूक की ओर लगी हुई थीं।
4: भगवान, मेरे बेटे के जीवन की रक्षा करो, इसे क्या होगा? हे भगवान, हे प्रभु, मेरी सुहाग की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए।
5: हाँ भैया, पिता और पुत्र दोनों ही भले लोग थे।
6: हाँ भैया, सही कहते हो, पर एक बात समझ में नहीं आती, जैसा बाबू हरिदास के साथ हुआ, ठीक वैसा का वैसा प्रभुदास के साथ हो रहा है।
7: हाँ भैया, ये कैसी दैवी विपत्ति इनके घर पर आ गई।
8: लाला जी, दोनों बाप बेटे भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, ईश्वर ही अब इस घर का मालिक है।
2: प्रभुदास की मृतप्राय आंखों में आंसू थे, पर आंखें अभी भी निराशापूर्ण भाव से संदूक पर ही टिकी थीं। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो चुके थे, मुख निस्तेज हो चुका था, हृदय गति बंद हो चली थी, सारा शरीर प्राणहीन हो गया था। लेकिन आखिर

0: थीं जो अभी भी संदूक से नहीं हटती थीं। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण और सबसे भयंकर दृश्य है। मगन सिंह के लिए माता की मृत्यु के उपरांत ये इतने कम समय में तीसरा अवसर था।
1: मालिक, मालिक, ये आपको क्या हो गया मेरे अन्नदाता? मालिक,
2: मगन सिंह की ओर देखता हूं तो सारे शरीर में मानो जीवन का संचार हो जाता है, और संदूक की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। मगन सिंह, मगन सिंह, इधर आओ
1: मालिक,
2: इधर
1: मालिक।
2: ये संदूक तुम्हारे पुरखों का खजाना है, तुम्हारी अमानत है। हाँ, मगन सिंह, ये तुम्हारी अमानत है। मुझे और पिताजी को क्षमा कर देना, पिताजी को और मुझे क्षमा कर देना, चाहता हूँ।
1: मालिक, मालिक,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 10वीं कड़ी, गुप्त धन। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय, साक्षी राय, कनिका शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, मनहा प्रत्यक्षा, माधवा अनंत, हीरेंद्र झा और विकास बाबू शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोचिशे बोशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवास के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो चीतों को खुले जंगल में रिलीज

0: करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कूनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। यह दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

जिंदगी में आए इम्तिहानों से घबराइए नहीं, बल्कि शुक्रिया कहिए उस परमात्मा को जिसने आपको इम्तिहानों के काबिल समझा है। इस सुविचार के साथ हाजिर हूं मैं कल्पना मिश्रा, आपके पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा के साथ। नमस्कार बहनों, आज हम सरकार की एक और योजना पर बातचीत साझा करेंगे जो कि महिलाओं के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है नंदिनी सहकार योजना। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप शुरू की गई थी। ये योजना महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहायता की एक और पहल है। यह महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इसमें महिला उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण और अन्य योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी और ब्याज अनुदान जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को एकीकृत किया गया है। बहनों, इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC के तहत महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का पहला उद्देश्य वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करके सहकारी क्षेत्र में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे कई क्षेत्रों में भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है, जिससे महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर मिल सकें। इस योजना की विशेषता ये है कि यह सहकारी व्यवसायिक उद्यमों को प्रोत्साहित करके महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही विकास गतिविधियों के लिए महिला सहकारी समितियों को कम लागत वाली वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर देता है। तो बहनों, बातें हम और भी करेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। अब आइए सुनते हैं एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हीरा पन्ना से और जिसे अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

अभी हमने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म हीरा पन्ना का ये गीत सुना। बहनों, आज का परिवेश ऐसा है कि लोगों को सुंदर और आकर्षक दिखना बहुत पसंद होता है। हर कोई सजना सवरना चाहता है और हम महिलाओं में तो इसका क्रेज बहुत ही ज्यादा होता है। इसके लिए हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ब्यूटिशियन बनना एक ऐसा काम है जो रोजगार का बहुत ही अच्छा माध्यम बन गया है। तो बहनों, ब्यूटिशियन एक प्रशिक्षित पेशेवर होती हैं, जो लोगों को सुंदर दिखने और बेहतर महसूस करने में हमारी मदद करती हैं। उनका काम है त्वचा की देखभाल और मेकअप से लेकर हेयर स्टाइलिंग और नेल केयर तक कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा वो सैलून, स्पा में या फ्रीलांसर के रूप में भी काम करती हैं। और बहनों, फेशियल, हेयर कट, हेयर कलर, वैक्सिंग और मैनीक्योर पेडीक्योर जैसी सेवाएं भी देती हैं। बहनों, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और ब्यूटिशियन के क्षेत्र में कैरियर के बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। 2026 तक यह उद्योग बहुत आगे बढ़ा है और इसमें नौकरी व स्वरोजगार के बेहतरीन विकल्प हैं। जैसे आप खुद का सैलून या पार्लर शुरू कर सकते हैं, जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। इसके अलावा आप शादियों, पार्टियों या इवेंट्स में फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। बहनों, आजकल नेल आर्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसमें भी अच्छा कैरियर है और आप किसी बड़े सैलून, स्पा या वेलनेस सेंटर में सीनियर ब्यूटिशियन के तौर पर भी काम कर सकती हैं। बड़े पैमाने पर देखें तो फिल्म, टीवी या फैशन शो में मेकअप आर्टिस्ट की भूमिका निभा सकती हैं। बड़ी एयरलाइंस कंपनी एयर होस्टेस के लिए मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन नियुक्त करती है। साथ ही ब्रांड्स के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए कॉस्मेटिक कंपनियां कंसल्टेंट नियुक्त करती हैं। और अगर आपको अनुभव है तो आप ब्यूटी स्कूल या

एकेडमी में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। बहनों, इस क्षेत्र में करियर शुरू करने के लिए प्रमुख कोर्स आपको करने होंगे, जैसे डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी, ये कोर्स 12 महीने का होता है, हेयर डिजाइनिंग और कलरिंग कोर्स, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स और स्किन केयर या फेशियल कोर्स। बहनों, एक ब्यूटिशियन में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो हैं बालों की स्टाइलिंग, कटिंग और कलरिंग, मेकअप करना, स्किन केयर ट्रीटमेंट और फेशियल, साथ ही त्वचा की समझ और प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। बहनों, अब वक्त है छोटे से अंतराल का और आइए एक और गीत सुन लेते हैं। फिल्म है मेरे जीवन साथी, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने।

0: में जुड़ी हैं। तो चलिए उनसे करते हैं विशेष बातचीत। विषय है ब्यूटीशियन में रोजगार की संभावनाएं।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम आप एक ब्यूटीशियन है, तो पहले तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने ये क्षेत्र क्यों चुना।
2: मुझे शुरू से शौक था कि मैं इस फील्ड में आऊं और इसमें काम करूं, पर थोड़ी सी समस्या आई मुझे इसमें आने के लिए, पर हो गया। मैंने इसको शुरू किया और मुझे 20 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं पूरी अपने जोश के साथ काम कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा बाहर जाना, बच्चे छोटे थे तो बाहर नहीं जा सकती थी, घर में इतना अलाउ भी नहीं करते थे कि मैं बाहर जाऊँ या इस फील्ड में आऊँ, लेकिन मुझे शौक था। तो जब छोटी छोटी क्लासेस यहाँ होती रहती थी तो वो मैं अटेंड करती थी, सेमिनार्स अटेंड करती थी, उससे मैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके सीखती रह गई। फिर बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हुए तो मुझे लगा नहीं, अब इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे आ गए। पहले मैं अपने घर के पास ही एक छोटा सा लेके सलून वहाँ चलाती थी और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ।
1: मैडम हर रोज फैशन का ट्रेंड बदलता है, तो आप ट्रेंड के साथ खुद को कैसे अपडेट रखती हैं वो भी आप हमारी श्रोताओं को बताइए।
2: फैशन तो हमारा हर तीसरे दिन चौथे दिन चेंज होता रहता है, लेकिन क्या होता है कि क्लाइंट हमारी जैसे डिमांड करता है। क्लाइंट कभी कभी हम बताते हैं कि नहीं ट्रेंड ये चल रहा है आप ये करवाओ, लेकिन नहीं क्लाइंट बोलता है नहीं हमको ये नहीं चाहिए हमको ऐसा चाहिए। तो हमारा सबसे पहले ये रहता है कि हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करें। तो फैशन जैसे क्लाइंट बोलता है उस हिसाब से हमको काम करना पड़ता है।
1: आपने ब्यूटीशियन का कोर्स भी किया होगा, तो आप हमारी श्रोताओं को बताइए कि कैसे ये कोर्स करते हैं और कितना इसमें वक्त लगता है।
2: ये कोर्स सब अलग अलग रहता है, जैसे कोई 3 मंथ्स का करता है, कोई 6 मंथ का करता है, कोई 12 मंथ का करता है। मेन बेसिकली ये 6 मंथ का कोर्स होता है जो हमारा ब्यूटीशियन कराता है। फिर प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस अब ये अपने दिमाग के ऊपर अपने मेहनत लगन के ऊपर होता है कि हम इसमें कितना टाइम लगा देते हैं। जो अगर दिमाग अच्छा और मेहनत किया तो वो 3 महीने में भी कोर्स कंप्लीट कर लेता है। और लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि हर गली हर मोहल्ले में सैलून खुल रहे हैं, तो लड़कियां क्या की कि महीने 2 महीने अपना कोर्स कर लें बस हमसे बनने लगा और वो खोल ली, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैं तो हर ब्यूटिशियन को ये बोलूं जो आज की जनरेशन है और इस फील्ड में आ रही हैं, तो वो पहले सीखे तो ठीक है, सीख तो ली, लेकिन वो प्रैक्टिस करें। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम पीछे ही जाएंगे, तो प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है। तो कोर्स तो ये 6 मंथ का ही रहता है, 3 मंथ का भी रहता है, बाकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम
1: कितना टाइम लगाते हैं सीखने में। मैडम गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप हमारी श्रोताओं को कुछ ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगी?
2: बिल्कुल, गर्मी का मौसम चल रहा है तो इस समय तो सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, खीरा खाएं, या हमारे किचन से ही बहुत सारे ब्यूटी टिप्स हैं। जैसे दही हो गई, मैं बोलती हूँ क्लाइंट को दही, आप जिस किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो मैं उनको बोलती हूँ आप 2 स्पून दही वो करिए निकालिए और चाय की छन्नी में डालिए, उसका पानी निकल जाता है, उसमें आप शहद मिलाइए और उसको फेंटिए, वो एक टाइट पैक तैयार हो जाता है। उसको आप फेस में अप्लाई करिए, वो एक ब्लीच का काम करता है। आप जब जाते हैं क्लाइंट यहाँ सैलून में और आप ब्लीच करवाते हैं, वो आपको साइड इफेक्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान करता है, क्योंकि उसमें जो एक्टिवेटर रहता है वो अमोनिया रहता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत लोग अपने घर में ब्लीच कर लेते हैं और धीरे धीरे स्किन ब्लैक होने लगती है। ज़्यादातर सलून में होता है कि 15 दिन में क्लाइंट आता है और ब्लीच कर दो ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलती हूँ कम से कम 3 से 4 मंथ आप देख लीजिए उसके बाद। जैसे कोई बोलता है हमको डार्क सर्कल है, तो हम बोलते हैं संतरे, इस समय ऑरेंज बहुत आ रहे हैं, आप लो और उसका जूस निकालो, 1-2 कली संतरे का जूस निकालो, उसमें आप शहद मिलाओ और कटोरी में या बाउल में भर के आप फ्रिज में भी रख दो, कॉटन में लेके आप उसमें डार्क सर्कल में आप अप्लाई करो, पूरे फेस में अप्लाई करो। ये जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। फिर जिनकी ड्राई स्किन हो गई उनको मैं बोलती हूँ आप मलाई ले लो, उसमें शहद मिला लो या 1 चुटकी हल्दी उसमें मिला लो, उसको लगाओ, आप एलोवेरा जेल लगाओ। ऐसे बहुत सारी होममेड चीजें हैं जिनको, मतलब मैं तो अपने क्लाइंट को हमेशा बताती हूँ कि आप ये करिए ये करिए। आप खाना भी बना रहे हो, पका पपीता आपके घर में है, वही आप फेस में लगा लो, आप अपने गर्दन में लगा लो, खाना बना रहे हो फिर अपना फेस धो लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अभी बताने लगेंगे तो
1: जी मैडम, मैडम आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और

अभी हमने किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना, फिल्म थी मेरे जीवन साथी। बहनों, आज है हमारे बीच वंदना द्विवेदी जी, जो कि एक ब्यूटिशियन है। पिछले 20 वर्षों से वो इस क्षेत्र

0: इतने व्यस्ततम दिनचर्या में भी आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच।
2: अब हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर, जिसमें हम लेकर आते हैं कुछ लजीज और हेल्दी व्यंजनों की रेसिपी। आज के व्यंजन में हम सिकंजी मसाला पाउडर की रेसिपी बताएंगे, जिससे आपको सिकंजी बनाने में सोचना नहीं पड़ेगा। ये मसाला आप बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं और फिर जब मन चाहे आप अलग अलग तरह की सिकंजी, छाछ, लस्सी बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब आइए सिकंजी मसाला बनाते हैं। इसके लिए

पाउडर की रेसिपी बताएंगे, जिससे आपको सिकंजी बनाने में सोचना नहीं पड़ेगा। ये मसाला आप बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं, और फिर जब मन चाहे आप अलग अलग तरह की सिकंजी, छाछ, लस्सी बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब आइए सिकंजी मसाला बनाते हैं। इसके लिए हमें एक कड़ाही को गैस में रखकर फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अब उसमें 2 टेबल स्पून जीरा भूनेंगे। इसे हल्का ही भूनना है जिससे कच्चापन चला जाए। अब भुना हुआ जीरा एक प्लेट में निकाल लेंगे, साथ ही 2 टेबल स्पून कच्चा जीरा मतलब बिना भुना हुआ जीरा लेंगे। अब 2 चम्मच के करीब साबुत काली मिर्च हम लेंगे। इन सबको ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें लेंगे 2 से 3 इलायची और 2 बड़े चम्मच काला नमक, साथ ही 1 चम्मच सफेद नमक जो हम रोज में इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें वो हैं जो डाइजेशन को सही करती हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब सौंठ का पाउडर, और इन सब चीजों को पीस कर एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए और एक एयरटाइट डिब्बे में डालकर स्टोर करके रख लीजिए। बहनों, सिकंजी बनाने के लिए हमें शक्कर को घोलने में थोड़ा परेशानी होती है, तो इसके लिए हम एक पैन में लेंगे 2 कप पानी और 2 कप चीनी। अब इसे गैस पर रखकर एक उबाल आने तक पका लेंगे। फिर ठंडा करके एक बॉटल में कम से कम 1 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं अलग अलग स्वाद की सिकंजी। सबसे पहले फ्रेश पुदीना के पत्ते लेंगे। अब इसे थोड़ा सा कूट लेंगे। अब लीजिए कांच के 2 गिलास। उसमें पहले डालेंगे आधा आधा नींबू का रस निचोड़कर। अब जाएगा 2 बड़े चम्मच शुगर सिरप जो हमने बनाकर तैयार किया था वो। इसके बाद जो सिकंजी मसाला पाउडर बनाकर रखा था वो 1-1 छोटे चम्मच दोनों गिलास में डाल देंगे। अब जाएंगे कुछ आइस क्यूब्स। फिर जो हमने पुदीने के पत्ते मसल कर रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। फिर 1 गिलास में हम डालेंगे सिंपल चिल्ड वाटर। फिर डेकोरेट कर दीजिए पुदीने के पत्ते और नींबू स्लाइस से। तो हमारी मार्केट स्टाइल सिकंजी बनकर तैयार हो गई। अब जो दूसरा गिलास हमने लिया था उसमें डालेंगे सोडा वाटर और मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेश ठंडी ठंडी सिकंजी बनकर तैयार हो गई। बहनों, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो गर्मियों में आम का पना हम बना सकते हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमें लू से बचाता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है। तो इसके लिए लेंगे कच्चे आम, उन्हें उबालकर पल्प निकाल लीजिए। फिर पानी डालकर पतला सा घोल बना लीजिए। अब सिकंजी मसाला और आइस क्यूब डालकर ठंडा ठंडा आम का पना बनाकर पी सकते हैं। बहनों, इस गर्मी में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और खुश रहिए। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। अब अंत में एक बार फिर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म है असली नकली।

अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, तो दीजिए इजाजत फिर मिलने के वादे के साथ। अपनी बहन कल्पना को नमस्कार।

श्रोता बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ना उत्तेजना
1: ना शोर दिन रात
0: ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: आपकी पहचान हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दे नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रामस्वरूप साकेत के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विकास गीत से।

रामस्वरूप साकेत के गाये इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुँचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं फिल्म नोटबुक से लिए गए इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है विशाल मिश्रा और कमाल खान।

0: दर्शन रावल की आवाज में भी आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का था और फिल्म थी लूडो। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब।
0: राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा,
2: शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। बंगाल में सत्ता का नया सूर्योदय हुआ है और यहाँ पर जंगल राज का अंत हुआ है, गुंडागिरी का अंत हुआ है। निश्चित रूप से इस अवसर पर बंगाल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। कृपया इसे दोबारा सुन लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा भी जाएंगे, जहाँ वे सरदा धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सरदार धाम परिसर का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अपने संसदीय क्षेत्र गुना का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। यह ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। देश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार और 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा रहा है।
3: अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: वहीं रायसेन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने के निर्देशन में आयोजित इस अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद और चेक बाउंस जैसे राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। आज के लिए 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। आगरमालवा जिला जेल एवं वृद्धाश्रम में कल आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में वृद्धजनों को स्वास्थ्य, पेंशन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। जबलपुर में जिला अस्पताल विक्टोरिया और सरकारी संस्था पार्थ के संयुक्त तत्वावधान में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया कल 10 मई को नीमच में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करिते छी जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल।

संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के

0: अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है।

0: गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर में, संतोष आनंद की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और महराज जहां ने लक्सर हरिद्वार से, बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक और

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। फिल्म सीता और गीता के इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य, अभयानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित ने। निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय की भी यही फरमाइश है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित और समस्त राजावत परिवार।

आपकी फरमाइश का अगला गीत है हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और उनके परिवार के सभी सदस्य, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली, भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब और उनके सभी साथी, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। साथ ही कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये फरमाइशी पत्र आया है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता का। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह का गाया फिल्म रफू चक्कर का गीत। इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत कल्याण जी, आनंद जी का।

0: आपकी कसम, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में। आरडी बर्मन के संगीत से सजे इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं प्रमिलागंज आलौड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत प्रिंस और एकांश गवहाणकर ने उमर खेड़ महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश भेजी है। बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि, परी और गवहाणकर परिवार के सभी सदस्यों की फरमाइश है। तो आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म आपकी कसम का ये गीत।
1: सुनो,
2: कहो,
1: कहा,
2: सुना।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज में विट्ठल भाई पटेल का लिखा गीत। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बॉबी फिल्म के इस गीत को सुनवाने की फरमाइश गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधली की है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, अनिल कवचाले, नेहा फड़से, सीमा, सबीहा, कमल, पूजा, नैना, सुषमा, स्मिता और उनके सभी साथी गोमाश्ता नगर इंदौर से। द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा ने अपनी फरमाइश दत्रेगी से भेजी है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर की भी यही फरमाइश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। युवा श्रोता युवाणी कार्यक्रम शाम 5:02 पर सुनेंगे, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 आप एक विशेष भेंटवार्ता सुन सकेंगे। आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का दूसरा भाग में आप सुनेंगे साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और योगदान पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत। 7:21 का समय ग्राम सभा कार्यक्रम का होगा, जिसमें गीत संगीत और चर्चा तो शामिल ही होगी, साथ ही आप सुन सकेंगे बुंदेली समाचार और 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुना जा सकेगा। रात 8:00 का समय सुर्खियों में कार्यक्रम का रहेगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 से सुनेगा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कलाकार होंगे राजकुमार मजुमदार, आपका संतूर वादन सुना जा सकेगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:15 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। शाम 5 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रामस्वरूप साकेत के गाए लोकगीत।

अभी आप लोक संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से DTH के ऑडियो चैनल पर किया जा रहा है। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने रामस्वरूप साकेत की गाई चंद गजलें सुनी। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। पेश है चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने। फिल्म है कुछ कुछ

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं गुलजार का लिखा गीत सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज में। ए आर रहमान का संगीत है और फिल्म है दिल से।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर की जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश भर में आज साल की 2री नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्ग को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 से जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर।
2: डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियोज में उपस्थित हैं। वरिष्ठ उपन्यासकार हैं, लेखक हैं और 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ज्ञान जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो।
3: धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते।
2: शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे बातचीत की, कि ये व्यंग लिखने की, ये चुटकियाँ लेने की और कटाक्ष के माध्यम से समाज को आईना दिखाने की शुरुआत कैसे हुई आपकी?
3: देखिए, मैं कहूँ कि मैंने लिखना शुरू किया तो मैं तो जब 6वीं कक्षा में था तब मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई। फिर हर लेखक का मैं मानता हूँ कि वो कई विधाओं में टहलने के बाद और घूमने के बाद और खोजने के बाद उसे लगता है ये जगह है जहाँ मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, ये मैं लिख सकता हूँ। मैं कविता भी लिखी, मैंने जासूसी उपन्यास भी लिखे, मैंने कहानियाँ भी लिखी, मैं जाके मंच से शेर व शायरी भी करने लग गया। पर आपको पता लगता था कि नहीं, कुछ चीज़ छूट रही है आपसे
2: जी।
3: और फिर आप, मैं शायद 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तब मैं एकदम परसाई और शरद जोशी और इनके लेखों को मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो क्या बात है, ये चीज़ है, क्योंकि ये मेरे स्वभाव से मेल खाता है। जितना मैं चीज़ों को लेके तिलमिलाता हूँ, जो आसपास घट रहा है समाज, उसमें जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उसको लेके जो मेरे मन में आता है, वो ये विधा मेरे को लगता है मेरी विधा है। तो मैं मेडिकल कॉलेज में था, 1971 में मेरी पहली रचना व्यंग की छपी होगी
2: जी,
3: और तब से लिख रहा हूँ। अब से वजह नहीं कितना दिन हो गया, अब तो शायद 40 साल से ऊपर हो गए, और भी ज़्यादा हो गए। तो मैं लंबे समय से व्यंग लिख रहा हूँ तब से।
2: आपकी एक टिप्पणी मैंने कहीं पढ़ी थी कि व्यंग के साथ रहना एक अलग बात है और व्यंगकार के साथ रहना एक अलग बात है। इसको हम चाहेंगे कि थोड़ा एलेबोरेट करें हमारे श्रोताओं के लिए।
3: ये हमेशा कहा जाता है कि आदमी लेखक के तौर पर क्या अलग हो सकता है अगर वो गलत आदमी है, और लिखना बहुत सही कर सकता है क्या? एक आदमी जिसमें जीवन में संवेदनाएं हो ही ना, या वो कितनी संवेदनशील कविता लिख सकता है
2: जी।
3: जो संवेदना के विरुद्ध जीवन में काम करता हो, जो जीवन में बेईमानी

0: नहीं करता हो, जो चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करता हो, जो यहाँ वहाँ समझौते करता हो, जो गरीबों का हक मारता हो जीवन में, वो एक बड़ा अफसर हो चाहे जो हो, और साथ में वो शौकिया व्यंग भी लिखे, उसकी व्यंग में वो ताकत होगी क्या? नहीं
1: बिल्कुल
0: होगी। मैं इन व्यंग की बात कर रहा हूँ। अगर जेन्युइन व्यंगकार है तो वो जैसा व्यंग लिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है, कम से कम व्यंग के मामले में तो कह सकता हूँ कि वो लगभग जीवन में उसी के आसपास होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कमतर निकल आए, बहुत सारी चीज़ों में आपको भी जीवन में जीने के लिए समझौते करने पड़ते हैं, चीज़ों से एडजस्ट करना पड़ता है, पर आमतौर पे आप थोड़ा अलग आदमी होंगे। तो व्यंगकार के साथ जीना दिक्कत वाला यहाँ है उन लोगों के लिए जो जीवन से नामालूम क्या क्या उम्मीदें करते हैं, और बैकडोर एंट्री, पुराने पीछे के दरवाजे, यहाँ से सिफारिशों से चीज़ें प्राप्त करना, ऐसे बहुत सारे व्यंगकार भी हैं, बड़े बड़े व्यंगकार हैं, पर उनके व्यंग में वो ताकत नहीं है। वो यहाँ वहाँ समझौते कर रहे हैं, यहाँ से पुरस्कार ले रहे हैं, वहाँ से जुगाड़ लगा रहे हैं। तो व्यंग में कम से कम एक व्यंगकार का व्यक्तित्व तो बड़ा प्योर सा होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में, एकदम तो नहीं कि वो संत हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि वैसा होना चाहिए। और ऐसे आदमी के साथ रहना हमेशा ही एक दुनियादारी वाले आदमी के रहना के को कठिन होता है, इसलिए ऐसे लोगों के सही सच्चे दोस्त कम होते हैं, उसे बर्दाश्त करने वाले लोग कम होते हैं। हम अपना बता रहे हैं कि ऐसे ही है हमारा भी।
1: इसी संदर्भ से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि आजकल कई सारे जो नवोदित व्यंग्यकार हैं वो बहुत जल्दी प्रसिद्धि पाने के लिए फूहड़ता पर थोड़ा सा उतर आते हैं, खासकर जो मंचीय व्यंग्यकार हैं। तो ये जो एक संतुलन बनाना है कि हम उस सीमा से भी बाहर ना जाएं और हमारे व्यंग्य में वही मारक क्षमता हो जिससे कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हो उनको उस व्यंग्य में निहित करुणा का एहसास हो, इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
0: देखिए क्या है, आप नए व्यंगकार और पुराने व्यंगकार मत करिए, वो आदमी कोई भी किसी भी विधा में, बहुत अच्छी बात ज्ञान रंजन ने कही थी एक बार कि जिन्हें ओवरनाइट स्टार बनना हो, साहित्य वो जगह नहीं है, तो कृपया साहित्य में ना आए, कुछ और चीज़ ट्राई कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं। और साहित्य के नाम पे आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो इवन जो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं वो भी लोग चाहते हैं कि उसको साहित्य माना जाए, उस तरह की चीज़ भी। ये बड़ी जल्दबाजी में लोग हैं, और साहित्य एक लंबा, एक मैंने कहीं परसों बोलते हुए मैंने कहा था कि एक धीमी आंच में पकने वाला मामला है,
1: बिल्कुल
0: पकाने वाला मामला है, ये धीमी आंच का व्यंजन है, इसे अगर आपने ज़्यादा आंच दे दी तो जल जाएगा, और पहले उतार लिया तो कच्चा उतर आएगा, और वही हो रहा है। ये कच्चे उतार कर परोस रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे खाइए और वाह वाह ही करिए, और या फिर आप मतलब जितने ये आप मंच की कविता की बात किया, मंच के वो तो छोड़ ही दीजिए, बहुत बड़ा किस्सा है, बहुत बड़ी बात है, पर मैं जितने लोग साहित्य में, व्यंग्य साहित्य में या कहानी में या कविता में उतरने की सोचते हैं या कर रहे हैं, उन्हें रातों रात उस फील्ड का स्टार, आज 40 साल बाद लोग कहते हैं भाई ज्ञान चतुर्वेदी एक अच्छे लेखक हैं, बढ़िया हैं, लोग मिलने को
1: आते
0: चाहते
1: हैं
0: हैं
1: जी।
0: आपसे, आपको बुलाते हैं बोलने के लिए, तो ये रातों रात नहीं हो गया। मैं तो आपको कहता हूँ कि इसी भोपाल में 18 साल करीब शुरू किए, 17-18 साल, मैं कभी यहाँ कोई फंक्शन भी होता था तो मैं पीछे जाके बैठ के सुन लेता था, कोई बड़ा लेखक आया, कुछ आ गया, मुझे लगता है पहली बार मनोहर श्याम जोशी जी आए थे, और वो मैं तो सुन रहा था दर्शकों में बैठ के, मैं कुछ मुझे यहीं के लोग नहीं जानते थे कि कोई ज्ञान चतुर्वेदी है जो धर्म में छप रहा है, जो इतना, इसका पहला नॉवल भी आ गया और बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, मैं बोलता भी नहीं था किसी से कि मैं ज्ञान चतुर्वेदी हूँ, आके बैठ के अपना कार्यक्रम सुना और निकल गए। उन्होंने मुझे मंच से पहचाना और कहा कि ज्ञान चतुर्वेदी जी बैठे, तो बहुत लोगों ने पलट के देखा, और फिर मेरे को लोगों ने पहचाना कि अरे ये भोपाल का है। अब मेरे को कोई उससे वो भी नहीं होती थी कि मुझे कोई पहचान नहीं रहा, मुझे कोई क्यों नहीं कह रहा कि यार देखो, उस समय धर्मयुग में छपा हुआ लेखक बहुत बड़ा लेखक मानता था, मैं तो
1: बिल्कुल
0: लगातार धर्मयुग में छपा जा रहा था। तो जल्द मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी करेंगे तो आप लेखन से इतर हटकर दूसरी हरकतों में मुब्तला
1: उलझ
0: हो
1: जाएंगे।
0: जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: और जब उससे हट जाएंगे तो आदमी के दिमाग एक टाइम पर एक ही विचार से डील कर सकता है, वरना विचारों का भगदड़ मचा तो कोई क्रिएटिव विचार वहाँ रहता नहीं। तो आपको बहुत अपने विचार के साथ, अपने लेखन के साथ बहुत अकेले रहने की एक व्यायाम आना चाहिए, वो नहीं आता आपको अगर, तो आप लिख लोगे अभ्यास बस, पर बात नहीं बनेगी, वो आपके लेखन में बात नहीं बनेगी। आपने अगर वो डूब के लिख नहीं पाए, जब डूब के लिखने लगे तभी आपको याद आता है अरे फलानी जुगाड़ बनाना है वो, आप जल्दी में हैं।

0: बिल्कुल
1: आप बहुत कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है पहले आप लिखिए और जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। अच्छा काम तो रिकॉग्नाइज होगा ही,
0: बिल्कुल।
1: ये दुनिया कितनी भी खराब हो जाए, ये दुनिया जुगाड़बंदियों वाले हाथों में कितनी भी चली जाए, ये जुगाड़बंदी वाले लोग जो जुगाड़ से महानता प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं या थोड़ी बहुत तथाकथित महानता प्राप्त कर भी लेते हैं, ये आदमी सबसे ज़्यादा जेन्यून आदमियों से डरता है। ऐसे आदमी जेन्यून लेखकों से डरते हैं, जेन्यून लेखन से डरते हैं। तो आप खूब जेन्यून लिखिए, देखिए आपसे कितने इस तरह के लोग डरेंगे और कहाँ आप पहुँचेंगे। आप जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी के खिलाफ मैं भी हूँ।
0: इस व्यंग विधा का अब और भी ज़्यादा प्रचलन में इसलिए भी आ गई क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम जी रहे हैं और अब हर कोई चाहता है कि कोई भी मुद्दा जो घट रहा है इस समय देश में उस पर कुछ ऐसा चुटीला व्यंग किया जाए कि उस व्यक्ति तक वो बात पहुंच जाए। कितना महत्व आप समझते हैं सोशल मीडिया का आज के दौर में?
1: सोशल मीडिया का बहुत, व्यंग विधा के लिए भी। अदर देखिए, हमेशा याद रखिए कि एक है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो मुझे जितने माध्यम मिल सकें इसको पहुंचाने के लोगों तक, वो मेरे लिए हमेशा ही उनका मैं स्वागत करूंगा। पहले था केवल एक मैगज़ीन है, वो छपी, उसके संपादक ने पसंद किया, कार्ड चाट के कर दिया और छाप दिया। उससे तो एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए जगह ये बन गई कि मैंने आज एक बहुत अच्छा लिखा, मैं लाखों आदमी तक यूट्यूब पे पढ़ के दे दूँ, पसंद आएगा लोगों को क्योंकि मेरा अच्छा है तो लाखों लोग सुनेंगे, हज़ारों तो सुनेंगे ही। मैं फेसबुक पे डाल दूँ, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूँ, वो अगर अच्छा होगा तो वो लोग एक दूसरे को भेजने लगते हैं। पर यहाँ भी पहली शर्त है कि आपके लेखन में दम है कि नहीं।
0: बिल्कुल,
1: अगर माध्यम बहुत ज़बरदस्त मिल गया आपको, सोशल मीडिया एक बहुत ज़बरदस्त माध्यम है जिसका कि दुष्प्रभाव ये है कि मैं इस जल्दबाजी में कि यार मेरे पास तो है और कोई एडिटर नहीं है उसका, आप ही एडिटर हैं, आप ही लिख रहे हैं, आप ही बताते हो कि बहुत अच्छा है और आप ही उसे डाल देते हो, कोई तीसरा आदमी उसे इवेल्युएट करता ही नहीं और आत्मालोचना का आप में भाव नहीं है। आप तो समझते हैं मैंने जो लिखा है वो क्या बढ़िया है, आप उसे डाल देते हो, तो वही अधकच्चे माल को डालने की बात है, अधपके चीज़ को आप परोसने की बात है। तो आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है, सोशल मीडिया में गलत किस्म का व्यंग भी इसी हिसाब से जा रहा है। और आप औपचारिकता में कितने लोग हैं जो थंब अप कर देते हैं, कितने लोग हैं जो स्माइली देते हैं, कितने लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, वो बिना आपका आया है अभी और जितने में उसे पढ़ा भी नहीं जा सकता उतने में 10 लोगों ने लाइक भेज दिए और आप बड़े खुश हैं कि आज मेरे इस पे इतने लाइक। तो लाइक डजंट एक्सप्लेन, लाइक से कोई नहीं बता रहा है कि उसने वास्तव में पढ़ा है और उसे समझ के हाँ कहा, अच्छा कहा है। तो सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं एक अच्छी रचना को लिखूं तो उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मीडियम है। पर सोशल मीडिया की दिक्कत ही हो रही है आज के रचनाकारों के साथ, ज़्यादातर के साथ, कि वो सोशल मीडिया ने उन्हें बहुत, यहाँ भी जल्दबाजी वाली बात है कि वो इनवाइट कर रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तो वो जल्दी आ रहे हैं और जल्दी कुछ भी लेके आ रहे हैं और लाइक्स को मानते हैं कि यही एप्रिसिएशन है, यही मेरे शायद रचना के बहुत अच्छे होने का संकेत है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जो लोग सोशल मीडिया, जैसे मैं फेसबुक पे हूँ भी और नहीं भी, मैंने शायद आज 5 साल से कुछ फेसबुक लिखा नहीं, मैं 2 लोग भेजते मैं पढ़ लेता हूँ, उससे मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा खो दिया हो,
0: नुकसान कर दिया,
1: हाँ कोई ऐसा खो दिया हो। हो सकता है मैं अपनी किताब का प्रचार करता, पर मैंने पाया कि मैं अच्छा लिखूँगा तो लोग मानेंगे ही कि हाँ पहुँचेगी वो बात, वही यंग बच्चे पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। तो आपके चीज़ में दम होना चाहिए। बहुत से लेखक, बहुत सारे कलाकार हैं जो कहीं कुछ नहीं करते और केवल किसी फंक्शन में नहीं जाते और बड़े कलाकार हैं और दुनिया पसंद करती है, और एक ऐसे हैं जो हर जगह पहुंचते और पिट भी रही है उनकी फिल्में, उस तरह हर कलाकार का है, चाहे लेखक हो चाहे जो हो। आपकी काम में आपका कितना मन है उस पर सब निर्भर करता है। तो आप सोशल मीडिया को अगर क्लेवरली इस्तेमाल कर सकते हो ज़रूर करिए, पर याद रखिए कि जो चीज़ आप बेच रहे हो वो अंतिमतः ग्राहक के पास पहुंचती है। अमेज़न में तो खैर वापस कर देते हैं आप खराब प्रोडक्ट को, वो फेंक नहीं पाता आपकी बात, बस वही है। वरना अगर ये व्यवस्था आ जाएगी तो आपके पास बहुत सारा कचरा वापस इकट्ठा हो जाएगा।
0: एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि गुणवत्ता होनी चाहिए आपके लेखन में जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोग उसे पसंद कर सकें, लेकिन सोशल मीडिया का जो एक सीमा है कि 160 या 180 कैरेक्टर्स के अंदर हमें बात अपनी कहनी है, फिर ये कितनी बड़ी चुनौती उभर के सामने आती है?
1: नहीं देखिए, मैं तो अभी बात कर रहा था आपको, व्हाट्सएप वगैरह पर बड़ी चीज़ें भी भेज सकते हैं, पर ट्विटर वगैरह में जहाँ पर आपको कम, देखिए

0: बड़ी बात बहुत छोटे शब्दों में भी कही जा सकती है। आप आज तक कबीर के दोहे क्या दो पंक्तियों में,
1: बिल्कुल सूर
0: और
1: के दो
0: जीवन की इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सूरदास जी के पद
1: बिल्कुल
0: या रहीम के दोहे, तो ये बड़ा और छोटा किसी रचना को बड़ा और छोटा नहीं बनाते। ये आपकी सोच और आप जीवन की कोई बड़ी सच्चाई से जब रूबरू करा रहे हैं पढ़ने वाले को, तो ये बिल्कुल नहीं होता कि ये रचना लंबी होगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, छोटी होगी तो बहुत छोटी हो जाएगी। जब मैं ट्विटर पे उतरूंगा तो मुझे मालूम है कि मेरी सीमा ये है, मैं उतरूंगा ही तब, अगर
1: उस मानस से
0: मैं
1: ही निकलेंगे
0: हाँ
1: आप।
0: बता, और अब इसमें मुझे बड़ी बात कहनी है तो मैं कैसे कहूँ? अगर मुझे उस विधा को इस्तेमाल करना है, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है, तो मुझे वो डिसिप्लिन के हिसाब से अपने को तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं बिना तैयारी के उतरूंगा तो कहूँगा यार मैं बात नहीं कह पाया, वो क्या बताऊँ, मेरे को इतने कैरेक्टर में कहना थी, वरना मैं ना बोलूँ क्या कर देता। पर ऐसा नहीं है, आप 160 में कहने की अगर मैं उसमें उतर रहा हूँ तो मुझे उतने में ही, मैंने बहुत लंबे कॉलम में लिखे, मैंने बहुत छोटे भी लिखे, मैंने बहुत छोटे भी लिखे जो 200 शब्दों के भी थे, 2000 शब्दों के भी हैं, 1000 के भी हैं, फिर उपन्यास भी लिखा, और छोटा उपन्यास भी लिखा, बड़ा भी लिखा, नाटक भी लिखा। हर विधा में जब मैं गया तो मैं इस तैयारी से गया कि हाँ इस विधा में मुझे ये सीमा है और मैं अपनी पूरी बात इस सीमा में कहूँगा। देखिए प्रतिदिन का कॉलम शरद जी ने लिखा, और वो मुश्किल से 300-400 शब्दों का, 500 मैगजिम कभी हुआ हो, पर उसमें इतनी बड़ी बातें लाइफ के बारे में कही कि वो पूरे देश में लोकप्रिय था। और कुछ बड़ी रचनाएं भी उन्होंने करी, बहुत लंबी रचनाएं भी लिखी, बहुत 10-10 पेज तक जाने वाली रचनाएं भी लिखी, पर मुझे पता है कि ये कहानी इसमें आ रही है, ये कहानी इसमें नहीं आएगी। तो मैं अपनी सीमा के अंदर बेस्ट इस्तेमाल करूं, तो ये मत कहिए कि सीमा होने के कारण खराब रचना हो गई। आपने आपको सीमा बताई गई थी, ऐसा नहीं कि आपसे छुड़ा लिया गया परचा बाद में लिखते
1: पहले से
0: लिखते
1: पता थी
0: कि अब ये
1: एकदम
0: हो गया भैया,
1: जी।
0: अब आपके 16 होगा, अब नहीं कर पाओगे। आपको पता है इस तैयारी के साथ उतरिए अगर आप उस पर उतरना है तो। तो रचना का अच्छा होना तो किसी बहाने से खराब होना उसका नहीं जस्टिफाई होता। आप ये नहीं कह सकते कि ट्विटर में चूंकि करेक्टर हम कम इस्तेमाल करते इसलिए हम बड़ी बात नहीं कह पा रहे हैं, ये आप बहाने बना रहे हैं। आप बहाने मत बनाइए, एक अच्छी चीज़ आपको देना पड़ेगी किसी जगह हो, तभी सोशल मीडिया में आपका लेखन या आप पहुँचेंगे, नहीं तो नहीं पहुँचेंगे। आप भी एक उपस्थिति होंगे, एक भीड़ का हिस्सा होंगे, उस भीड़ में एक फेस अलग बनने के लिए आपको अपनी उसकी गुणवत्ता पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प
1: सब्स्टिट्यूट नहीं
0: नहीं
1: है
0: है,
1: बिल्कुल।
0: विकल्प विकल्प नहीं है कोई दूसरा।
1: ये जानना चाहेंगे आपसे कि एक व्यस्त चिकित्सक भी हैं आप, तो वहाँ से समय कैसे निकाल पाते हैं व्यंग
0: निकाला
1: की
0: ना
1: तरफ
0: आज,
1: ध्यान
0: देखिए हम
1: देने के
0: भाग के कैसे
1: लिए?
0: आए।
1: मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नवोदित लेखक हैं वो कई बार ये बात कहते हैं कि समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए या
0: जीवन
1: लिखने के
0: में
1: लिए।
0: आपको प्रायोरिटीज तय करना पड़ती, आपको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती जीवन में।
1: जी
0: क्या मेरा आज शाम को दोस्तों के साथ बैठ के गप मारना महत्वपूर्ण है, या उस समय में मुझे वो आर्टिकल जो है, लेख या उपन्यास का वो हिस्सा जो मेरे मन में इस समय चल रहा है, मुझे उसमें समय देना था, या आज शाम को चलो गप सड़ा के मैं निकल जाते हैं, चलो आज एक टीवी सीरियल बढ़िया आ रहा है, आज मुझे फलानी चीज़ देखनी है उसमें। तो आप पहले प्राथमिकताएं तय करिए। जैसे मेरे जीवन की प्राथमिकता है कि मुझे डॉक्टरी वाला काम करना है, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा भी आता है और मेरी वो रोजी रोटी है,
1: बिल्कुल
0: उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता, उसको जितना समय देना वो देना है। फिर मैं जिस परिवार से हूँ उस परिवार के लिए मेरी जिम्मेदारी, मेरी पत्नी के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, वो मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कि मेरी होनी चाहिए वो। फिर मेरा लेखन आता है, इन तीन में अगर समय मेरा है फिर कुछ बचेगा तो मैं कुछ और करूँगा, मैं फिल्म देखाऊँगा, मैं कहीं गप मारूँगा, कहीं घूमाऊँगा, पर मैं इनके कॉस्ट पे कुछ भी नहीं करूँगा। तो मुझे इनके बीच में बैलेंस किया जा सकता है। जैसे डॉक्टरी में आप खपते जाओ बहुत ज़्यादा पैसे का, डॉक्टरी में बहुत पैसा है, आप जाइए तो आपको पैसा खींचता है, आपको लगता है और रुक जाओ तो और कुछ मिल जाएगा, शाम को भी हॉस्पिटल पहुंच जाओ सुबह की जगह तो मुझे और कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो आपको वो चीज़ों पर अपने आप पर, अपने लालच पर, लालच ना भी कहूँ तो अपने एक तमन्ना होती है ना, चलो यार कर लेते हैं इसको, तो वो मैं नहीं करता। मैं डॉक्टरी में मैंने अपनी एक सीमा रखी, मैं इतने घंटे ये काम करूँगा, और मरीजों, मैंने डॉक्टरों के बीच में देखा है कि वो ऐसे घबराए रहते हैं जैसे ये मरीज आज चला गया तो कल नहीं आएगा मेरे पास। तो मैं कहता हूँ अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे पास आएगा, अगर मैं उसे 10 दिन बाद कह रहा हूँ कि यार अभी समय नहीं है तो मैं 10 दिन बाद देखूँगा, तो 10 दिन बाद आएगा, क्योंकि उसे

0: ज्ञान चतुर्वेदी को दिखाना है, तो मैंने हमेशा इनके कुछ समय बांध दिए, वो
1: जी
0: डिसिप्लिन चाहिए, वो आपका अनुशासन नहीं है तो आप बिखर जाएंगे। तो उस अनुशासन को साधना है तो बहुत कठिन, पर साधा जा सकता है, उसका उदाहरण मैं सामने हूँ आपके।
1: असंभव नहीं,
0: हाँ, यह असंभव नहीं है, ये साधा जा सकता है। शुरू मुझे लगता था जब डॉक्टरी में बहुत व्यस्त था कि लेखन कैसे साधेगा, पर शायद मैं जब डॉक्टरी में सबसे ज़्यादा व्यस्त था, 40 साल से लेके 40-45 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक मैं बहुत व्यस्त था डॉक्टरी में, तब मैंने सबसे ज़्यादा लिखा है। मेरे कॉलम चलते थे 7-8 जगह पे एक साथ, आप हर महीने में कम से कम 8 कॉलम लिखने पड़ते थे, अपना उपन्यास भी लिख रहा था, इतने के बीच में डॉक्टरी बहुत कर रहा था, और आप मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मुझे उनका भी समय देना है, तो मैंने दूसरी जगह से बहुत काटा। मैं थोड़ा, इसे आप कहते हैं कि आप एंटी सोशल हैं शायद, आप तो मिलते ही नहीं हैं, आप अवॉइड कर जाते हैं लोगों से, मुझे लगा था ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए, कोई बुरा मान जाएगा मान जाने दीजिए, कि मैं उसके घर नहीं पहुंचा, फलाने फंक्शन में मत पहुंचने दीजिए,
1: वो मेरा
0: वो फंक्शन मेरे बिना भी हो जाएगा, शादी थोड़ी और मेरी
1: जी।
0: कि दूल्हा नहीं आया, किसी ने बुलाया शादी में हम नहीं पहुंच पाए, किसी ने बुलाया बर्थडे में हम नहीं पहुंच पाए, कि मेरे लिए प्रायोरिटी अब तय करना, इन 3 के अलावा क्या टाइम बचा मेरे पास, तो ये सब तय करना पड़ता है। तो थोड़ा बदनाम हूँ इसलिए मैं कि शायद मैं उतने समय नहीं देता दोस्तों के साथ बैठने का, मुझे भी बहुत मज़ा आता है दोस्तों से गप मारने में बहुत मज़ा आता है, पर फिर आप चीज़ें देखते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपसे छूट रही है, तो प्रायोरिटी तय करना पड़ती है, आप प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती, कौन सी चीज़ आपको महत्वपूर्ण है। तो लेखन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या आप में मुमुक्षा है कि नहीं, एक होता है इच्छा,
1: बिल्कुल,
0: एक मुमुक्षा मतलब वो इच्छा कि ना किया तो मर जाएंगे, तो जब तक आपके अंदर वो मुमुक्षा है, मेरे पास लेखन, आज मैं 67 साल का हो गया आपके सामने बैठा हूँ, और मेरे अंदर अभी इतनी मुमुक्षा है लिखने की कि मेरे को अभी भी दोपहर में इतने घंटे ये चीज़ मेरी रह गई, ये करना है, ये इसके लिए मैं सुबह से तड़प जाता हूँ कि यार हॉस्पिटल से बैठूँगा, आप बैठते ही से मुझे उपन्यास का थोड़ा हिस्सा रह गया, लिखना है, तो ये मुमुक्षा फिर आपको दूसरी चीज़ों से बचाए रहती। तो आप अगर लिख रहे हो तो उसकी वो जानलेवा इच्छा तैयार करिए अपने अंदर, तब आप कुछ कर पाएंगे।
1: आपके पात्रों की अगर हम बात करें जो आप उपन्यास में चुनते हैं, अपने कथानक में चुनते हैं, तो उनका वास्तविक जीवन से कितना लेना देना रहता है, या फिर कल्पना के सहारे भी उनको चुनना पड़ता
0: नहीं,
1: है?
0: नहीं, कल्पना के सहारे कभी कोई चीज़ नहीं होती, पर कल्पना का हिस्सा पूरा होता है। हमने कहीं अभी एक जगह किसी ने ये प्रश्न एग्जैक्टली ऐसे कुछ आसपास पूछा था
1: जी,
0: कि वास्तविकता कितनी होती, कल्पना कितनी होती। अब जीवन, हम तो डॉक्टर हैं, हमें रोज़ नए पात्र मिलते हैं, हमारी सबसे बढ़िया बात है, हमारा धंधा इतना बढ़िया है कि हमें तो कहानियाँ मिलती ही हैं, हम पर मरीज विश्वास करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी बताते हैं जो दूसरों को शायद वो चीज़ नहीं होती, हमारे पास इतनी कहानियाँ रोज़ मिलती हैं, मैं रोज़ कहानियाँ 4-5 लेके निकलता हूँ हॉस्पिटल से जो किसी के पास नहीं होंगी, जो मुझे मिलती हैं, तो वो कहानियाँ हैं, वो पात्र हैं, पर अंततः आप उन पात्रों में जब खुद उतर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं परकाया, प्रवेश की कला,
1: बिल्कुल
0: एक अच्छे लेखक में होनी चाहिए। वो अगर एक सुअर की कहानी लिख रहा है तो उस सुअर की तरह पहले महसूस करे जो नाली में है, जिसके लिए नाली सर्वोत्तम जगह है, क्योंकि उसे उसी मज़ा आता है, तब फिर वो उसके आनंद और उसके कष्ट और उसकी चिंताओं पर लिख सकता है। मैंने चिड़ियों पे, गधे पर, शेर पर, ऐसे वाले व्यंग में बहुत लिखे भी जाते हैं, पर मैंने हमेशा वो महसूस करके लिखा है। और तो कई लोग कहते हैं आपने जो चूहिया पे लिखा तो वो कुछ अलग ही है जो दूसरे, क्यों, मैंने उसे चूहिया जैसा महसूस किया है,
1: बिल्कुल,
0: कि चूहिया जब बिल में जाती होगी तो वहाँ का अंधेरा, वहाँ की वो सारी चीज़ें, तो आप उसमें वो इमेजिनेशन जोड़ते हो, तो अंततः जो पात्र बनता है वो नहीं रह जाता जिसके आधार पे आपने वो पात्र सोचा
1: की थी।
0: उपन्यास में आप सोचते हो, बहुत से पात्र आपके जाने पहचाने हो सकते हैं, कल के दिन मैं आकाशवाणी पे कोई लिखूं और कोई कहानी लिखूं और उसमें मैं आपका सोचूं, तो मैं आप ही नहीं होंगे, वो कैरिकेचर, वो कहलाता है कैरिकेचर। अगर मैं आपको जो कहते हो लिख दूँ, आपकी दाढ़ी, आपके बाल, आपके ये पहने थे कपड़े, तो मैंने कैरिकेचर लिख दिया आपका, नहीं वो कैरिकेचर नहीं, मैं आपको लेके आपके ह्यूमन में, आप जो मानव हैं उसमें फिर उतर जाऊं और फिर मैं उसको एक नया पात्र बना दूं, एक केमिकल रिएक्शन है ये जिसमें दोनों तत्व तो फिर सेम नहीं रहते। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की, दोनों ने मिलकर पानी बना दिया, अब उसमें हाइड्रोजन मत खोजिए, उसमें ऑक्सीजन मत खोजिए, वो एक नई चीज़ बन गई। तो मेरे पात्र वो नई चीज़ हैं जो कल्पना में भी था, जो यथार्थ में भी था, दोनों को मिला के जो मैंने बनाया वो मेरा क्रिएशन है।

0: वो मेरा क्रिएशन है, तो ना तो पूरा कल्पना है और ना ही वो पूरा यथार्थ है। मिला के आप एक बड़ी रोचक सी चीज़ बनाते हो जो पाठक को अपने साथ ले जा सके, उस चरित्र में पाठक एक अपनापा महसूस करे उसके साथ और उसे जुड़ जाए, उसकी समस्याओं से, उसके आनंद से, उसके कष्ट से, उसकी करुणा से, उसकी चिंताओं से जुड़ जाए पाठक। उसके लिए ये सब करना पड़ता है आपको।
1: हम अगर जानना चाहें आपसे कि जो हमारे व्यंग्यकार हैं, नवोदित व्यंग्यकार हैं खासकर, वो अपने पहनेपन को अगर बढ़ाना चाहें तो दो चार कौन सी बातें आप उनसे
0: मैं
1: कहना
0: तीन
1: चाहेंगे?
0: चीजें कहना चाहूंगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें। एक तो कि आपके पूर्वजों ने जो लिखा, आप

0: चिंताओं से जुड़ जाए पाठक, उसके लिए ये सब करना पड़ता है।
1: हम अगर जानना चाहें आपसे कि जो हमारे व्यंग्यकार हैं, नवोदित व्यंग्यकार हैं खासकर, वो अपने पैनेपन को अगर बढ़ाना चाहें तो दो चार कौन सी बातें आप उनसे कहना
0: चाहेंगे?
1: मैं
0: तीन चीज़ें कहना चाहूँगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। एक तो कि आपके पूर्वजों ने जो लिखा, आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास पहले का लिखा बहुत सारा है, तो आपके पूर्वजों ने जो व्यंग में लिखा, परसाई ने, इवन भारतेंदु से शुरू करिए
1: जी,
0: भारतेंदु से शुरू करिए और नीचे आते जाइए, जो आपसे परवर्ती जो अच्छे लोग लिख गए हैं उसे पढ़िए
1: जी,
0: उसे पढ़िए, समझिए, गुनिए, अंदर उतारिए, समझने की कोशिश करिए कि परसाई अपनी मृत्यु के बाद भी आज क्यों इतने प्रासंगिक हैं, शरद जोशी आज क्यों प्रासंगिक है, रविन्द्रनाथ तैगी की रचनाएं पढ़ के आपको आज भी क्यों अच्छा लगता है, ये आप समझिए। तो आपने पढ़िए खूब, फिर जब आप अपनी विधा पढ़ लें तो ज़रूर से कविता भी पढ़िए, कहानी भी पढ़िए, तो एक तैयारी करिए। आप सीधे तो पीएचडी नहीं करते ना, एमए तक पहले आई से शुरू करके फिर आप ग्यारहवीं पढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, फिर एक दिन आप पीएचडी करते हैं। आप सीधे पीएचडी करना चाहते हैं, वो सारी आपकी समस्या है, आप सीधे उस जगह नहीं पहुंच सकते, तो आपके पास एक बहुत बड़ा, इन लोगों के पास तो परसाई के पास कोई बड़ा ये चीज़ नहीं थी, पहले थे कुछ लेखक पर उन्होंने एक अपना नया रास्ता आप तब बना पाएंगे जब पुराने रास्ते से परिचित होंगे। तो आप पहला तो ये करिए, पढ़िए खूब, पढ़िए, गुनिए, समझिए, सीखिए। दूसरा, जल्दबाजी मत पढ़िए, जैसा अपन ने पहले बात कर चुके हैं, आप जल्दी कुछ नहीं मिलेगा आपको, और जो जल्दी मिलेगा वो या तो आपकी चालाकी से प्राप्त होगा या दूसरे ने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको देने की कोशिश की है, तो वो मत करिए। ना तो दूसरों से बेवकूफ़ बनिए, ना खुद को बेवकूफ़ बनाइए ऐसे काम करके। मैंने देखा है लोग बहुत कोशिशें करके कुछ पुरस्कार प्राप्त करते हैं और उनका जब वक्तव्य देते हैं पुरस्कार के समय, वो शर्मिंदगी हद तक ऐसा होता है कि हम तो, अरे हमें जने कहाँ से मिल गया, मुझे तो जब पता चला सुबह कि मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया तो मैं चकित रह गया, अरे कैसा, जिसके लिए तुम 3 महीने से चक्कर काट रहे थे बड़े बड़े लोगों के, साहब हमको ये दिलवा दीजिए, हमको ये दिलवा दीजिए, आज आप ऐसी बातें करते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को धोखा देने लगते हैं। आप जो खुद धोखे वाला वक्तव्य दे रहे हो उस पर खुद भरोसा करने लगते हैं, आप ख़त्म हो जाते हैं, तो ये मत करिए। लंबे, जैसा मैंने बताया, साहित्यिक लंबा खेल
1: है,
0: लंबा खेल है, और आप अच्छा लिखोगे, आप ईमानदारी लिखोगे, आप पहुंचोगे ही वहां तक। तो दूसरी विधाएं पढ़िए, ये करिए, और आप एक और परसाई बनने की कोशिश मत करिए, एक और ज्ञान चतुर्वेदी बनने की कोशिश मत करिए। आपका नाम जो भी हो, मनोज नाम है, तो एक और मनोज बनने की कोशिश करिए। पर आप मनोज कितना अच्छा बन सकते थे वो अपने में खोजिए कि मैं कितना अच्छा लेखक बन सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ, अपनी जो संभावनाएं हैं, जो अपनी प्रतिभा है, उसको जितना ज़्यादा आप ऊंचाई तक पहुँचा सके वहाँ पहुँचाइए।
1: उर्दू के जो प्रसिद्ध शायर हैं निदा फाजली, वो कहकर गए थे कि जब आप 1000 पंक्तियाँ पढ़ लें तब एक पंक्ति
0: लिखें,
1: तो
0: तब लिखें।
1: ऐसा कोई मूल मंत्र क्या आपका भी था?
0: नहीं, हमारा मूल मंत्र देखिए कुछ भी नहीं, मूल मंत्र मेरा मूल मंत्र हमेशा ये रहा है 1000 पंक्ति, ऐसा कोई मैंने हिसाब गणित के हिसाब से कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो चीज़ें अच्छी मिली आज की तारीख में भी, बिल्कुल नए बच्चों ने जो उपन्यास लिखे हैं कुछ, उनको पढ़ के अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उनसे फ़ोन पे बात करके उन्हें, तो आप नया अभी भी पढ़ रहे, आप में ललक है नया जानने की, क्या नया हो रहा है, क्या लिख गए हैं, कोई पुरानी किताब, किसी दूसरी भाषा की किताब पढ़ना बहुत चाहिए, पढ़ने से ही आप तैयार होते हो। डॉक्टरी में भी अभी तक पढ़ता हूँ, मैं डॉक्टर इसलिए अच्छा हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने डिग्री तो भाई साहब करीब करीब 35 साल पहले 78 में मैं स्पेशलिस्ट बन के निकला, बहुत पानी बह चुका तब से, दुनिया बदल गई, डॉक्टरी बदल गई, वो दवाइयाँ बदल गई, वो जांचें जो मैंने पढ़ी नहीं, सीटी स्कैन हमारे समय नहीं था, हमने सीटी स्कैन के बारे में कुछ नहीं जाना। अगर आप नए से नहीं सीखते तो आप बहुत ख़राब डॉक्टर हो जाएंगे, आप क्वालिफाइड क्वैक होंगे, डिग्री शुदा झोला साहब डॉक्टर, क्यों मैं भूल चुका, जिस समय में रह रहा हूँ उसमें वो ज्ञान तो बचा ही नहीं जिसने मुझे डिग्री दी थी, उस ज्ञान में मैंने अगर कुछ और नहीं जोड़ा तो। ऐसे ही लिखने का है, मैं अपना वो जो मैं 30 साल पहले लिख रहा था, अब मैं सोचूं कि यार नया कुछ नहीं करना है, यही चलता है, जैसे मंच की कविता वाले कहते हैं यही कविता चलती है, तो एक ही कविता पढ़ते रहते हैं वो जिंदगी भर, पैसे मिल जाते हैं पर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो नया प्रयोग करने, नई चीज़ें लिखने, ये सब सबको करना चाहिए। नए लेखकों को तो खास कर गांठ बांधना है कि हम भैया डरेंगे नहीं कोई नया प्रयोग करने से, पर प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: पर मुझे लगता है कि ये बात ऐसी ही कही जा सकती है, तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा। मैंने अभी पागलखाना उपन्यास

0: लिखा था और वो मेरे सारे उपन्यासों से बिल्कुल अलग था। मुझे मालूम था कि ये उपन्यास जो मेरे पहले के खिलंदड़े भाषा में पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें धक्का पहुँचेगा, ये क्या हो गया। पर धीरे धीरे धीरे उसने वो स्थान बनाया और मुख्य धारा में तो वो इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इन दिनों
1: जी
0: कि वो माना जाता है कि शायद मेरा वो सबसे अच्छा काम है। लोग ये कहते हैं कि ये दिस द बेस्ट वर्क जो आपने आज तक किया। वो लिखते समय मैं संशय में शुरू में रहा, फिर मैंने तय किया नहीं ये विषय ऐसा ही लिखा जाएगा भाई साहब, इसको नहीं बदला जा सकता। तो आप 62-63 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था वो, तो 63 साल की उम्र में अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने डरता नहीं हूँ, जिसकी एक जिसने अपनी एक स्टैंडिंग बना ली उसे लगता है यार ऐसा ना हो जाए लोग कहेंगे अब तो चुक गए, जब आप वो रिस्क मैं ले सकता हूँ तो आप तो अभी शुरू हो रहे हो, आपको क्या रिस्क से डरना, करो धीरे धीरे जगह बनेगी, करो ईमानदारी से करो, जो प्रयास करो ईमानदारी से करो और जीवन के प्रति ईमानदार रहो, अपने प्रति खासकर ईमानदार रहो। ये फंडामेंटल सत्य है किसी भी बड़े कलाकार के लिए। अपने लिए पहले ईमानदार नहीं होगे तो तुम दुनिया में कुछ नहीं प्राप्त कर पाओ। तो मैं उसी चिंता और उसी पूरे औजारों के साथ उतने ही बेचैनी के साथ मैं आज भी लिखता हूँ।
1: बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी कि जो बेचैनी और जो जुनून आपके अंदर लिखने के लिए अभी भी है 40 साल के बाद भी, वो आपकी बातों को सुनकर एक नवोदित व्यंग्यकार एक नवोदित लेखक के अंदर हमारे श्रोताओं के अंदर पनपेगी और वो भी आपके साथ साथ ऐसे प्रभावशाली उपन्यास ऐसे लेखन समाज को दे पाएंगे।
0: बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे लोग आगे, आपसे बड़े लेखक हमेशा आएंगे, सब मानते हैं और वो हमारी दुआ है कि हमसे अच्छा व्यंग लिखने वाले हमसे अच्छे उपन्यासकार इस नई पीढ़ी में आएँ और मुझको भी अब आनंद आए और आपको भी वो आनंद आए, यही दुआ है। आपके साथ बैठ के हम दोनों ये दुआ कर सकते हैं नई पीढ़ी के लिए,
1: आकाशवाणी आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से DTH के ऑडियो चैनल पर किया जा रहा है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं धारावाहिक जादूगर को सलाम, आज प्रस्तुत है इसकी 10वीं कड़ी।
3: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। धारावाहिक की 10वीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की ही एक कहानी, गुप्त धन का नाट्य रूपांतरण। बाबू हरिदास का ईंटों का भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और भट्टों से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों में सजाते। एक आदमी भट्टे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होतीं उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिला करती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से दबे हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य होता था। सबसे करुण दशा एक छोटे से लड़के की थी, जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दूनी ईंटें उठाता और सारे दिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता था। लेकिन मगन सिंह को अपने काम से ही काम था। उसमें लड़कपन की चंचलता नहीं थी, ना शरारत और ना ही होशियारी। यहां तक कि उसके होठों पर कभी हंसी भी नहीं आती थी। बाबू हरिदास को

0: उसकी दशा पर बहुत दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दे। कभी कभी उसे वो कुछ खाने को भी दे देते थे। एक दिन उन्होंने मगन सिंह को अपने पास बुलाकर बैठाया और उसका समाचार पूछने लगे।
1: मगन सिंह बेटा, जरा अपने और अपने परिवार के बारे में तो कुछ बताओ।
2: जी बाबूजी, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ।
1: अच्छा,
2: वही हमारा पुराना सा घर है जिसमें मेरी बूढ़ी माँ के सिवा और कोई नहीं है। माता एक पुराने रोग से पीड़ित हैं, इसलिए घर का सारा काम मेरे जिम्मे में है। बाबूजी, शाम को काम से वापस लौटकर मैं खुद ही रोटियां बनाता हूँ, तब जाकर हम माँ बेटे को खाना नसीब होता है। हम ठाकुर लोग हैं और किसी समय हमारा खानदान धन संपन्न था और शकर का कारखाना चलता था, कुछ जमीन भी थी, पर आजकल रोटियों के लाले हैं।
1: गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते?
2: वाह, उनका वश चले तो मुझे मार ही डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं।
1: तुम्हारा तो पुराना घर है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुम्हें कुछ बताया नहीं?
2: नहीं बाबूजी, कुछ नहीं बताया। अगर रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती।
1: मगन, आज से तुम्हारे बुरे दिन दूर हुए, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज से तुम मजदूर नहीं हो, मेरे खास नौकरों में से हो। आज से कौड़ियां बांटने का काम तुम करोगे।
2: जी बाबूजी, आपको पाकर मेरा जीवन सफल हो गया।
1: मुंशी जी।
3: आया हुजूर।
1: मुंशी जी, आज से ये कौड़ियां बांटने का काम करेगा, इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखा दीजिए।
3: माँ, माँ।
4: हाँ बेटा, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है।
3: हाँ माँ, आज से हमारे बुरे दिन दूर हुए। माँ, जहाँ मैं रोजाना काम पर जाता हूँ वही बाबूजी के यहाँ, हाँ वहाँ आज बाबूजी ने मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने बहुत सारी बातें की और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा।
4: अच्छा, मेरे बारे में पूछा?
3: उन्होंने मुझे काम में तरक्की भी दे दी है। अब मैं मजदूरी नहीं करूँगा, मैं उनका खास नौकर बन गया हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने की बात भी की है। माँ, और फिर तुम भी जल्दी अच्छी हो जाओगी माँ।
4: अच्छा मेरे लाल, जीते रहो मेरे बेटे, जुग जुग जियो मेरे बच्चे। हे भगवान, तूने मेरे अंधियारे घर में रोशनी की एक नई किरण भेजी है, जिन्होंने मेरे लाल को ये खुशी दी है। तुम उनका भी घर खुशियों से भर देना। हे भगवान, खुशियों से भर देना। बेटा मगन, वहाँ पर मन लगाकर काम करना, अच्छा? उन्हें किसी भी शिकायत का मौका मत देना।
3: हाँ माँ, ऐसा ही होगा।
0: अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यनिष्ठ और चतुर लड़का था। मगन सिंह काम पर हमेशा समय से पहुंचता और कभी भी छुट्टी नहीं करता था। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी वो कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, भट्टे में पानी भरा हुआ था, काम धंधा बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से काम पर नहीं पहुंचा था। हरिदास को चिंता हुई, कई आदमियों से पूछताछ भी की पर कुछ पता नहीं चला। 4th दिन पूछते पूछते मगन सिंह के वो घर जा पहुंचे। घर क्या था, घर तो जैसे खंडहर बन चुका था, लेकिन परिवार की पुरानी संपन्नता का एहसास करवाता था।
1: क्या बात है, 3 दिन हो गए, मगन सिंह का कुछ पता ही नहीं। कहीं बीमार तो नहीं हो गया या कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? मगन सिंह, बेटा मगन सिंह।

0: सिंह। अरे कोई घर में है क्या?
1: अरे बाबूजी आप आइए, बाबूजी आइए आइए।
0: अरे मगन सिंह कई दिन से आया क्यों नहीं? माताजी का क्या हाल है?
2: बाबूजी अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं नहीं बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कहा पर मैं संकोच के मारे आपके पास नहीं आ पाया। अब आप सौभाग्य से हमारे घर आ गए हैं तो जरा चलकर उन्हें भी देख लीजिए, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी।
3: सारे घर में दरिद्रता का वास था, केवल दो कोठरियां गुजर करने लायक थीं। मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बुलाया। हरिदास भीतर गए तो देखा कि लकड़ी के तख्त पर पड़ी एक वृद्धा कराह रही है।
4: आह, बड़ी दया की आपने मालिक, आपके दर्शनों की अभिलाषा थी मुझे। मेरे अनाथ बच्चे के अब आप ही नाथ हैं, जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है। बस वही निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। एक समय हुआ करता था जब हमारे घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता था, मगर बुरे दिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने उसी दिन के लिए कुछ खजाना जमीन में छुपा दिया था। मालिक उसके कागज पत्र बड़े यत्न से संभाल कर रखे थे मैंने, पर बहुत दिनों से उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मालिक। नहीं तो आज हमारी इतनी बुरी दशा नहीं होती। मालिक आज 3 दिन हुए मुझे वो कागज पत्र अचानक खुद ही रद्दी के कागजों में मिल गए। बस तब से उन्हें छिपा कर रख लिया है, उसमें सब बातें लिखी हैं। उसी से खजाने के ठिकाने का भी पता चलेगा। मालिक अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा मालिक। बस यही सब कहने को आपको बार बार बुलाती रही। आपके सिवा मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा, संसार से विश्वास उठ गया है मालिक। किसी की नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
3: हरिदास ने उस कागज का जिक्र किसी से नहीं किया। हरिदास की नियत बिगड़ गई। कागज को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 कदम दूर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर ना हो। काम मुश्किल था, नाम पर धब्बा लगने की अधिक आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की तरह पाला, उसी के साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, परंतु अंत में लालच ने विवेक को हरा दिया।
0: मैंने कभी धन का परित्याग नहीं किया और न करूंगा। क्या कोई प्राणी ऐसा भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं, देवता है। मैं तो सिर्फ एक मनुष्य हूं, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने की कोई इच्छा नहीं है।
3: मन को समझाना बच्चे को जैसे फुसलाना है। हरिदास शाम को सैर करने के लिए घर से निकल जाता। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर जा बैठता और एक कुदाली से उसे खोदता।

0: चबूतरा लंबा चौड़ा था। उसे खोदते खोदते एक महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय ना हुई थी। हरिदास एक विचारशील पुरुष थे। आत्मा बार बार उन्हें धिक्कारती, निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर कभी नहीं जाऊंगा। पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता, बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। और इसी तरह दूसरा महीना भी बीत गया।
1: आज चबूतरा खोद डालूंगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, पर कोई चिंता की बात नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हो जाएगा कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना न मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा है, और धोखे के सिवाय कुछ नहीं। कहीं सचमुच तहखाना न मिला तो मुफ्त में ही उल्लू बनूंगा। पर लेकिन नहीं, कुदाली खट खट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चमक है। तहखाना मिल गया, तहखाना मिल गया। ओह, ये सिर में दर्द कैसा है? शायद थकान के कारण होगा। नहीं, ये बीती रात नींद पूरा ना होने से है शायद।
0: ये दर्द और थकान नींद से ना गई। रात को ही हरिदास को जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे, पर किसी दवा से भी फायदा नहीं हुआ।
1: कहीं ये मेरे लालच का दंड तो नहीं है? जी में ऐसा आता है कि मगन सिंह का कागज दे दूं और माफी मांग लूं, पर भेद खुल गया तो नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। अरे,
0: और इस प्रकार हरिदास गुजर गए। हरिदास की मृत्यु के बाद वो कागज उनके बेटे प्रभुदास के हाथ लगा।
2: ये कागज मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। पिताजी कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर संदेह किया ही नहीं जा सकता। जब उन्होंने इस काम को गलत नहीं समझा तो मैं ही ऐसा क्यों सोचूं? कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख का जीवन बीते। हाँ,
0: इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही प्रभुदास घर से बाहर निकला। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही हो। तहखाना संगीन था, पुराने जमाने का मसाला था। कुल्हाड़ी लौट लौट आती थी, लेकिन चट्टान टस से मस ना हुई। किसी से सहायता मिलने की सूरत ही नहीं थी। सारा काम स्वयं ही करना था। समय बीतता रहा, यहां तक कि फिर वही अमावस्या की काली रात आ गई। प्रभुदास को जोर लगाते लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य की रेखाओं की तरह अटल थीं।
2: आज इस समस्या का हल करना आवश्यक है। मेरे मन

0: में न रह जाए। क्या करूं क्या करूं, बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। हाँ, क्यों ना बारूद से उड़ा डालूं। कल पर काम छोड़ने का अब तो कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, बाजार जाकर अभी बारूद लाना होगा। अरे, सब दुकानें बंद हो चुकी, रात भी काफी हो चुकी है। हाँ, वो आतिशबाजी की दुकान अभी खुली है। हाँ, शायद बारूद वहां मिल जाए, उसी से जाकर पूछता हूँ।
1: बारूद इस समय नहीं मिल सकता भाई, सरकारी हुकुम नहीं है। तुम कौन हो जी?
0: अरे, तुम्हें इससे क्या मतलब है?
1: लेकिन इस समय बारूद लेकर क्या करोगे भैया? कोई वारदात हो जाए तो? ना भैया ना, मैं मुफ्त में बंधा बंधा फिरूंगा, तुम्हें कौन पूछेगा?
0: अब तो हो जाएगा ना, क्यों?
1: ठीक है भैया, ले जाओ, अब लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कह देता हूँ। हाँ,
0: आखिरकार खजाना मिल ही गया। इसमें तो बहुत वजन है, अब क्या मैं इसे उठा पाऊंगा? लगता है 10 से 12 हजार मोहरे तो होंगी। कोशिश करता हूं। सच में जीवन बदल जाएगा, सब मेरे वश में होगा, फिर जो चाहे मैं कर सकूंगा। लेकिन लेकिन कहां छुपाऊं ये खजाना? हाँ, ये जगह सुरक्षित है, अपने शयन कक्ष में अपनी आंखों के सामने रखता हूं। यही ठीक रहेगा। चलो भैया, ये भी हो गया, कुछ देर अब आराम करूं। ये क्या मेरे दिल में बेचैनी सी कैसी हो रही है? ये कैसा भीषण दर्द हो रहा है? अरे, ऐसा तो पहले कभी महसूस ही नहीं किया। अरे, ये तो मेरे दोनों कंधे भी जकड़े जाते हैं, अब सांसें भी रुकी जाती हैं। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे तो हाथ पैर बोझिल हो चले। क्या ये सब थकान की वजह से? दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, मेरी सांसें बंद हो जाती हैं। माँ, अरे कोई है? माँ,
2: प्रभु प्रभुदास बेटा, क्या हो गया?
0: माँ, मेरा सिर दर्द से फटा जाता है, सांसें रुकी जा रही है, पता नहीं अचानक क्या हुआ माँ।
2: अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मीना, ओ मीना, ठहरो, मैं भी वैद्य जी को बुलाती हूँ।
0: हाँ माँ।
3: सारी रात मीना और माँ प्रभुदास के सिरहाने बैठी रहीं, वैद्य जी उपचार करते रहे, परंतु सब बेकार। बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं लेता था, और इसी में सारी रात निकल गई।
4: भट्टे पर चलिएगा हुजूर, गाड़ी तैयार है।
0: नहीं, मैं आज नहीं चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है। मगन सिंह, एक काम करो, तुम भी मत जाओ आज।
4: सरकार, डॉक्टर साहब को बुला लाता हूं, आप आराम कीजिए।
0: कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं मगन सिंह, कुछ नहीं।

0: सवेरे के 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा आंखों के सामने तैर गई। ऐसा जान पड़ता था मानो वही शोक घटना उन्हीं आंखों के सामने दोबारा घटित होने जा रही हो। मां देवताओं की मनोतियां मना रही थी और यही हाल प्रभुदास की धर्मपत्नी मीना का था। परंतु प्रभुदास की आंखें उसी संदूक की ओर लगी हुई थीं।
1: हे भगवान, मेरे बेटे के जीवन की रक्षा करो, इसे क्या होगा? हे भगवान, हे प्रभु, मेरी सुहाग की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए।
2: हाँ भैया, पिता और पुत्र दोनों ही भले लोग थे।
3: हाँ भैया, सही कहते हो, पर एक बात समझ में नहीं आती। जैसा बाबू हरिदास के साथ हुआ, ठीक वैसा का वैसा प्रभुदास के साथ हो रहा है।
4: हाँ भैया, ये कैसी दैवी विपत्ति इनके घर पर आ गई।
5: लाला जी, दोनों बाप बेटे भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। ईश्वर ही अब इस घर का मालिक है।
0: प्रभु दास की मृत्यु प्राय आंखों में आंसू थे, पर आंखें अभी भी निराशा पूर्ण भाव से संदूक पर ही टिकी थीं। प्रभु दास के हाथ पांव सर्द हो चुके थे, मुख निस्तेज हो चुका था, हृदय गति बंद हो चली थी, सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, लेकिन आंखें थीं जो अभी भी संदूक से नहीं हटती थीं। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण और सबसे भयंकर दृश्य है। मगन सिंह के लिए माता की मृत्यु के उपरांत ये इतने कम समय में तीसरा अवसर था।
6: मालिक, मालिक, ये आपको क्या हो गया मेरे अन्नदाता? मालिक,
7: मगन सिंह की ओर देखता हूं तो सारे शरीर में मानो जीवन का संचार हो जाता है, और संदूक की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। मगन सिंह, इधर आओ
6: मालिक,
7: इधर
6: मालिक।
7: ये संदूक तुम्हारे पुरखों का खजाना है, तुम्हारी अमानत है। हाँ मगन सिंह, ये तुम्हारी अमानत है। मुझे और पिताजी को क्षमा कर देना, पिताजी को और मुझे क्षमा कर देना, चाहता हूँ।
6: मालिक, मालिक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 10वीं कड़ी गुप्त धन। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे ऋषिकेश शर्मा, गौहर परवेज, शिमाइला, साहिल सैयद, मोहम्मद अखलाक, कुणाल राय, साक्षी राय, कनिका शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, मनहा प्रत्यक्षा, माधवा अनंत, हीरेंद्र झा और विकास बाबू शर्मा। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़। साथ ही डीटीएच ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। शाम के 5 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख रेल मार्गों की क्षमता को बढ़ाना और भीड़भाड़ कम करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश भर में आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है।

पढ़ाई सभी के लिए जरूरी है, लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं होता, और ये कोई मॉडर्न विचार नहीं है। ये विचार रविंद्रनाथ टैगोर

टैगोर के हैं जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारें मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के महान कवि, लेखक और चिंतक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन शिक्षा के क्षेत्र में है। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार शिक्षा बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का विकास करनी चाहिए, उसकी बुद्धि, भावनाओं, कल्पना शक्ति और शरीर का। टैगोर जी कहते थे कि बच्चा प्रकृति से सबसे ज्यादा सीखता है, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां कक्षाएं खुले आसमान के नीचे पेड़ों की छाया में होती थी। बच्चे वहां गाते, खेलते, नाचते और प्रकृति को निहारते हुए सीखते थे। वो मानते थे कि जब बच्चा खुश और स्वतंत्र होता है, तभी उसमें असली सीखने की इच्छा जागती है। उन्होंने पुरानी रट्टा मार शिक्षा की बहुत आलोचना की। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को कारखाने की उपमा दी, जहां बच्चे मशीन की तरह तैयार होते हैं। टैगोर चाहते थे कि शिक्षा बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ाए, इसलिए उन्होंने संगीत, कला, नृत्य, हस्तकला और साहित्य को शिक्षा का अहम हिस्सा बनाया। टैगोर के अनुसार शिक्षक बच्चे का मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए, न कि डराने वाला। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे को संवेदनशील, स्वतंत्र और अच्छा इंसान बनाना है। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां भारत और विदेशों की संस्कृतियों का सुंदर मेल हो और पूरा विश्व एक परिवार बनकर रहे। आज के समय में भी टैगोर का शिक्षा विचार बहुत प्रासंगिक है। हमारे स्कूलों में बच्चे हैवी बैग और टेंशन लेकर के जाते हैं। टैगोर हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का मतलब बच्चे को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना, उसकी जिज्ञासा को जगाए रखना और प्रकृति से जोड़ना है। टैगोर का मानना था कि सच्ची शिक्षा वो है जो मनुष्य को पूर्ण बनाती है, उसे स्वतंत्र सोचने की शक्ति देती है, पूरे विश्व के प्रति प्रेम सिखाती है और संवेदनशील बनाती है। इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं के और सलीम मर्चेंट की रूहानी आवाज में आशाओं से भरा ये गीत।

दोस्तों, अभी थोड़े समय पहले 10th 12th का रिजल्ट आया और मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप दी गई। इसी तरह

0: राज्य और केंद्र सरकार स्टूडेंट्स की पढ़ाई ना रुके और प्रोत्साहन के लिए उन्हें हमेशा सहायता राशि देती हैं। ऐसी ही भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम यशस्वी। इस योजना के बारे में और जानते हैं सिपाली मिश्रा से।
1: नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया मतलब प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना फॉर वाइब्रेंट इंडिया के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। यह योजना उन मेधावी छात्रों के लिए है जो ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति समुदाय से आते हैं। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के होनहार बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और देश के विकास में अपना योगदान दें। सरकार चाहती है कि कोई भी योग्य छात्र पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर न हो। पीएमएसएसवी एक छात्र योजना है जिसमें कई छोटी योजनाएं शामिल हैं, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई के लिए, टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई के लिए, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना इसमें शामिल है। छात्रवृत्ति की राशि कक्षा 9वीं के छात्रों को 75,000 प्रति वर्ष मिलती है और कक्षा 11वीं के छात्रों को 1,25,000 प्रति वर्ष मिलती है। यह राशि ट्यूशन फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हॉस्टल फीस और अन्य पढ़ाई संबंधी खर्चों के लिए दी जाती है। टॉप क्लास एजुकेशन में और भी ज्यादा सहायता मिल सकती है, लेकिन बात यह भी है कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो। इसलिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी ये है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी वर्ग से होना चाहिए, परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, स्टूडेंट कक्षा 9वीं या 11वीं में सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहा हो, लेकिन मेरिट के आधार पर चयन होता है। पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था, अब कई जगह पिछले क्लास के मार्क्स 60% या उससे ज्यादा के आधार पर चयन होता है। लेकिन आवेदन कैसे करें? तो दोस्तों, आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है। छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड और पिछले क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में या आसपास कोई योग्य छात्र है तो इस योजना का लाभ जरूर दिलाएं। इसी के साथ मैं सिपाली मिश्रा विदा चाहूंगी। धन्यवाद
0: दोस्तों। अभी आप सिपाली मिश्रा को सुन पा रहे थे जिन्होंने आपको योजना के बारे में बहुत जरूरी जानकारी दी। लेकिन ये योजना सिर्फ पैसा देने की नहीं है दोस्तों, ये योजना उन बच्चों को आत्मविश्वास देती है जो मेहनती हैं लेकिन संसाधनों की कमी से पीछे रह जाते हैं। इससे स्कूल ड्रॉप आउट दर कम होगी, लड़कियों की शिक्षा बढ़ेगी और देश में कुशल युवा तैयार होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा योग्य छात्र है तो उसे इस योजना का लाभ जरूर दिलवाएं, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो गरीबी और पिछड़ेपन को मिटा सकता है। सरकार ने संसाधन दिए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही तरीके से उपयोग करें। पीएम यशस्वी योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जो न सिर्फ व्यक्तिगत विकास करता है बल्कि पूरे देश को वाइब्रेंट इंडिया बनाने में मदद करता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि अब किसी की पढ़ाई रुके नहीं, चलती रहे। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ए आर रहमान और श्रीनिवास की मिली जुली आवाज में ये गीत।

0: दोस्तों, क्या आपने कभी फूल के बर्तनों के बारे में सुना है? कई लोगों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बता दें कि फूल के बर्तन फूलों से नहीं बनते। मतलब ये किसी फ्लावर से बने हुए बर्तन नहीं होते, ये बर्तन धातुओं से बनते हैं। तो हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी विरासत में हम आपको बताएंगे फूल के बर्तनों के विषय में, जो कि आज फिर से चलन में है। आज बीमारियां बढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने पीतल के बर्तनों में खाना बनाना फिर से चालू कर दिया है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग फिर से बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। इसी तरह से फूल के बर्तन भी हैं, जो अभी से कुछ समय पहले तक सिर्फ परंपरा के तौर पर शादियों या फिर शुभ मांगलिक कामों में ही इस्तेमाल किए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के सतना जिले की उचहरा तहसील कांसे के बर्तन बनाने को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ से कांसे, पीतल, फूल धातु के बर्तन कई राज्यों के साथ विदेश तक जाते हैं। इन बर्तनों में हांडा, बटुई, बटुआ, लोटा, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच सभी शामिल हैं। ज्यादातर इन बर्तनों का उपयोग पूजा पाठ, शादी ब्याह जैसे शुभ काम और घरेलू उपयोग में किया जाता है। पूर्वजों के जमाने में ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों में लोगों के घरों में यही बर्तन पाए जाते थे। वहीं इन विरासत को आगे बढ़ाने का काम उचहरा तहसील के बर्तन बनाने वाले आज भी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ जानकार बताते हैं कि इन बर्तनों में खान पान करने से कई प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ये फूल के धातु बनती कैसे है, आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों, फूल टिन और लेड की मिश्र धातु है, पर इसमें कभी कभी तांबा या पीतल भी मिला रहता है। ये धातु उजली और स्वच्छ चांदी के रंग की होती है और इसमें रखने से दही या खट्टी चीजें नहीं बिगड़ती। भारत, चीन, मिस्र और यूनान जैसे देशों को फूल और कस्कुट जैसी धातुओं का ज्ञान बहुत पुराने समय से है, और प्राचीन खंडहरों की खुदाई में इनके पात्र, हथियार और मूर्तियां भी पाई गई हैं। पश्चिमी देशों में फूल से मिलती जुलती मिश्र धातु को प्यूटर कहते हैं। एक समय फूल के पात्रों का उपयोग प्रतिष्ठा सूचक समझा जाता था और इनका निर्माण अनेक देशों और नगरों में होता था। भारत में फूल का अस्तित्व पीतल से पुराना है। यहाँ इसका उत्पादन व्यापक रूप से होता था, पर आज स्टेनलेस स्टील के बनने के कारण इसका उत्पादन बहुत कम हो गया है और दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। गांवों में भी फूल के बर्तनों का विशेष प्रचलन है और भारत के अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और बंगाल में इसका उत्पादन होता है। अच्छा फूल बेधा कहलाता है। साधारण फूल में चार भाग तांबा और एक भाग टिन होता है, लेकिन बेधा फूल में 73 भाग तांबा और 27 भाग टिन का होता है और कुछ चांदी भी पड़ती है। ये धातु बहुत खड़ी होती है और चोट लगने पर चट से टूट जाती है। इसके लोटे, कटोरे, गिलास, बहुत से बर्तन बनते हैं। फूल कांसे से बहुत मिलता जुलता है, पर कांसे से इसमें ये भेद है कि कांसे में तांबे के साथ जस्ते का मेल रहता है और उसमें खट्टी चीजें बिगड़ जाती हैं। फूल में 80% तांबा और 20% टिन रहता है। धातुओं के विभिन्न मात्राओं के कारण इनके रंग और गुणों में भी विभिन्नता पाई जाती है। नीली आभा लिए ये सफेद होता है। प्राचीन काल में गिरिजा घरों के घंटे इसी के बनते थे। बाद में और भी सामान बनने लगे। दोस्तों, 17वीं और 18वीं शताब्दी में तो इसका उपयोग बहुत व्यापक हो गया था और उस समय या उससे पहले के बने अनेक सादे और सुंदर चित्रित प्याले, कलश, गिलास, सुराही, फ्लावर पॉट और थाल जैसे भी कई सामान पाए गए हैं। वहीं अगर हम कस्कुट की बात करें तो कस्कुट तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। कस्कुट के सामान भी वैसे ही बनते हैं जैसे फूल और पीतल के। दोस्तों, मध्य प्रदेश के फूल के बर्तनों को GI टैग भी मिला है। तो हमारी विरासत में आज इतना ही, और अब आपको सुनवाते हैं ऋचा शर्मा, महालक्ष्मी, वैशाली और शोमा की खूबसूरत आवाज में ये गीत।
1: डुम डुम डुमक कडम डम डमक कडम डुम डुमक कडम डुम डुम डुम डुमक कडम डम डमक कडम डुम डुमक कडम डुम।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है छोटे से अंतराल का।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: 10 लाख की लॉटरी, मुझे
5: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
4: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह, दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार

0: बनिए, सतर्क रहिए।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
0: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
4: फसा।
0: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा 8 मई 2026 को आयोजित हीट वेव डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यशाला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
3: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट। मैं हूँ जूही राव। हीट वेव डिजास्टर मैनेजमेंट इस विषय पर आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा आयोजित की गई एक दिवसीय कार्यशाला के संबंध में यह रिपोर्ट प्रस्तुत है। श्रोताओं, वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश में लू यानी हीट वेव का दौर जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संस्थान यूनिसेफ मध्य प्रदेश के साथ साझेदारी अंतर्गत विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ में लू आपदा प्रबंधन यानी हीट वेव डिजास्टर मैनेजमेंट विषय कार्यशाला का आयोजन कल 8 मई को आपदा प्रबंधन संस्थान के सभा कक्ष में किया गया। इसके बारे में अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं संयुक्त संचालक आपदा प्रबंधन संस्थान डॉक्टर जॉर्ज वी जोसेफ।
4: आज आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल और बाकी हमारा जितना भी पार्टनर्स है उनके साथ मिलके हमने एक वर्कशॉप हीट वेव के ऊपर ऑर्गेनाइज किया है। उसका मेन उद्देश्य है ये हीट वेव के बारे में लोगों को बताना है। वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट का ऑफिसेस है, NGO से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सबको इसके बारे में बताना है कैसे मैनेज करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। और इस संदर्भ में हमने जो अवेयरनेस का रूप से भी और साथ साथ जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स है, ये सारे इश्यूज़ के बारे में बात किया। लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स जो डिपार्टमेंट से, NGO से, ये सब इसमें जोड़ा है। और हमने IMD और हमारा जो SDMA है, यूनिसेफ है, रोटरी क्लब है, उनका सब साथ मिल के हमने ये प्रोग्राम किया है।
5: सर, कुछ खास बातें जो निकल के आई हूँ इस वर्कशॉप में?
4: इसमें बेसिकली जो हीट वेव में हमको क्या करना क्या नहीं करना है, स्पेशली सफिशिएंट मात्रा में पीने का और बहुत धूप में नहीं बाहर निकलने का, और स्पेशली हमारे जो सबसे संवेदनशील लोग हैं जैसे बच्चा है, बुजुर्ग है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो ओपन एरिया में जो काम करने वाला हमारा एग्रीकल्चर लेबरर्स है, जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो काम करने वाले, उन सबको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए।

0: ताकि इस लू से वो प्रभावित ना हो।
1: सर, हीट वेव जो है वो डिजास्टर कब बन जाता है?
0: हीट वेव जब ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होता है और उसमें कैशुअलिटी है, इंजरी है, सब ज़्यादा होता है, तब ये डिजास्टर का रूप लेता है। हीट वेव एक हजार्ड है, जब जो संवेदनशील लोग है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है तब ये एक डिजास्टर का रूप लेता है। एक्चुअली आपदा प्रबंधन सबका बिजनेस है। हमारा देश में आपदा प्रबंधन के लिए अलग अलग प्राधिकरण बनाया हुआ है। राष्ट्रीय लेवल में राष्ट्रीय प्राधिकरण है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व में है, और राज्य का लेवल में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है सीएम साहब का नेतृत्व में, और सिमिलरली जिला लेवल में एक जिला प्राधिकरण है जो कलेक्टर का नेतृत्व में, और स्थानीय लेवल में जैसा ग्राम पंचायत है, नगर पालिका लेवल है, उसमें स्थानीय प्राधिकरण के, तो उनका काम है जो ये अलग अलग डिजास्टर का प्रिकॉशन निवारण और इवन पूर्व तैयारी और अनुक्रिया इफेक्टिवली करने का। तो हमारे देश में ये आपदा प्रबंधन का एक्ट बनाया हुआ, अधिनियम बनाया हुआ है, उसका अंतर्गत अलग अलग एजेंसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, तो वो सारा एजेंसीज भी हमने कोशिश किया इसमें इन्वॉल्व करने का।
2: श्रोताओं, इस कार्यशाला में मौसम विभाग का प्रतिनिधित्व किया मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन ने, और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के जरिए सभी प्रतिभागियों को हीट वेव के बारे में समझाया।
3: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दिव्या, मैं मौसम विभाग में काम करती हूँ, मौसम वैज्ञानिक हूँ। आज हम डीएमआई में एक वर्कशॉप के लिए आया, हीट वेव के बारे में वर्कशॉप था। तो मेनली हमारे साइड से हम आईएमडी कैसे हीट वेव को आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और उसके लिए फोरकास्ट और चेतावनी कैसे जारी करते हैं, उसके बारे में मैंने प्रेजेंटेशन दिए थे। साथ साथ बाकी सेक्टर से भी लोग थे, आर्किटेक्चर, हेल्थ और एग्रीकल्चर, तो सब लोगों ने भी उनका इनपुट दिया, और ये ऑनगोइंग हीट वेव कंडीशंस में कैसे मतलब टोटल एक्शंस लेना, उसके बारे में आज डिस्कशन हुआ था।
1: तो मैम, अभी आने वाले समय के लिए आप हीट वेव के लिए क्या आप अनुमान लगाते हैं?
3: अभी का कंडीशन में लास्ट कुछ दिन से टेम्परेचर काफ़ी नीचे चल रहे हैं हमारे रीजन में, बट अभी जो बारिश देने वाले सिस्टम आज और कल के बाद कम हो जाएगा, तो तीसरे दिन से प्रदेश में टेम्परेचर अभी आने वाले दिनों में बढ़ने का चांसेस है। अभी हमने हीट वेव का वार्निंग इश्यू नहीं किया, बट यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तीसरे चौदह दिन से प्रदेश में फिर से टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का चांसेस है।
1: और फिर ऐसे में लोगों को और खासतौर से किसानों को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए?
3: हीट वेव के टाइम में मेनली यही प्रिकॉशंस हम बोलते हैं, मेनली वो जो ज़्यादा हीट जब रहते हैं जैसे 12 बजे से 4 बजे के बीच के वो टाइम में बाहर जाना मैक्सिमम अवॉइड करना है, और जा रहे तो भी आप प्रिकॉशंस के साथ छाता वगैरह यूज़ करके जाना है, और ये टाइम में बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो पानी, ORS, नींबू पानी, तो जो भी मतलब बॉडी हाइड्रेट करते हैं उसी टाइप का मतलब ये लेना है, ड्रिंक्स लेना है, और खाना भी हल्का खाना, और कपड़े में भी हल्का कपड़ा, लाइट कलर का कपड़ा, कॉटन और लिनन का कपड़ा, वो सब यूज़ करने से अच्छा रहेगा, मतलब हीट से हम बीट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार में किसी को कुछ हीट स्ट्रोक कंडीशंस महसूस हो रहे हैं तो उनको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प देना ज़रूरी है।
2: इस कार्यशाला के बारे में यूनिसेफ मध्य प्रदेश से अपनी बात रख रहे हैं
4: अनिल गुलाटी, यूनिसेफ संचार विशेषज्ञ और DRR फोकल पॉइंट। आज डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने एक वर्कशॉप की है जिसमें हीट वेव जिसका टॉपिक था, यूनिसेफ के लिए बहुत अहम है क्योंकि यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के लिए काम करता है सरकार के साथ मिलकर, तो बच्चों का वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है हीट वेव में, चाहे वो उनके चैलेंजेस हों, और सिमिलरली महिलाओं का। तो आज हमने यूनिसेफ ने प्रेजेंटेशन दिया जिसमें बताया कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कि पानी ज़्यादा पियो, दिक्कत आए तो ORS लीजिए, ढक के ये 12 से 4 के बीच में मत निकलिए, अगर बच्चे हैं तो उनका खास ख्याल रखिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो ORS लीजिए, खासकर पानी में डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके, और कोशिश करिए कि कवर्ड एरियाज में रहें। तो इस चर्चा का इंपॉर्टेंस ये है ताकि ये जानकारी जन जन तक दे सके। इसके अलावा IMD और SDMA ने भी आज एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें माध्यम से बताया कि हीट वेव के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और कब तक हीट वेव का इम्पैक्ट रहेगा।
1: सर, जो खास जो कुछ बीमारियां रहती हैं उससे पीड़ित लोगों को भी इसमें दिक्कत होती है, तो उसके बारे में?
4: जी बिल्कुल, वनरेबल पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हाई ब्लड प्रेशर या जिनको डायबिटीज़ वगैरह है उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़ती है, और जो बूढ़े लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, खास करके उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो बच्चे हैं, जो कुपोषित हैं, जो एडमिटेड हैं, उनका खास ख्याल रखें। और जैसे आपको लगे कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं हीट स्ट्रोक के, कि आपकी स्वेटिंग खत्म हो गई हो या टेम्परेचर बढ़ गया हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लें।
2: श्रोताओं, इस कार्यशाला में यह भी बताया गया कि ग्रीन बिल्डिंग के

0: जरिए हीट वेव के असर को कम किया जा सकता है। इस बात को प्रेजेंटेशन के जरिए सभी उपस्थित प्रतिभागियों को समझाया।
1: मेरा नाम अदिति काश्यप है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैंने अपना मास्टर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में किया है, जिसमें कि हम ग्रीन बिल्डिंग्स जो कहते हैं उस पर काम करते हैं कि एनर्जीज को हम कैसे रिड्यूस करें और आगे जाके आने वाले टाइम में हम कैसे थर्मल कंफर्ट को प्रोटेक्ट करें एक तरीके से, उस पर काम करेंगे।
0: तो DMI के द्वारा जो यहाँ पे आयोजित किया गया था वर्कशॉप, इसमें आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो उसके बारे में बताएं।
1: जी, आज हमने जो प्रेजेंटेशन पे बात करी है उसमें ये बात करी थी कि हम हीट वेव से कैसे बचेंगे, चूँकि हम एक कॉम्पोजिट क्लाइमेट में भोपाल में रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बिल्डिंग में हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं हम तरीके से हीट वेव्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर हमने बात करी थी, जिसपे हम बहुत सारे मेजर्स ले सकते हैं। जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उसमें फ्लैट रूफ्स होती हैं, तो उस पर हम एक कूल रूफ पेंट आता है, वाइट कलर का पेंट होता है, उसको आप ज़रूर करिए अपने घरों में, तो उससे वाटर प्रूफिंग भी होगी, प्लस आपका 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर भी आपका कम हो जाएगा। प्लस हम खस से बने हुए पर्दे लगा सकते हैं, उस पर आप 2-4 बार पानी छिड़क के ऑटोमेटिक आपका बाहर से जो हवा आ रही है वो ठंडी होकर घर में आएगी। छोटी छोटी ओपनिंग्स दे सकते हैं घर में, जाली वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम एक स्पेस ऐसा बना सकें जहाँ पे ठंडी हवा आती रहे। प्लस ज़रूरी यह है कि हमारे पास क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा पास होती रहे हर एक जगह से, भले ही वो छोटी खिड़की हो, बड़ी खिड़की हो, जैसा भी हो, उस चीज़ का ध्यान हम हमेशा रखें। इस चीज़ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था।
0: अब मैम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं, पर अगर कोई स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है तो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए?
1: जी, तो हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं इसमें, जैसे कि हमारी खिड़कियाँ किस साइज़ की बनी हैं, किस डायरेक्शन में बनी हैं, तो हम उस पर, अगर हमारे पास छज्जा नहीं बना है तो हम उस पर कितना छज्जा बना सकते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा। तो वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए एक नई खिड़की भी दे सकते हैं, जो नॉर्मल फ़ैन यूज़ करेंगे तो उससे भी है कि हवा पूरी पास होती रहे, फ़ैन चलता रहे, तो भी आपका नेचुरल वेंटिलेशन बना रहेगा। छत पे कूल रूफ कोटिंग करनी चाहिए, पेंट करना चाहिए, जिससे कि अंदर 2-3 डिग्री का टेम्परेचर कम होगा। इसी तरह से हम रूफ गार्डन या छत पे छोटे छोटे पौधे लगा के उधर जो हीट को वो ट्रैप कर रहे हैं उसको हम कम कर सके, ऐसे मेजर्स हम ले सकते हैं काफ़ी सारे। हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इस टाइप के इक्विपमेंट बना रहा है जिसमें कम से कम एनर्जी यूज़ हो बट हमें पूरा फ़ायदा मिले। तो आजकल गवर्नमेंट ने एक और चीज़ कर दी है कि हम एसी का टेम्परेचर पहले 16 डिग्री तक दे देते थे, पर अब वो 18 से 24 या 24 डिग्री तक ही दे रहे हैं, ताकि हम मिनिमम यूटिलाइज करें, अपना कम्फर्ट मिलता रहे हमें उस टाइम पीरियड में, और हम एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट ना करें। तो इस टाइप के हम इक्विपमेंट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि नेचुरली जितनी चीज़ें हो सके वो करें। अगर हम एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो ज़मीन है उसमें कितने पेड़ ऑलरेडी लगे हुए हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो हम बचा सकते हैं अपने घर के लिए। तो हम, हो सकता है एक बड़ा पेड़ है उसको हम अपने घर के कोर्टयार्ड में ले लें, किसी बिल्डिंग के बीच में ले सकते हैं। तो जैसे कि हम वास्तु को लेकर बोलते हैं कि पूरब की तरफ से एंट्री होनी चाहिए या उत्तर की तरफ से ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पहले क्लाइमेट को देखकर ही बोली गई थी, तो उस चीज़ से रिलेटेड हम आज भी फॉलो कर सकते हैं चीज़ डिज़ाइन में।
0: इस प्रकार इस एक दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ, जिसमें लू आपदा प्रबंधन विषयक मुद्दों पर चर्चा की गई और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के द्वारा सहभागिता की गई। इसी के साथ इस रेडियो रिपोर्ट को संपन्न करते हैं। नमस्कार।
2: अभी आपने सुनी आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा 8 मई 2026 को आयोजित हीट वेव डिजास्टर मैनेजमेंट कार्यशाला पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। फिल्म संकेत। कार्यक्रम का आरंभ मोहम्मद रफी के गाये गीत से, राजेंद्र कृष्ण के गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने और फिल्म है भरोसा।

श्यामल मित्रा के संगीत निर्देशन में सुनिए आनंद आश्रम फिल्म का गीत। इंदिवर के गीत में आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की।

0: आनंद आश्रम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अगला कार्यक्रम छोटे से अंतराल के बाद। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलोग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार फिर सुन लें। दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य फोन नंबर है 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
2: कवि श्री राग तेलंग।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर जिले के भेरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले में सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। प्रदेश भर में आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली बिल, जलकर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी गई। मौसम विभाग ने नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत कई जिलों में आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 15 मई से 20 मई तक भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है विशेष भेंट वार्ता। इसमें सुनिए आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का भाग दो। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और योगदान विषय पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे से बातचीत कर रहे हैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्षों की कालजयी यात्रा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की आज की कड़ी में आज हम फिर आपके साथ हैं, आपके रूबरू हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, लेखक, सरस्वती पुत्र और संप्रति मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर,
2: सर नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं और इसलिए आज एक प्रकार से दोनों ही क्षेत्रों के सेतु के रूप में आप और हम बैठे हैं। बहुत आनंद रहेगा आज की बातचीत में।
1: सर, हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि वर्ष 1923 में मुंबई और कोलकाता के प्राइवेट रेडियो क्लब के द्वारा प्रसारण की शुरुआत की गई थी हमारे देश में, और 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी और 1930 में उसका कार्यभार इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के माध्यम से तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिया। लेकिन तब तक ये नियमित प्रसारण नहीं था रेडियो का, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे प्रसारण करते थे
2: जी।
1: 1935 में जब बीबीसी के लियोनेल फील्डन को भारत का कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया, उन्होंने पहल की और जो आज आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो जिस स्वरूप में है उसका बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है। और इस कड़ी में 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो हुआ। 8 जून 1936 के ऐतिहासिक दिन ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारण की शुरुआत हुई और यही ऑल इंडिया रेडियो 1956 में इसका नामकरण आकाशवाणी हुआ। और सर, इसके नामकरण के पीछे भी एक कहानी है कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1939 में कोलकाता में एचपीटी का उद्घाटन हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने कविता पढ़ी, उस कविता में आकाशवाणी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और 1956 में जब पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जो बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने उस पंक्ति का संदर्भ लेकर के प्रयास किया कि हमारी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपने देश की अपनी आइडेंटिटी होती है, तो उन्होंने आकाशवाणी शब्द को प्रपोज किया था। और 1956

0: 1955 में आकाशवाणी शब्द हमें मिला और तब से ये कालजय यात्रा जारी है।
1: यानी इसका मतलब ये हुआ कि आकाशवाणी के नामकरण की भी जो छोटी सी यात्रा है, यानी ये पहली बार मुझे ध्यान में आ रहा है, हालांकि आकाशवाणी का इतिहास तो पढ़ते रहे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आज मुझे लगता है कि अपने श्रोताओं को भी ध्यान में आएगी कि इसके पीछे एक भाषाई स्वाभिमान और भाषाई शुचिता का प्रश्न भी हल हो रहा है इस नामकरण के साथ।
0: जी, हम सभी जानते हैं रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञे जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की और विशेष करके आकाशवाणी के जिस इतिवृत्त को आपने अभी हम सब के साथ बांटा, वास्तव में मैं जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं और मुझे कहने में कभी संकोच भी नहीं होता बल्कि गर्व की अनुभूति होती है कि मैं मालवा क्षेत्र के ठेठ ग्रामीण क्षेत्र से एक ऐसे ग्राम से आता हूं जिसकी आज भी जनसंख्या मुझे लगता है 5,000 के लगभग होगी, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और उतने छोटे से ग्राम से निकल करके आए हुए हम लोग जब क्रमशः हमारी यात्रा कस्बों तक पहुंची, महानगरों तक पहुंची, तो जब हम छोटे छोटे थे तो मुझे उस युग में ऐसा लगा करता था कि चूंकि सत्यनारायण कथा घर घर में होती थी और उसके एक घटनाक्रम में आता है उल्लेख कि वो जब जामाता की नाव डूबती है और फिर आकाशवाणी होती है, तो मुझे कई बार लगता था कि आकाशवाणी शब्द संभवतः पौराणिक काल का शब्द है। लेकिन वास्तव में ये स्वाभाविक है कि तकनीकी रूप से भी जिस ढंग से आकाशवाणी शब्द सार्थक सिद्ध होता है हमारी इस रेडियो विधा के लिए, वो अपने आप में बड़ा आनंददायक है। और आज का संदर्भ तो आपने जो दिया है वो तो और अद्भुत है। आपने एक बहुत अच्छा संदर्भ दिया है। इस मामले में मैं चाहता हूं कि अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। हम सब जानते हैं कि उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, और जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
0: जी,
1: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भावभंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
0: शब्द चित्र
1: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात ये कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय समाज में जो एक समय पूरा का पूरा जिसको हम गुलामी का काल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक आक्रांताओं का जो युग था, उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने। मैं कई बार सोचता हूँ, हमारी उम्र के लोगों ने अनुभव किया, आप चूंकि मैं भी 60 की ओर बढ़ रहा हूँ तो मैंने इस बात को अनुभव किया कि जब हम प्रामाणिकता को देखना चाहते थे किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, एक बार अपने कक्षा में, हिंदी की कक्षा में अपने अध्यापक को मैंने चुनौती देकर के कह दिया कि आप ये जो वाक्य बोल रहे हैं ये कर्ता क्रिया कर्म के मूल सिद्धांत के विपरीत है, तो बड़े नाराज हुए। पुराना युग था, उन्होंने कहा तुम बच्चे होकर के इस तरह की बात कर रहे हो। तो संयोग ऐसा था कि मैंने उनको कहा कि मैंने आज ही आकाशवाणी पर सुना है ये वाक्य इस ढंग से, और आप आश्चर्य करेंगे कि हिंदी के अध्यापक ने बगैर अपने आत्मसम्मान की कोई हानि अनुभव करते हुए उन्होंने कहा अच्छा आकाशवाणी पर सुना है तब तुम ठीक कह रहे हो।
0: बिल्कुल,
1: मुझे लगता है कि किसी भी माध्यम की इससे अधिक लोक प्रामाणिकता ये अपने आप में गर्व की बात है और साहित्य को भी निश्चित तौर पर ये प्रामाणिकता और ये सब कुछ प्राप्त हुआ है आकाशवाणी के माध्यम से।
0: सर, साहित्य को आम आदमी से जोड़ने में रेडियो ने अहम भूमिका निभाई है।
1: जी,
0: अभी आपने कहा भी है ये साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। इसने लेखकों को सिखाया है कि कम और प्रभावी शब्दों में संप्रेषण कैसे किया जाए, जो रेडियो का एक सशक्त पक्ष है। जी, हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना चाहेंगे।
1: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र, तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम

0: किया। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। और कई बार तो मैं ये भी अनुभव करता हूँ कि जैसे कविता लेखन की कुछ कार्यशालाओं में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता था, बच्चों की कार्यशालाओं में भी जाता था और बड़े साहित्यकारों की कार्यशाला में भी, तो कुछ कुछ हमारी बनी बनाई धारणाएं कैसे ध्वस्त होती एक छोटे से उपक्रम से। उसका एक अच्छा सा उदाहरण मुझे अभी अनायास याद आया। होता यूं है कि काव्य के जगत में, चूंकि आप भी साहित्य के निकट हैं, तो आपको पता होगा कि तुकबंदी शब्द को बड़े हीनता बोध के साथ लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई छंद शास्त्र में जो व्यक्ति कविता लिखता है तो अगर किसी ने थोड़ा सा निम्न स्तर की कविता लिखी, अरे क्या तुकबंदी कर दी तुमने ऐसा। लेकिन एक बार मैंने ऐसा किया कि आकाशवाणी की एक रिकॉर्डिंग लेकर के मैं ऐसी एक कार्यशाला में पहुंचा, मोबाइल पर मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ था। और मज़ेदार बात यह थी कि मैंने बगैर नाम लिए मैंने कहा कि देखिए आप सब लोग, अच्छा चूंकि मेरे से पूर्व के वक्ता लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि आजकल लोग तुकबंदी में लगे हैं, तुकबंदी में लगे हैं, मैंने कहा मैं आपको एक मूल स्वर सुना रहा हूँ, इस मूल स्वर को पहचानने का प्रयास करिए। और आप आश्चर्य करेंगे, आकाशवाणी के कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में ये कहा गया था कि आज आकाशवाणी के इस पटल से मैं आपके सामने एक तुकबंदी प्रस्तुत कर रहा हूँ
1: जी।
0: और उसके बाद जो रचना प्रारंभ हुई वह थी, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर तुम देना फेंक, और वो स्वर था दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी का। मैंने कहा जब माखनलाल चतुर्वेदी जी आकाशवाणी जैसे माध्यम पर यह शब्द प्रयोग करते हैं और वे अपनी सबसे अमर रचना को तुकबंदी कहते हैं, तो आप और हम ये मानने वाले लोग कौन हैं जो तुकबंदी को निम्न स्तर का मानते हैं। ऐसा कहकर के जब बात रखी तो जैसा मैंने पिछले प्रसंग में आपको बताया अध्यापक वाले प्रसंग में, वैसा ही साहित्य जगत के सब लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि अब कम से कम आने वाले समय में हम, चूंकि तुकबंदी कविता का मूलभूत गुण होता है, तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोरदा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी सर, रेडियो ने साहित्य को अधिक लोकतांत्रिक बनाया है। पहले जो शिक्षित वर्ग तक, एक खास समूह तक जो केंद्रित था साहित्यिक अवदान, वो वहाँ से हटकर अब आम जन तक पहुँचा है। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुँच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा और विशिष्ट वर्ग तक सीमित होने से बचाया है?
0: निश्चित बात है, ये तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक ज़माने में लाइसेंस लेना पड़ता था। और मेरे घर में विधिवत वो लाइसेंस रहा, बकायदा जा करके शासकीय कार्यालय में एक रेवेन्यू टिकट लगवा करके, सील लगवा करके एक वर्ष के लिए उसको रिन्यूअल करवाना होता था, नवीनीकरण करवाना होता था। तो मुझे लगता है कि ऐसी धारणा प्रारंभ में रही होगी, लेकिन मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। आज कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है। और इसलिए मैं इसके लिए तो विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, और 90 वर्ष की इस यात्रा में इस पक्ष पर मुझे लगता है कि जो इन दिनों पत्रकारिता के

0: शोधार्थी हैं, उन शोधार्थियों को कुछ शोध कार्य संपन्न करना चाहिए कि कैसे एक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक आकाशवाणी उस अभिजात्य वर्ग के शोध निष्कर्षों को भी पहुंचाने में सफल हो पाइए।
1: जी, ज्ञान सूचना मनोरंजन का जो ये त्रिवेणी है
0: जी,
1: और जिस पोर्टेबल माध्यम से, जिस सरल तरीके से आम आदमी तक पहुंचती है, उसमें रेडियो का शायद कोई दूसरा पैरेलल नहीं होता है। ध्वनि का माध्यम साहित्य को जीवित संवाद के रूप में बदल देता है। केवल ध्वनि ही होती है जो आपके शब्दों को जीवन प्रदान करती है।
0: सच है।
1: और हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: अभी माखन दादा को हम स्मरण कर ही रहे थे, और इसके अतिरिक्त भी उस युग के साहित्यकारों को भी अगर हम देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जन सामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। मुझे याद आता है कि अमिताभ बच्चन चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं, और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक किसी कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है, ये स्वरबद्ध करने का काम उनके पुत्र ने पहली बार किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी तो जिस ढंग से आकाशवाणी से जुड़े थे, तो जिन लोगों ने पहले किया वो भी उनके लिए पुत्रवत थे, और ये काम मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, इस ढंग से उन्होंने बड़ी आत्मीयता से स्मरण किया था। तो मुझे लगता है कि इन सब साहित्यकारों को पहचान देने का काम जो हुआ, और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है। यानी मैं अपने स्वयं की भी अगर चर्चा करूं तो मैं चूंकि बाल साहित्य क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहा 4 दशक तक, और बाल सभा के कार्यक्रमों में 30 वर्ष से अधिक मुझे हुआ है। मैं इससे पहले खेती गृहस्थी वाले कार्यक्रमों में भी वार्ता के लिए जाता रहा, यहां तक कि बहनों के कार्यक्रम में भी मैंने कई बार वार्ताएं ली, लेकिन मेरा जो मूल रुचि का विषय था बाल सभा, उस बाल सभा में मैं जब एक युग में मुझे याद है कि जब लाइव हुआ करते थे, बच्चों के साथ बैठा करते थे, तो उस युग को स्मरण करके मुझे आज भी लगता है कि सचमुच वो एक ऐसी कार्यशाला हुआ करती थी। उस युग में वो जो छोटे छोटे से बच्चे बैठा करते थे, 7-8 साल के 10 साल के, और उन बच्चों से जब मैं बातचीत करता था और उनसे कविताएं सुनता था, कभी मैं कहानियां सुनाता था, मुझे लगता है कि आज निश्चित तौर पर यदि हम एक शोध कार्य संपन्न करें तो आकाशवाणी की बाल सभा में आए हुए उन बच्चों में से 90% बच्चे साहित्यिक अभिरुचि वाले रहे होंगे अपने भावी जीवन में। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। साहित्य जगत में केवल लेखक तैयार कर देना ये बड़ी बात नहीं है, लिखने वाले इन दिनों हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि पर्याप्त से अधिक मात्रा में, लेकिन अच्छे पाठक तैयार करने का काम आकाशवाणी ने किया, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अवदान है। मैं इसको कई बार प्रतीक रूप में ऐसा भी कहता हूँ कि पारस पत्थर का गुण होता है कि वो लोहे से सोना बनाता है, ये तो एक सामान्य बात है जहाँ पारस पत्थर होगा, लेकिन पारस पत्थर का मूल काम क्या है, उसका काम है अपने जैसे और पारस पत्थर तैयार करना। और इसलिए आकाशवाणी एक बहुत अच्छी श्रोता भी है, वो जब वक्ता के रूप में साहित्यकारों को बुलाती है, कवियों को बुला करके उनकी कविताएं सुनती है, और वो हम लोग कई बार मजाक में सोचते हैं कि हिंदी के मुहावरों में कि एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना, ये भले ही हास्यास्पद माना जाता होगा, लेकिन आकाशवाणी के संदर्भ में मैं सोचता हूँ कि आकाशवाणी का जो तंत्र है, इसकी जो तकनीकी है, वो एक कान से सुन करके करोड़ों कानों तक पहुँचा देती है। मुझे लगता है कि ये आकाशवाणी की सार्थकता है।
1: जी, जैसा हम सभी जानते हैं आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है
0: जी।
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये दिग्गजों ने, साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: सचमुच आपने जिन पुरोधाओं के नाम लिए, अखिल भारतीय स्तर पर तो ये हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी मैं कहूँ तो चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियाँ थी, उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुँचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना,

0: कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, हमारे यहाँ आकाशवाणी से कहानी का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम आया करता था और उसमें आकाशवाणी ने तो 90 वर्ष की यात्रा में इतने नवाचार किए, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा था कि कोई भी लेखक एक कहानी लिख करके भेजते थे और उस कहानी की उस पूरे कथानक से जुड़े हुए, उसके भावों से जोड़ते हुए बीच में गीत का मुखड़ा और एक पद आ जाता था या कभी कभी पूरा गीत भी आता था और वो गीतों भरी कहानी तैयार हो जाती थी। ऐसे कई प्रयोग किए गए। मुझे लगता है कि ये जो नवाचार हुए इसके अतिरिक्त जो विधाएं साहित्य क्षेत्र में लगभग अल्प प्रचलित विधाएं कही जाती थी, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। मुझे याद है कि रेखा चित्र और संस्मरण इनको लेकर के अब पर्याप्त काम होने लगा है इन दिनों, हमारी जो बातचीत के भी जितने कार्यक्रम होते हैं तो चाहे वे हार्ट सर्जन आ रहे हैं, चाहे वे कोई कलाकार आ रहे हैं, रंगकर्मी आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, लेकिन वे जब अपने जीवन के पिछले घटनाक्रम में गोते लगाते हैं तो ऐसा एक चित्र खड़ा हो जाता है हमारी आँखों के सामने कि लगता है कि साहित्य का जो रेखा चित्र विधा का जो स्वरूप है उसको ठीक से समझना है तो आकाशवाणी से सीखा जा सकता है।
1: जी, आपका ये साहित्यिक सफ़र और आकाशवाणी हम साथ साथ चले हैं और काफ़ी लंबा साथ रहा है आपका आकाशवाणी के साथ। सर, कुछ उस दौरान कुछ आपकी स्मृतियों में ऐसी बात हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
0: सचमुच इतनी स्मृतियां हैं कि एकाध बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि केवल आकाशवाणी से जुड़ी स्मृतियों को आधार बना करके एक पूरा संस्मरण का संग्रह तैयार कर सकता हूं। लेकिन आकाशवाणी को लेकर के जो सबसे ज़्यादा भावनात्मक रूप से मेरे साथ जुड़ा हुआ एक प्रसंग है वो मैं ज़रूर आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि आकाशवाणी एक एक मनुष्य के हृदय पर कैसा प्रभाव छोड़ती है। हुआ ऐसा कि एक बार मुझे वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था आकाशवाणी के द्वारा और विषय दिया गया था ध्वनि प्रदूषण। तो मुझे लगा कि मैं साहित्य का व्यक्ति हूं और ये बड़ा तकनीकी प्रकार का विषय है, तो मैंने कहा ये गलती से तो आपने नहीं दे दिया मुझे। उन्होंने कहा नहीं, आप तैयार करके और इसको ठीक ढंग से तथ्य और प्रमाणों के साथ रखिए तो हमारे श्रोताओं को इसका लाभ मिलेगा
1: साहित्य का तो, के नजरिए से ध्वनि प्रदूषण।
0: हाँ, तो मैंने उस पर एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार की और वो ध्वनि प्रदूषण को लेकर, आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे जीवन में संभवतः पहली और आखिरी बार मैंने ध्वनि प्रदूषण को लेकर के इतना पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे ध्यान में आया कि हम जिस जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को लेकर के इतने चिंतित हैं, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के इतने चिंतित हैं, उससे कहीं ज़्यादा घातक ध्वनि प्रदूषण भारतीयों के लिए है। जिस ढंग से हम हॉर्न बजा रहे हैं, चिमनियों से सायरन की आवाज़ें निकल रही है, ये सब, और उसका प्रभाव नवजात शिशुओं पर, और तब तो वो युग था कि अस्पतालों के बाहर हॉर्न नहीं बजाने की सूचनाएँ तक नहीं होती थी और हमको पता ही नहीं कि कितने मरीजों की शायद मृत्यु हो गई हो इतने तीव्र हार न सुन करके और ये सब। तो हुआ यूं कि वो वार्ता करके मैं जब निकल रहा था तो मेरे पास एक छोटी सी स्कूटी हुआ करती थी, तो आकाशवाणी के द्वार से बाहर निकलते हुए सामने से एक वाहन गुजरा और मैंने अपनी आदत के अनुसार एकदम से अंगूठा हॉर्न पर दबाने वाला था और फिर मुझे लगा कि मैं आकाशवाणी की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। मैंने जिस पटल से ध्वनि प्रदूषण को लेकर इतनी बातें कही आधे घंटे में और मैं खुद इतना हॉर्न बजाता हूँ, तो मैंने तत्क्षण एक संकल्प लिया कि अब भविष्य में मैं तभी हॉर्न बजाऊँगा जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। और आज आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है और मैं भावुक भी होता हूँ कि ये आकाशवाणी का पुण्य प्रताप है कि 23 वर्ष से मैंने एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया अपनी किसी गाड़ी का, एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया। और मुझे लगता है कि ये जो मर्यादा मेरे जीवन में आई है, इस मर्यादा को देने का काम आकाशवाणी ने किया है। और ये मुझे लगता है कि करोड़ों नागरिकों के मन में इस तरह का, आज हम जबकि पंच प्रण की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नागरिक कर्तव्य को लेकर के हमको विचार करना है, ये नागरिक कर्तव्य का बोध मुझे आकाशवाणी ने दिया है।
1: जी सर, अब आज के वर्तमान परिदृश्य में आते हैं। आज का जो डिजिटल युग है, पॉडकास्ट हुआ, सोशल मीडिया हुआ, ये साहित्य के क्षेत्र में भी इसने काफ़ी गहरा प्रभाव डाला है, और आकाशवाणी की भूमिका ऐसे परिदृश्य में आप किस तरह से आंकते हैं?
0: वास्तव में पॉडकास्ट के साथ दृश्य भी जुड़े हुए हैं, चूँकि इन दिनों लगातार अंतर्ताने का उपयोग करते हुए, इंटरनेट का उपयोग करते हुए

लोग अनुभव कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वायरल होने का एक शौक सा सवार है साहित्यकारों पर भी और सामान्य जन पर भी, लेकिन इस रील और बाकी सारे जो दृश्य माध्यम है इनसे परे जाकर के हम सोचें तो आकाशवाणी के समानांतर अगर कोई नवाचार हुआ है ध्वनि माध्यमों में तो वो हुआ है कथाओं को साहित्य को ध्वनि मुद्रण के रूप में अंकित करना और उनको सुनना। मेरे एक शिष्य हैं जिनको मैंने कभी स्कूल टाइम में पढ़ाया हुआ था, तो वो इन दिनों पुणे और मुंबई प्रतिदिन आना जाना करते हैं, प्रतिदिन उनका आना जाना होता है, एक दिन आते हैं दूसरे दिन जाते हैं, इस प्रकार से उनका व्यावसायिक काम होने के कारण से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी आप मुझे बताइए कि मैं क्या पढ़ूं, नया क्या पढ़ूं। तो मैंने कहा तुम आईटी प्रोफेशनल और इसमें तुमको समय मिलता है क्या पढ़ने का। उसने बड़ी तेज़ी से मुझे कुछ इतनी अच्छी साहित्यिक कृतियों के नाम बताए, यानी उसमें शिवाजी सावंत का छावा भी था और शेष और शिवानी के कुछ उपन्यास। तो मैंने कहा तुमने ये कब पढ़ लिया? तो उसने बताया कि मैं कार से मुंबई और पुणे के बीच एक्सप्रेसवे पर जब चलता हूँ तो मेरा वो जो रेडियो है वो चालू करके और उस पर मैं वो ध्वनि अंकित जो उपन्यास हैं या जो

0: और इसमें तुमको समय मिलता है क्या पढ़ने का। उसने बड़ी तेजी से मुझे कुछ इतनी अच्छी साहित्यिक कृतियों के नाम बताए, यानी उसमें शिवाजी सावंत का छावा भी था और
1: जी
0: शेष और शिवानी के कुछ उपन्यास। तो मैंने कहा तुमने ये कब पढ़ लिया, तो उसने बताया कि मैं कार से मुंबई और पुणे के बीच एक्सप्रेस वे पर जब चलता हूँ तो मेरा वो जो रेडियो है वो चालू करके और उस पर मैं वो ध्वनि अंकित जो उपन्यास हैं या जो
1: जी
0: कहानी संग्रह हैं
1: जी
0: उन सबको मैं सुनता हूँ। तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी तो इस काम को तकनीकी के इस नवीन आविष्कारों से बहुत पहले से करता आ
1: पहले
0: रहा है।
1: करते हैं जी।
0: और आकाशवाणी चूंकि सुलभ है, इन दिनों विविध भारती के माध्यम से हम जब जब से FM पर आए हैं
1: जी
0: तब से तो ये सुलभता इतनी बड़ी है और उसकी जो गुणवत्ता है वो इतनी सुधरी है कि
1: जी
0: मुझे लगता है कि इन चीज़ों को लेकर के आकाशवाणी का कोई विकल्प तो कभी नहीं हो सकता। ये
1: जी
0: और ये भी मैं अनुभव करता हूँ कि आकाशवाणी ने आज तक इस प्रकार के समान धर्मी माध्यमों से कभी अपनी प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता नहीं बताई।
1: जी
0: ये सबसे बड़ी बात है। जैसे एक बड़े भाई का धैर्य, एक पिता का त्याग जिस तरीके से हमको परिवार में दिखता है, ठीक उस भूमिका में मुझे इन सब नवीन माध्यमों में आकाशवाणी दिखती है।
1: जी जी
0: तो
1: नए
0: वो अपना
1: माध्यम
0: काम लगातार करती
1: जी
0: चली जा रही है।
1: और
0: तो
1: नए माध्यमों को भी जो संचार के माध्यम हैं पल्लवन के लिए इनके विकास में भी पूरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे रही है आकाशवाणी।
0: बिल्कुल
1: बदलते परिवेश में आकाशवाणी से आप क्या और अपेक्षाएं रखते हैं, क्या होना चाहिए
0: मुझे
1: जो
0: लग
1: अब
0: रहा है
1: कुछ चेंज
0: कि
1: के तौर पे अगर
0: जी
1: हम
0: जी
1: देखें।
0: जी मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी अपेक्षा मुझे थी आकाशवाणी से, लेकिन वो थी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: थी ही, अब है
1: जी
0: नहीं,
1: जी जी
0: इसलिए नहीं है क्योंकि आकाशवाणी ने मेरी उस अपेक्षा को पूरा कर दिया है।
1: जी
0: मुझे कई बार ऐसा लगता था कि आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स हैं,
1: जी
0: उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे
1: जी
0: छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई,
1: जी
0: लेकिन वो सब चीज़ें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। तो मुझे कई बार लगता था कि ये इतना बड़ा ज्ञान का खजाना है, ईश्वर न करे कभी कोई ऐसा ऊंचा नीचा हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रकृति के प्रकोप भी होते रहते हैं, कभी भूकंप आते हैं, कभी ज्वालामुखी फटते हैं,
1: बिल्कुल
0: कहीं ये सब नष्ट हो गया तो क्या होगा, इसको
1: जी
0: रूपांतरित होकर के कहीं किसी कालपात्र में रखा जा सकता है क्या ऐसी सामग्री को। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता
1: बिल्कुल
0: हूँ,
1: बिल्कुल
0: वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊँ
1: जी
0: और अपनी रुचि की सामग्रियों को सामान्य जन, ये बात मैं विशेष रूप से इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे श्रोताओं में से संभवतः इंटरनेट का उपयोग तो बहुत लोग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि वो आर्काइव सबके लिए खोल दिया गया है। तो
1: जी
0: मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में
1: जी
0: सुने तो
1: बिल्कुल
0: हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं,
1: जी
0: उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
1: जी धर्मवीर भारती ने कहा था कि रेडियो की अपनी विशिष्ट भाषा होती है जिसे हम कहते हैं ध्वनि की कविता। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ मौन भी उतना ही मुखर होता है जितना ध्वनि होती है।
0: बिल्कुल
1: चलते चलते हमारे सुधी श्रोताओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहें।
0: निश्चित तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आकाशवाणी के सभी श्रोताओं से, चूंकि आप इस वार्ता को सुन रहे हैं इसका अर्थ आप आकाशवाणी से जुड़े ही हैं, लेकिन इस परिवार से जुड़े रहें
1: जी
0: और लगातार आकाशवाणी, चूंकि इतने वर्षों से हम सब लोगों के लिए इतने प्रकार की सामग्री परोस रहा है कि वो आज आप देखिए कि चाहे वो जिनको भिन्न भिन्न प्रकार के हम वर्ग कहते हैं लैंगिक दृष्टि से,
1: जी
0: माताओं बहनों के लिए अलग कार्यक्रम आ रहे हैं, बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम आ रहे हैं, पुरुषों के निमित्त अलग से आ रहे हैं,
1: जी
0: प्रोफेशनल दृष्टि से भी देखें, जिनकी अलग अलग वृत्ति है, उन लोगों के लिए भी अलग अलग कार्यक्रम आ रहे हैं। समाज का कोई भी वर्ग आकाशवाणी से, प्रसार भारती से अछूता नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको हम अनुभव करें और इस परिवार का हिस्सा बन करके रहें। मुझे एक ही शब्द इस समय याद आ रहा है और वो है कि अंगांगी भाव शब्द प्रयोग करते हैं हम। अंगांगी भाव ये होता है कि अगर हाथ में कोई सुई चुभाता है तो सीधे मस्तिष्क पर जाकर

0: करके उसका प्रभाव पड़ता है और हमको लगता है कि दर्द हो रहा है। तो आकाशवाणी चिरजीवी हो, मृत्युंजयी हो, ये मैं अपेक्षा करता हूँ, और ये काम केवल हमारे श्रोता कर सकते हैं, हम सब मिल करके कर सकते हैं।
1: हम कह सकते हैं कि आकाशवाणी और साहित्य का संबंध केवल ध्वनि और शब्दों का संबंध नहीं है, बल्कि संस्कृति और समाज की आत्मा का परस्पर संवाद है।
0: निश्चित।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों की यह गौरवमयी यात्रा वास्तव में भारतीय साहित्य और जनमानस की साझा स्मृति का जीवंत दस्तावेज है। आदरणीय डॉक्टर विकास दवे सर, आप कार्यक्रम में पधारे और इतना ज्ञानवर्धक संवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आपने सुनी विशेष भेंट वार्ता। इसमें आप सुन रहे थे आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति का भाग दो। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की समृद्ध परंपरा और योगदान विषय पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे से बातचीत कर रहे थे चंद्रशेखर शर्मा।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। आनंद बख्शी के गीत को सुरों में पिरोया है आर डी वर्मन ने और फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में सुनिए धरती कहे पुकार के फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत में आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की है।

अगले गीत में किशोर कुमार का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर डी वर्मन और फिल्म है शक्ति।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगली पेशकश दहलीज फिल्म का गीत। हसन कमाल के गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने, गायक स्वर आशा भोसले और महेंद्र कपूर के।

फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश किशोर कुमार के स्वर में अंदाज फिल्म का गीत, बोल हसरत जयपुरी के, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

0: अभी आपने किशोर कुमार के स्वर में अंदाज फिल्म का गीत सुना। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। फिल्म संगीत में अभी आपने जिन फिल्मों के गीत सुने उनके नाम हैं हीरा पन्ना, धरती कहे पुकार के, शक्ति, दहलीज और अंदाज। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है छोटे से अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण सुनिए अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल कहीं भी कभी भी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

0: गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण। पहले आज और कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के कार्यक्रम रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत में 8:15 पर। रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती। और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसमें आप सुन सकेंगे राजकुमार मजुमदार से संतूर वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। अब एक नज़र कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। फोन करें गीत सुने, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे 11 बजे। 12 बजे सुनिएगा पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत जादूगर को सलाम धारावाहिक की 11वीं कड़ी सुनी जा सकेगी 12:30 पर। 1 बजे सुनिएगा महिला कार्यक्रम, लोक संगीत का प्रसारण होगा 1:30 पर। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी सुना जा सकेगा 5:02 पर। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगे। फिल्मी गीतों का लुत्फ उठाइएगा फिल्म संगीत में दिन में 2 बजे, शाम 5:33 पर, 6 बजे और रात 8:30 पर। बच्चों का कार्यक्रम प्रसारित होगा दिन में 2:30 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगा। सुर्खियों में कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 8 बजे। 8:15 पर सुनिएगा डगर विकास की, जिसका विषय होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रस्तुति आकाशवाणी छिंदवाड़ा की होगी। आपकी फरमाइश, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा सुनिएगा रात 10 बजे, इसमें आप सुनेंगे विद्वान श्री डी श्रीनिवास का वीणा वादन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। अब सुनिए आज और कल आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के कार्यक्रम 7:21 पर प्रसारित होगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा, और प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुना जा सकेगा 7:45 पर। एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का प्रसारण समय रहेगा 7:20। सुरमई

सवेरा। फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 से 8:58 तक और 9:00 से 9:15 तक। 9:15 पर लोक संगीत में सुनिएगा पूर्णिमा चतुर्वेदी के गाए निमाड़ी लोकगीत। सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण का प्रसारण होगा 9:30 पर। आकर्षण होंगे लोकचंद जनियानी की वार्ता, संत दादा चेलाराम जी का जीवन और विचार, साथ ही आप सुनेंगे सिंधी गीत। 10:00 प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी। सामुदायिक गान के अंतर्गत 10:05 पर आप सुन सकेंगे असामिया गीत का शिक्षण पाठ, रचना सतीश दास की होगी। चंद फिल्मी गीत सुनिएगा फिल्म संगीत में 10:30 पर। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत 7:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण होगा, जिसका विषय रहेगा जायद उद्यानिकी फसलों में पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विजय अग्रवाल। 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर, सोमवार को सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर में आयोजित होगा रजत जयंती समारोह, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: यह उत्सव सोमनाथ मंदिर की अमर विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। यह समारोह वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले दर्ज हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर को दर्शाता है। साथ ही यह 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनः उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। सदियों से सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे लूटा गया, लेकिन हर बार भक्तों और शासकों ने इसे दोबारा बनाकर इसकी खोई हुई महिमा को वापस स्थापित किया। यह उत्सव इस महीने की 11 तारीख को मंदिर के शिखर पर होने वाले भव्य कुंभाभिषेक के साथ समाप्त होगा। इस अनुष्ठान में 11 पवित्र तीर्थस्थलों से लाए गए जल का उपयोग किया जाएगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तनिया, निशिद प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के एक नए युग का शुभारंभ हो गया है।
2: बंगाल

0: सच मर्द में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई।
1: सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की सुगमता से स्नान के लिए क्षिप्रा तट पर 29 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नवीन घाट निर्माण किए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह ने आज करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के किनारे पैदल भ्रमण करते हुए घाट तक पहुंचने के प्रस्तावित 30 मार्गों का चिन्हांकन किया। संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन घाट तक बनने वाले पहुँच मार्ग सुगम और सुव्यवस्थित हों। संभाग आयुक्त ने बताया कि
2: आज के दिन हमारे और हमारी टीम के द्वारा सुबह 6 बजे से निकलकर लगभग 6 किलोमीटर का एरिया जो है कवर किया गया है माशाल्लाह के किनारे किनारे। और आज के भ्रमण का उद्देश्य है कि जो हमारे 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं, उन 29 किलोमीटर के घाटों तक श्रद्धालु किस किस पॉइंट से एंट्री लेंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को सहूलियत भी हो और सभी घाटों का अच्छा प्रयोग भी हो और हमारी जो रोड्स हैं जो घाटों तक लेके आ रही हैं वो आसानी से श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचा सके। तो लगभग 200-200 मीटर पर हम लोग एंट्रीज बना रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस अवसर पर श्री चौहान मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर से अधिक होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य की 987 बस्तियों को लाभ होगा। प्रदेश भर में आज आयोजित लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। भोपाल, रायसेन सहित अन्य जिलों में भी आयोजित लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज में 100% तक की छूट का लाभ दिया गया। प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को गति मिली है। इसी क्रम में मणिया ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के 131 ग्राम, जैसी नगर के 145 ग्राम, सागर ब्लॉक के 26 ग्राम तथा रायसेन जिले के बेगमगंज विकासखंड की 15 ग्रामों सहित कुल 317 ग्रामों को शुद्ध पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये सीरीज 15 मई से 20 मई तक खेली जाएगी, जिसमें देश और विदेश के युवा खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने लोगों को तेज गर्मी व लू से बचाव हेतु सावधानी बरतने की सलाह दी है।
4: बढ़ती गर्मी के कारण लू एवं शरीर में पानी की

0: मात्रा कम होना जैसे मरीज जिले के स्वास्थ्य संस्था में बढ़ रहे हैं। यदि आपको बुखार, उल्टी, दस्त, सरदर्द या पेशाब में जलन जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो ये लू अर्थात हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जिनको लू से खतरा अधिक है वो दोपहर में धूप में ना निकले, अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे पदार्थों का सेवन करें।
1: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती, इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबेगो की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। खंडवा में जल संरक्षण और नदी संवर्धन को जन आंदोलन, कल आबना नदी तट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया गया है। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांचें भी निःशुल्क की गईं। आगर मालवा में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी भैया बहने पुष्पा बहन की स्वीकार है स्नेह भरी राम राम। भैया हरो, इस समय देखो गर्मी बहुत ही परन लगी है, सो लू के थपेड़े सोई खूब चल रहे हैं। सो अपनों और अपने परिवार को खूब ध्यान रखियो, लू से बचाव रखियो, खूब छाछ मट्ठा दही नींबू पानी शिकंजी को खूब सेवन करियो और हल्को भोजन करियो। और दोपहरिया में तो हो सके भैया हरो तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं करियो ताकि लू से बचाव हो सके और खूब सावधानी रखियो। तो भैया अपन और चर्चा भी कर रहे हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर मल्चिंग तकनीक के महत्व के बारे में। उससे पहले कायने सुनले में गारी स्वर है रजनी अर्जरिया को।

0: भैयारो आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: बुंदेली समाचारों के संग हैं पुष्पा सिंह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहे हैं। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग ले हैं। प्रधानमंत्री ई अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत, आध्यात्मिक महत्व, स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही है कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के नए एक नव युग को शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर जिले के भोरुंदा में रजत जयंती समारोह को आयोजन करो जी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित ई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण को शुभारंभ भी करो जी है। ई अवसर पर श्री चौहान मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लाने वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपे। इन सड़कों की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर से अधिक हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं से राज्य की 987 बस्तियों को लाभ हुई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल गुना जिले के दौरे पर रहे हैं। ये दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखें। ए ग्वालियर चंबल क्षेत्र को पहला सीमेंट प्लांट हुई है। ई कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित करी जे है और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित करी जे हैं। ई दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन भी करो जे है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कही है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं को उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रदेश भर में आज आयोजित लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों को आपसी सहमति से निपटारा करोगा। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर में चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित करो जे है। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करे हैं, जितने 6 पंचायतों को चुनोगा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को स्थान रहो, जितने

0: प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को गति मिली है। यही क्रम में मड़िया ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सागर जिले के राहतगढ़ विकास खंड के 131 ग्राम, जयसिंहनगर के 145 ग्राम, सागर ब्लॉक के 26 ग्राम और रायसेन जिले के बेगमगंज विकास खंड के 15 ग्रामों सहित कुल 317 ग्रामों को शुद्ध पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश को असर बनोभाव है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी करी है। विभाग के अनुसार नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडूर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ढिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिले में तेज हवाओं के संग बारिश होने की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भोपाल में आयोजित होबेवारी अंडर 18 हॉकी सीरीज के लाने भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। ई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लाने मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयन भाव है। ये सीरीज 15 मई से 20 मई तक खेली जे है, जी में देश और विदेश के युवा खिलाड़ी अपना कौशल दिखा हैं। बुंदेली समाचार इतना ही संपन्न होते हैं।
1: बुंदेली समाचार।
0: भैया बहन हरो, ई गर्मी के मौसम में पशुओं को पक्षियों को सोई खूब ध्यान राखियो। उनको भी समय गर्मी उतना ही लगा था जितनी अपन को लगा था। सो ई बात को ध्यान रखने है कि दिन में पानी आहार की व्यवस्था नोनी रहे समय और देखो भैया और आहार भरपूर उनको मिलत रहे ताकि वे स्वस्थ रहें निरोग रहें। और हमारी सभी बहनें भैया मिलकर पक्षियों को दाना पानी देते रहें ताकि पक्षी भूखे प्यासे ना रहें। और भैया बहन हरो, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। सो हमें याद दिलाऊ थे जो दिना के पक्षियों को ध्यान रखने हैं, सबको जागरूक रहने हैं। यही से तो हर साल मई महीना के दूसरे शनिवार को हम सब विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाऊते हैं। और अब जा सोई बता दें कि मनाऊत का है। सो देखो भैया रो, जैसे अपन सब रोजी रोटी के लाने शहर जाऊते हैं वैसे ही हमारे पक्षी हजारों कोस उड़ के हमारे देश में आऊते हैं, अपने अपने घोंसला बनाऊते हैं और चिड़ैया छोटे छोटे बच्चों को पालवे की खातिर आऊते हैं। और राह में देखो रास्ता में उनको नदी पहाड़ जंगल सब मिलते हैं। मनो का करें, कहूँ कहूँ तो जंगल कट गए और ताल तलैया पाट दए पूर दए हैं। तो बेचारे पक्षी देखो कहाँ रोकें कहाँ जावें। यही से तो हम सब मिलके विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं ताकि हम सब समझें जानें कि ये चिड़ैया पक्षी हमारे मेहमान हैं और इनकी रक्षा करवो हम सबको कर्तव्य है और धर्म भी है। और इनको दाना पानी देने हैं, इनकी हर तरह रक्षा करने हैं। कहे कि पक्षी भी कीड़ा मकोड़ा खाऊत हैं और हम सबकी खेती को बचाते हैं और ताल तलैया को साफ सुथरों रखने हैं ताकि वे उते रुकें और अपनी भूख प्यास को बुझावें। और इनको शिकार करवे से रोकने हैं और पेड़ लगाऊ ने भैया ताकि पक्षी आएँ और पेड़ों की छाँव में बैठें और अपने घोंसला बनावें। सो जंगल पेड़ वनों को संरक्षण करने हैं ताकि पक्षी बचे रहें। तो देखो भैया हरो, हम तो आज के दिन जई के हैं कि गौरैया फुदकत रहे घर आंगन के पास और मिट्टू गलगल कौआ मैना को देख देख मन में छावे उल्लास। तो चलो भैया, ये तो हो गई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर चर्चा। और अब हम काय ने सुन ले में अच्छो सो लोकगीत और स्वर है डॉक्टर अरविंद सोनी को।

सो भैया और देखो कितना अच्छो नौ लोग गीत सुन रहा और डॉक्टर अरविंद सोनी की आवाज़ में, और खूब पेड़ पौधा लगाओ और खूब हरियाली को बढ़ाओ। और भैया बहन हरो, अबे अपन ने चर्चा करी कि प्रवासी पक्षियों की रक्षा करवो हम सभी को कर्तव्य है। सो भैया हरो, बात तो साँची है कि मिट्टी पानी फसलों को बचाओ भी हमारा कर्तव्य है। सो कायना अपन सभी मल्चिंग तकनीक के महत्व को जाने और समझें और फिर मल्चिंग तकनीक अपना और फ़ायदा उठाओ। भैया हरो, जैसे हम सर्दी में कंबल खो उड़ाते हैं, वैसे ही धरती को भी उड़ावे की जरूरत है और पड़ता ही है। और खेत की मिट्टी के ऊपर पुआल है, सूखी पत्ती है, घास है, एक ही चादर को बिछा देवे और बस भैया रो यही खो देखो मलचिंग कहते हैं। और मिट्टी को ढक दे ताकि पानी की बचत, खरपतवार में कमी बनी रहे। और हमारे किसान भैया रहे पलवार तो जानते ही हैं, बस ऊखो मलचिंग तकनीक कहते हैं। और भैया रो मलचिंग तकनीक को अपनावे से बहुत ही फायदा है, जैसे कि धूप में मिट्टी को पानी भाप बनवे से उड़ जाते। यदि आप और

ने मल्चिंग तकनीक अपनाई तो 40% तक पानी को बचा सका था। यदि पानी खेतों में फसलों में 3 बार दे रहे हो तो 2 बार ही देने पर है, है? और देखो कितनी अच्छी बात है। और मल्चिंग तकनीक खरपतवार में कमी आउत है, काहे की मिट्टी में घास फूस उग नहीं पाऊत। मल्चिंग की वजह से निराई गुड़ाई को खर्चा आधो हो जाता है और मिट्टी ठंडी बनी रहते और गर्मी में पौधों की जड़ें जलत नहीं हैं। और यदि सर्दी को मौसम जब होते तो पाले से बचाव हो जाते और उपज में बढ़ोतरी होते हैं, काहे की नमी बनी रहते हैं और मिट्टी की सेहत में सुधार होते हैं और पुआल पत्ती सड़कें खाद बन जाते हैं, केंचुआ भी बढ़ जाते हैं और फल सब्जियां साफ सुथरी रहते हैं। और भैया हरो हम तो जाके हैं कि नरवाई को खेतों में बिल्कुल न जलाइयो और देखो नरवाई खेतों में बिछा दो और धुआं नुकसान से बचे रहो और ज़मीन की ताकत भी बढ़े। सो आज से ही ठान लियो कि नरवाई खेतों में नहीं जलाऊने, ऊखों खेतों में बिछाने हैं और मल्चिंग तकनीक को जरूर अपनाइयो। और भैया आप सुनाते हैं लोकगीत स्वर है मोतीलाल प्रजापति और साथियों को।

कृषि चर्चा में सुनिए जैविक कीटनाशक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरुणा श्रीवास्तव और ग्राम सभा में संजय बिनिया सजीव फोनन कार्यक्रम में हेलो ग्राम सभा को प्रसारण करो जे है विषय रहे जायद उद्यान की फसलों में पोषण प्रबंधन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल और भैया रो फोन नंबर रहे 2660902 और दूसरा नंबर है 2660903 और भोपाल से बाहर के किसान भैया रहे एसटीडी कोड 0755 लगा के अपनी अपनी समस्याओं को समाधान जरूर करें। और अब पुष्पा बहन को देव आज्ञा राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
2: प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। श्रोताओं कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है
3: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
2: ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। दोस्तों उम्मीद और विश्वास पर ही दुनिया कायम है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम सबके जीवन में दुख या परेशानी नहीं होती। सबके साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि हम निराशाओं में, परेशानियों में, उदासी में पड़ जाते हैं। पर आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि कुछ भी क्यों ना हो, जिंदगी में कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, बस आप अपनी आशा कभी नहीं छोड़िए। तो आशा बड़ी बलवान होती है। उम्मीद के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे देता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने भविष्य को आशाओं के साथ जोड़े बिना रह नहीं सकता। जी हाँ, बिना आशा और भरोसे के कुछ भी करना संभव नहीं। जो आशा में विश्वास करता है उन्हें उपलब्धि की राह मिल ही जाती है। आशा या उम्मीद ईश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जिन्हें हम एक दूसरे को दे सकते हैं। उम्मीद जीवन जीने का सहारा है। इसके जरिए बड़ी बड़ी जंग पर जीत हासिल की जा सकती है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब उम्मीद ही डगमगाने लगती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? दरअसल जिंदगी में परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होती। हमने जिस चीज या जिस परिस्थिति के बारे में सोचा भी नहीं होता, वो अचानक एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। ऐसी कठिन घड़ी में खड़े हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में ही अपनी आशाओं को जिंदा रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे क्या है ये आशा? हम रात को सोते हैं इस उम्मीद से कि सुबह जीवित उठेंगे, ये है आशा। मेहनत करते हैं इस उम्मीद से कि इसका फल मिलेगा, ये है आशा। हम विवाह बंधन में बंधते हैं कि हमारा जीवन अच्छा खुशहाल बीतेगा, ये है आशा। किसी महान व्यक्ति ने अपने अनमोल विचारों में कहा कि सब कुछ खो देने से भी बुरा उम्मीद खो देना होता है। उम्मीद जिसके भरोसे आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी

हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, उनका नाम है योगेश। योगेश जी को जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां शायद वो हार मान लेते, पर उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने कितनी मेहनत से अपनी फसल उगाई, खेत तैयार किए, बीज का इंतजाम किया। पर दोस्तों, फसल उगने का इंतजार तो उन्होंने किया और मेहनत भी उन्होंने बहुत की, पर समय ने उनका साथ नहीं दिया और पानी खेत पर पूरी रीति से भर गया और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई, उनकी सारी फसल सड़ गई। सोच के देखिए क्या बीती होगी उन पर, क्या हाल हुआ होगा उनका। ये दर्द एक किसान ही समझ सकता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कई लोग ऐसे समय पर निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं और दुख में, गम में डूब जाते हैं। पर ऐसे समय में जो हिम्मत से काम ले और अपनी आशा को कसकर पकड़ के रखे, अपनी उम्मीद का दामन थाम ले, वही जिंदगी का असली विजेता है।

0: ऐसी ही एक और सच्ची घटना के विषय में हमारी सहयोगी एना आपको एक और कहानी बताएंगी।
1: जी हाँ, ऐसी ही एक लड़की है जिनका नाम पूजा है। पूजा ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और वो अपने दादाजी के साथ रहती थी, पर माँ बाप का इस तरह से चले जाना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी और दुख ने उसको अंदर ही अंदर घुटन में डाल दिया था। श्रोताओं, उसका दुख और उसकी घुटन उसके अंदर आत्महत्या का विचार ले आई और उसने आत्महत्या करने की सोच ली। और एक दिन जब वो आत्महत्या करने को जाने वाली थी, उसके दादाजी रेडियो पर एक कार्यक्रम सुन रहे थे। उसके दादाजी को रेडियो सुनना बेहद पसंद था। पूजा बस घर के कुछ काम निपटा रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो इसके बाद अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। तभी रेडियो पर कार्यक्रम उड़ान शुरू हुआ और उस दिन उस कार्यक्रम का विषय था आत्महत्या। जी हाँ, आत्महत्या। और ये शब्द जैसे ही पूजा के कान में पड़ा, उसने ध्यान से सुनना शुरू किया और फिर आगे कार्यक्रम में बताया गया कि आत्महत्या कैसे एक गलत फैसला है और आत्महत्या करने वाले के परिवार को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, जब ये सब पूजा सुन रही थी, वो फूट फूट कर रोने लगी और उसको अपने बूढ़े दादा और दादी का चेहरा नजर आया। पूजा ने एकदम अपना फैसला बदल लिया और उसने सोचा कि जो तकलीफ उसको हुई है, उसके माता पिता के जाने के बाद वो कैसे अपने दादा दादी को ऐसा दर्द दे सकती है। पूजा उठी, अपने आंसू पोंछे और खुद से उसने वायदा किया कि वह गलती से भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी और अब से वो अपने दादा दादी की देखभाल करेगी और अपनी जिम्मेदारी को उठाएगी।

दोस्तों, देखा आपने, जिस चीज ने योगेश जी को हार नहीं मानने दी, उनको टूटने नहीं दिया, वह थी उम्मीद, आशा, होप। जी हाँ, पूजा को उस प्रोग्राम से जो मिला वह थी आशा। बस हमको भी यही करना है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, बस अपने जीवन में आशा को पकड़ कर रखना है, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। दोस्तों, एक बार स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने जब इंग्लैंड से युद्ध किया तो वह युद्ध हार गया और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया। पर राजा ने अपना राज्य वापस पाने को बार बार युद्ध किया, पर वह बार बार असफल होता गया। 14 बार उसने युद्ध लड़ा पर नहीं जीत पाया और भाग कर एक गुफा में छिप गया। पर दोस्तों, वहां उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। एक मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ती और गिर जाती। कभी वह ऊपर चढ़ते वक्त गिर जाती और कभी जाल बनाते हुए गिर पड़ती। राजा ने गौर किया कि ऐसा लगभग 20 बार हो गया था और आखिर में मकड़ी कामयाब हुई। तभी राजा ने अपनी निराशा को छोड़ दिया। राजा ने कहा, मेरे तो अभी 7 प्रयास बाकी हैं। और राजा ने फिर से उम्मीद का दामन थाम लिया और फिर खुद को तैयार किया और जब फिर युद्ध किया तो वह जीत गया। उसको उसका राज्य वापस मिल गया। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम से यही उत्साहित करना चाहते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर अगर आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते तो असफलता भी सफलता का रास्ता आपको दिखा देती है। कई बार बच्चे स्कूल में फेल होने पर निराश हो जाते हैं और घर पर बैठ जाते हैं। कई बार लोग अपने व्यापार में सफल ना होने पर अपना प्रयास बंद कर देते हैं। कई बार किसान भाई फसल खराब होने पर निराश होकर गलत फैसले कर लेते हैं। पर बस यही नहीं करना है दोस्तों, जबकि ये ऐसा पल है जब आपको मजबूती से उम्मीद का दामन पकड़ के रखना है। क्योंकि कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है और प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है। हर बात के पीछे भलाई होती है, पर तब जब हम अपनी आशा नहीं खोते, जब हम उम्मीद से गहरा रिश्ता जोड़ के रखते हैं। दोस्तों, किसी ने इस प्रकार कहा कि जिंदगी के रेगिस्तान में उम्मीद का घड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया और हालात कहते हैं हार मान लो, तब यही आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार और प्रयास करो। जी हाँ दोस्तों, बस हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, बस अपने जीवन में आशा का, उम्मीद का दामन पकड़ के रखिएगा। जी हाँ, किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। इसलिए जीवन में कभी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी ये नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। आपके वर्तमान और भविष्य के बीच का सफर उम्मीद ही तय कराती है।

0: 8 8 8 2 7। जी हाँ, 8 8 6 0 0 8 8 8 2 7।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, पर याद रखिए, अपनी आशा के दामन को पकड़ के रखिए, क्योंकि जिंदगी में आशा ही हमें आगे लेके जाती है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।

0: तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव, विचार, सवाल या आपके परामर्श हमें लिख सकते हैं। तो एक बार फिर हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है
1: 8860।

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बढ़ता दायरा। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर देबाशीष प्रूस्ती, एडिशनल सेक्रेटरी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वित्त मंत्रालय, और मिस सुमित कौर कपूर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PFRDA। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: हम शुरू करना चाहेंगे देबाशीष जी आपसे। 11 वर्ष हो रहे हैं तीन योजनाओं को, जो जन सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनमें पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इससे आप कैसे देखते हैं भारत के सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यह कैसे मजबूत कर रहा है, और पिछले 11 वर्ष में इसकी यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, और इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी?
4: आज 11वां साल गिरा है। दो महत्वपूर्ण जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी तारीख को 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों एक्चुअली एक कम लागत वाला जन सुरक्षा योजना है, जो कि सुरक्षा कवच बनाकर भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को काफी मजबूत किया है। इन योजनाओं में जो हमारे पात्र ग्राहक, विशेष रूप से जो गरीब और जो दूर दराज क्षेत्र में जो वंचित ग्राहक है, उन सभी को 2 लाख रुपए का ये आवश्यक जीवन बीमा कवर और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करते हैं और उनके वित्तीय समावेशन को ही बढ़ावा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आम नागरिकों के जीवन में कोई अगर ऐसे अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाता है तो उनको समय पर ये वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है। इन योजनाओं की एक बड़ी उपलब्धि इनकी सरलता, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, कम प्रीमियम और वित्तीय समावेशन पहलों के तहत बैंकों के जो तमाम शाखाएं हैं और पोस्ट ऑफिस के तमाम शाखाएं हैं, ये सभी इनके डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े हुए हैं। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है और वित्तीय जागरूकता को भी बढ़ाया देता है। और सबसे बड़ी बात है कि औपचारिक जो वित्तीय प्रणालियां हैं, जो हमारे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं, उनमें नागरिकों के विश्वास को ये मजबूत किया है। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लगभग 27 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोग नामांकित हुए हैं। और इसके अलावा शुरुआत से अब तक PMJJBY के तहत लगभग 10,60,000 लाभार्थियों को 21,200 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान किया गया है। और इसी प्रकार PMSBY में 1,80,000 लाभार्थियों को लगभग 3,600 करोड़ रुपए का दावे का भुगतान किया गया है। और ये जो क्लेम भुगतान किया गया है, इसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती है वो लगभग 99.5% से ऊपर है। का मतलब है अगर 100 दावे कंपनी के पास आते हैं तो उनमें से 99.5 दावों का उन्होंने भुगतान कर दिया है। यही एक विश्वास की कड़ी को आगे बढ़ाया है।
2: मिस कपूर, अगर हम आपके पास आए और बात करें अटल पेंशन योजना की, तो ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण, अगर हम इसे कह सकें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एक तबका है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिनके पास एक रेगुलर नौकरी नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है, या जिसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज वे में वो काम करते हैं, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक उतना ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा बन जाता है, खास करके जब वो 60 की उम्र को पार करते हैं। तो इसके मद्देनजर

0: अटल पेंशन योजना जहां तक हम समझते हैं इसने काफी हद तक इस कंसर्न को एड्रेस करने में मदद की है, और आंकड़े बताते हैं कि 9 करोड़ से भी अधिक लोगों ने नामांकन करवाया है इस योजना में। तो आप इस बढ़ती ग्रोइंग पार्टिसिपेशन जो है इस योजना में, इसे कैसे आप देखती हैं, और कैसे इस योजना की जो शुरुआत हुई और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, ये काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, कैसे देखती हैं आप इसे?
1: हमारे यहाँ 85% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी रेगुलर इनकम तो होती नहीं है। जब उनके पास काम हुआ तो इनकम आ गई, और जब काम नहीं है तो इनकम नहीं है, और वो अपने आज के खर्चे के बारे में सोचते हैं, दूर के बारे में सोच नहीं पाते
0: जी,
1: हैं।
0: जी, बिल्कुल,
1: तो इस कारण से वो अपने 60 के बाद का तो वो बिल्कुल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। तो इस दिशा में जब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारी सोसाइटी जो है, जो आज यंग है, आज युवा है, पर धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेगी ये पीढ़ी, और आज जो 10% हमारी जो जनसंख्या है वो सीनियर सिटीजन या कहिए कि 60 से ऊपर है, परंतु 2050 आते आते तक ये 20% हो जाएगी, और हम करीब 30 करोड़ लोग ऐसे और जोड़ देंगे जो 60 को पार कर जाएंगे। और अगर इन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए या अपने वृद्धावस्था के लिए अगर कोई प्लानिंग नहीं की तो इनके पास इनकम का या आय का कोई भी स्रोत नहीं होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए पेंशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का या फिर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही एक हक नहीं है, बल्कि ये सबके लिए होना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना का जो है अनाउंसमेंट किया था। और आप देखिए कि इसी में जब पेंशन का कॉन्सेप्ट भी लोगों को नहीं मालूम था कि उनके लिए भी रिटायरमेंट इनकम कुछ हो सकती है, ये उनको नहीं मालूम था, परंतु इसी दौरान 9.6 करोड़ लोग अब अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। और इसका कारण ये है कि ये बहुत ही सरल योजना है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आपने अगर सिर्फ 42 रुपए प्रति माह जोड़ दिए 60 साल तक, तो आपको 1000 रुपए इनकम आपको मिलने लगेगी, आपके बाद आपके पति या पत्नी को मिलने लगेगी, और जितना पैसा आपका इकट्ठा हुआ है पति पत्नी के गुजर जाने के बाद आपके नामिती को भी मिलने लगेगी। सो ये जो 3 बड़े बड़े उनको जो लाभ मिलते हैं सिर्फ 42 रुपए अगर आप 18 साल के हैं जुटाने पर, तो उनको भी समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक बुढ़ापे का सहारा इकट्ठा कर रहे हैं। कहा जाता है कि आजकल के जमाने में जैसे हम 2 बच्चे होते हैं हमारे, तो पेंशन का जो खाता है वो हमारा 3रा बच्चा है, और उसको उतना ही ख्याल रखना है हमें, हमारे को उसको वैसे ही बड़ा करना है क्योंकि वो आपका ख्याल रखेगा बुढ़ापे का। ये 2 बच्चे तो रहेंगे आपके साथ, पर उनपे निर्भर क्यों होना है, वो आपके आसपास रहेंगे इमोशनल सपोर्ट के लिए, पर ये 3रा बच्चा आपका बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, तो इसका आप अभी से इसको बड़ा कीजिए। इसीलिए इस अटल पेंशन योजना जो है काफी लोगों ने अपनाई है, और इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। बैंकों में हर शाखा को हम टारगेट देते हैं और वो सरलता से समझाते हैं, और लोगों ने इसीलिए अटल पेंशन योजना को अपनाया है।
0: तो मिस कपूर, अगर हम बात करें आयु सीमा की, कि क्या कोई, जैसे 18 वर्ष की बात आपने की कि 18 वर्ष का जब व्यक्ति एक बार हो जाता है तो इस योजना में वो नामांकन अपना करवा सकता है, तो कोई पूरी सीमा भी कोई है आयु की है?
1: जी, 18 से 40 वर्ष, क्योंकि 20 साल का समय चाहिए आपको उतनी मात्रा इकट्ठा करने के लिए कि वो आपको एक रेगुलर इनकम दे सके, तो इसके 18 से 40 तक आप इसमें एनरोल करा सकते हैं।
0: देवाशीष जी, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, हम समझना चाहेंगे कि इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या हैं, और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जैसा आंकड़े बता रहे हैं, आपने भी बताया 27 करोड़ से अधिक एनरोलमेंट हो चुके हैं, और इतना जो ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इसमें जो भागीदारी हो रही है जनता की, वो स्वाभाविक रूप से ये जताता है, ये हमें बताता है कि किस हिसाब से और किस तरह हमारे जो जनता है वो इस योजना में, उन्हें ट्रस्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएं।
2: जैसे कि मैंने पहले बताया कि आम आदमी के जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसे अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए ये जो योजना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और ये योजना जैसे 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के जो है सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता है, और जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है उनको एक सहमति पत्र देना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही सरल है, और उसमें ऑटो डेबिट की सुविधा भी जो है दी गई है। इस योजना के तहत जो जोखिम कवरेज है, जो रिस्क कवरेज है, वो 2 लाख रुपए तक का है, और जो

0: बीमित व्यक्ति है, इंश्योर्ड है, उसकी मृत्यु होने पर किसी भी कारण से, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, तो ये मैच्योरिटी सम 2 लाख रुपया उनको तुरंत दे दिया जाता है उनके परिवार को। इसके लिए जो सालाना प्रीमियम है वो केवल 436 रुपया है, जो कि ग्राहक के बैंक या उनकी जो पोस्ट ऑफिस है ऑटो डेबिट किया जाता है। उनको बार बार परेशानी नहीं होना पड़े कि बैंक के या पोस्ट ऑफिस के पास जाने के लिए। उन सभी लोगों की सुविधा के लिए जो पॉलिसी अवधि के बीच में अगर पहली बार इस योजना के तहत नामांकन कर रहे हैं, तो उनका एक प्रोराटा प्रीमियम का भुगतान भी करने का प्रावधान है। मान लीजिए कि किसी ने दिसंबर में अगर ज्वाइन किया है, तो उनको पूरे साल का प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो है प्रोराटा जितने महीना उस
1: जी जी
0: वित्तीय
1: जी
0: वर्ष में बसते हैं,
1: जी
0: उनका वो प्रीमियम देना होगा। एक इसमें कंडीशन इतना ही है कि नामांकन की तारीख से, एनरोलमेंट की तारीख से 30 दिन की जो है अवधि को लियन पीरियड कहते हैं, और इस योजना में नामांकन की तारीख से पहले 30 दिनों की अवधि के दौरान अगर कोई उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो बीमा कवरेज उनको नहीं मिलेगा और उसके पश्चात रिस्क शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि अब तक 21,000 करोड़ रुपए के जो है दावे का भुगतान किया जा चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े मैं रखना चाहूंगा कि ग्रामीण जो लाभार्थी है लगभग 17 करोड़ है, जो कि बैंक एनरोलमेंट के 73% है, और हमारे महिला लाभार्थी जो है उनकी संख्या लगभग 12 करोड़ 70 लाख है, जो कि कुल बैंक एनरोलमेंट के 54% है। तो ये आंकड़े जो है इस स्कीम की लोकप्रियता और समावेशिता और आने वाले समय में इस पे और मास रूप में जोड़ने के लिए एक स्पष्ट संकेत देती है।
1: हम आपसे समझना चाहेंगे, और बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के यहाँ, क्योंकि ये योजना किस तरह से काम करती है और किस तरह से एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल रिस्क्स, जो कि आम जनता को फेस करना पड़ता है अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में। 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें प्रदान करती है, और आंकड़े बता रहे हैं कि ये लगभग लगभग 58 करोड़ से भी अधिक नामांकन अभी तक हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक यूनिक सा एक स्कीम है, तो ये जो इनिशिएटिव है भारत सरकार की, इसे कैसे देखती हैं और कितना ये महत्वपूर्ण है, क्या स्थान रखता है हमारे आम जनता के जीवन में?
0: ये योजना एक्चुअली 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए सरकार ने लागू किए हैं जिनका किसी भी बैंक में या डाकघर में अकाउंट है, सेविंग बैंक पासबुक है। और इस योजना में भी शामिल होने के लिए उनको एक ऑटो डेबिट फैसिलिटी के लिए अपनी सहमति देना होता है। और इस योजना में जो रिस्क कवरेज है कि अगर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाते हैं या फिर अगर कोई पूर्ण स्थायी विकलांगता जिसको कहते हैं परमानेंट डिजेबिलिटी की स्थिति में 2 लाख रुपया, और अगर आंशिक डिजेबिलिटी हो जाती है एक एक्सीडेंट में, तो उनमें 1 लाख रुपया का जो अश्योर्ड है वो मिलता है। और ये कवरेज केवल साल की 20 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर मिलता है। खाते धारक की बैंक या पोस्ट ऑफिस से सीधे ऑटो डेबिट हो जाते हैं, उनको बार बार बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार की प्रोडक्ट से अब तक 58 करोड़ से अधिक नामांकन होकर 3600 करोड़ रुपए के जो है दावा के भुगतान किया जा चुके हैं। जहाँ तक हमारे ग्रामीण लाभार्थी हैं, वो लोग करीब 38 करोड़ इनमें जो है नामांकित हो चुके हैं, और हमारे जो महिला हैं वो करीब 27 करोड़ इनमें नामांकित हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है वित्तीय समावेशन का एक स्पष्ट द्योतक है।
1: जी, हम इसका पूरा आपके पास हम आना चाहेंगे। ये 11वां वर्ष है जब इन योजनाओं की शुरुआत हुई 2015 में। साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देवाशीष जी ने भी बताया कि किस तरह से, और खास करके ग्रामीण इलाकों में जो जनता का समावेशन हुआ है ऐसे स्कीम्स में, और किस तरह से लाभ पहुंच रहा है उन लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वर्षों में आप किस तरह से देखती हैं इन योजनाओं का विस्तार, और साथ ही साथ कुछ और नई संभावनाएं अगर आपको दिखती हो तो?
2: जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि अब तक इसमें 9 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। अब ये वित्तीय समावेशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, चाहे वो ग्रामीण से हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो गिग वर्कर्स हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो। इसमें लगभग 50% प्रतिभागी जो है वो महिलाओं की है, और 25,000 ट्रांसजेंडर भी जुड़ चुके हैं। और इन्होंने छोटे छोटे सेविंग्स करके अब तक इसमें AUM जो है वो लगभग 51,000 करोड़ से ऊपर है। सो अब जो हमारा जो टारगेट है 2031 तक का, वो लगभग 17 करोड़ का है। सो हम इसको डबल के करीब ले जाने का सोच रहे हैं। जो पिछले 9 साल में किया वो अगले हम 5-6 साल में करेंगे। और दूसरा जो AUM है वो भी नेचुरली जो पुराना AUM है उसके ऊपर ग्रोथ होगी, 8.5-9% की ग्रोथ उस पर 9% की हो रही है। और भी

0: कंट्रीब्यूशन आएगा, सो एयूएम भी बढ़ेगा, सो इसका हमारे को डबल लाभ होता है. क्यों?
1: जी
0: क्योंकि एक तो जो माइक्रो लेवल पे है जो नागरिक हैं उनके लिए ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी का एक रास्ता खोलते हैं, दूसरा जो ये एयूएम एकत्रित होता है ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज होता
1: जी
0: है.
1: बिल्कुल
0: इस तरह से पेंशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं. तो
1: जी
0: इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया,
1: बिल्कुल
0: इसमें इनका
1: बिल्कुल
0: बहुत बड़ा रोल पेंशन फंड्स का, और
1: जी।
0: इससे हमारी वित्तीय समावेशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है.
1: देवाशीष जी, सुमित जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, अपने विचार रखे, साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: बहुत बहुत
0: बहुत
2: शुक्रिया
0: बहुत
2: आपका, बहुत
0: धन्यवाद.
2: बहुत धन्यवाद.
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। उदित नारायण के सुर में सुनिए जावेद अख्तर का लिखा गीत। पापा कहते हैं फिल्म के गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में सुनिए जुर्म फिल्म का गीत। इंडिवर के गीत में आवाज़ कुमार सानू और साधना सरगम की।

अगला गीत फिल्म एतबार से, गायक स्वर आशा भोसले और भूपिंदर के, शब्द संयोजन हसन कमाल का और संगीत बप्पी लहरी का।

लीजिए सुनिए कुमार सानू के स्वर में दलाल फिल्म का गीत। माया गोविंद और प्रकाश मेहरा के गीत को सुरों से सजाया है बप्पी लहरी ने।

कुमार सानू के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है छोटे से अंतराल का।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात।

0: 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल R.N. रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में

पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास

0: गठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

0: Arora in alleged money laundering case. And in archery, India, Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। पांच अरकान असेंबली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिनभर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर आर एन रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा पांच काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्नि मित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाक़े के तहत आज SIR के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड IAS अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के IAS अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में तमिल गायत्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामनिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था, क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मधु किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। DMK पार्टी से इतिहास से अलीहदा होकर कांग्रेस ने TVK पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआई की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।

सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेडचुरुज गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेडचुरु गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमा अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहिरीन और दीगर सिविलियन माहिरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्ञ हो रहे हैं।

एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और उस खातून को जेड चोरो गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमा अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहिरीन और दीगर सिविलियन माहिरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्जा हो रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खत्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका सिफारतकारी में मसरूफ है और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुकताचीनी की है और अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि वो कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। आप नाए हुरमुस और उसके अतराफ ताज़ा वाकयात के पस मंजर में ये बयानात सामने आए हैं जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेस के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। केरल में मौसम गर्मा की बारिश में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। IMD ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वीं मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करा सकते हैं जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सबू को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुजश्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। IPL में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफवर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकानी असम्बली ने भी काबीना वजीरा के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस वीसी के IUML और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं। शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928, 6 जनवरी, महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धुंदोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले। लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दी कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको

सुनने के लिए हम लोग लगाते थे, उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को बयान करते थे, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा, यदि हम भी वही सब करने लगे तो। मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही है आकाशवाणी की, वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से, उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना CD का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन।

0: कुछ बजते थे। तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि ये फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिसेज जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं।

0: भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाया है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
4: और मैं प्रांजल।
5: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
6: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ।

0: सकूं, अपने बच्चों को भी देख पाऊं और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊं। तो उसी से मेरा आइडिया है, मैंने जहां कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना डीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, इससे कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे अपने शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इसमें भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है।
1: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
2: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
4: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्ध।

0: बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
1: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
2: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
0: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
2: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
0: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
0: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
0: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पीवी काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: ये

0: आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसम्मोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santoor recital with raag Jansammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhyalay. Drut composition is set to Teen Tal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसम्मोहिनी। Continuing his recital, he now presents Raag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आप होगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states,